रहे हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। आप मुझे आज्ञा दीजिए इस कार्यक्रम को समाप्त करने की। आपसे जल्द मुलाकात होगी। मैं अर्चना बिजारिया आपसे विदा लेती हूँ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की तीसरी तिथि यानी 24 जून 2026। सुबह के 5:53 हुए हैं। अब हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। आइए अब आपको जानकारी देते हैं आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:10 पर भक्ति संगीत पर आधारित अर्पण कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्री रामचरित मानस के अंतर्गत आज आप सुनेंगे बालकांड भाग 101, जिसका प्रसारण समय रहेगा 6:44। योग पर आधारित कार्यक्रम होगा सुबह 7:10 पर, जिसके पश्चात आप सुनेंगे गोल्ड सुप्रभात।

आज सवेरे कार्यक्रम हम आपके लिए लाएंगे सुबह 7:30 पर म्यूजिकल दिल्ली की। इस कार्यक्रम को हमारे श्रोता सुन सकते हैं सुबह 8:45।

विश्व दर्शन कार्यक्रम होगा सुबह 10:10 पर। दिल का बेल बॉक्स, आपकी पसंद पर आधारित इस कार्यक्रम को हम आपके लिए लाएंगे सुबह 10:30 पर। तस्वीर, इस कार्यक्रम में आज जानकारी दी जाएगी सिक्किम के पेलिंग के बारे में, जिसका प्रसारण समय रहेगा सुबह 11:10।

घर आंगन कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 12:10 पर, और कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल आज आप सुनेंगे 1:10 पर। आज के कलाकार होंगे गीतकार असद भोपाली। उन्नत किसान कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 2:30 पर, और मन भवन कार्यक्रम का समय रहेगा 3:10। फिल्मी गीतों का आनंद आप ले सकते हैं 4:10 पर। परिक्रमा कार्यक्रम होगा 4:30 पर। गाते गुनगुनाते कार्यक्रम आप सुनेंगे 5:10 पर।

और सदाबहार गीत सुने जा सकते हैं शाम 6:10 पर। हम आपके लिए लाएंगे कार्यक्रम मार्केट मंत्रा। सुर्खियों में कार्यक्रम होगा शाम 7:10 पर और सांझ ढले शाम 7:25 पर। तो ये थी हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। 6 बजने को है, अब से कुछ ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है। जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
1: लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबुधाबी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने कहा कि उन्होंने अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन से बात की है और अमरीकी अधिकारी लेबनान में पहल कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि कोई भी कूटनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों के मुद्दे पर कितनी प्रगति हो पाती है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली को लेकर ईरान और अमरीका के बीच स्विट्जरलैंड में हाल ही में वार्ता हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ आज बारिश की संभावना जताई है। फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. National security advisors and senior security officials from the BRICS nations called for stronger cooperation to address a widening range of global security challenges, including terrorism, cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. The 16th BRICS National Security Advisors meeting, held under India's chairship of the grouping, led by India's NSA Ajit Doval, brought together top security representatives from member countries to discuss both traditional and emerging threats confronting the international community. According to India's Ministry of External Affairs, the discussions focused on evolving security risks that increasingly transcend national borders. Prime Minister Narendra Modi received a telephone call from the Emir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. He expressed condolences over the loss of lives of Indian nationals in the accident at Ras Lufan Industrial City in Qatar on Sunday and conveyed his wishes for the speedy recovery of those injured. Mr. Modi thanked the Qatari leader for his words of sympathy for the affected families and appreciated the prompt medical assistance extended to the injured. The two leaders also reaffirmed their commitment to ensuring the well-being and safety of their citizens and reiterated their solidarity and support for each other. India has strongly criticized Pakistani Defense Minister Khwaja Asif's remarks over the situation in Pakistan-occupied Kashmir, saying these remarks are desperate attempts by the neighboring country to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. Addressing media in New Delhi, Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said New Delhi categorically rejects these fabricated claims with the contempt they deserve.
4: The ongoing protests in Pakistan-occupied Kashmir are a direct consequence of Pakistan's decades-long policy of systemic economic exploitation, denial of fundamental rights, and administrative oppression. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses.
3: On India-UAE defense partnership, the spokesperson said India's relationship with UAE in recent several years has seen a major upswing in which the defense partnership also plays an important role. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has called for stronger multilateral cooperation to build resilient economies, accelerate sustainable development, and ensure inclusive growth. Addressing the Global Convergence for Growth Summit virtually in New Delhi yesterday, she said that while prosperity and challenges are shared in an interconnected world, the consequences of conflicts and uncertainty fall disproportionately on developing countries and the Global South. Ms. Sitharaman stressed that coordinated global action is essential to address these challenges. Highlighting India's economic progress, the finance minister said that the country's growth is primarily driven by domestic demand, supported by a largely market-determined exchange rate. Vice Chairperson of Niti Aayog, Dr. Ashok Kumar Lahiri, has said that the total trade of India has grown by 5.4% in the last quarter. He said this while releasing the latest edition of the Trade Watch quarterly report in New Delhi. Dr. Lahiri added that India's exports reached $1.84 trillion and imports grew by 6.5% in the last quarter. U.S. Secretary of State Marco Rubio said, "Lasting peace and stability in West Asia cannot be achieved as long as Iranian-backed proxy groups continue launching attacks and engaging in militant activities across the region." Speaking to reporters upon his arrival in

बुधवार की ही सुहानी सुबह और एफएम गोल्ड का साथ, आइए अपनी श्रद्धा भक्ति और विश्वास को संगीत के रूप में ढालते हैं और लेते हैं आनंद भक्ति संगीत का अर्पण के जरिए। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आज साथ हूँ मैं आपके बबीता। नमस्कार, सुप्रभात।

दौलत से सिर्फ सुविधाएं मिलती हैं, सुख नहीं। सुख मिलता है आपस के प्यार से और अपनों के साथ से। सिर्फ सुविधाओं से सुख मिलता तो धनवान लोगों को कभी भी दुख न होता।

अपना परिचय आप स्वयं दे, ये आपका संघर्ष है। आपका परिचय कोई और दे, ये आपकी उन्नति है। और आप परिचय के मोहताज नहीं, ये आपकी उपलब्धि है।

झुकने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता कि आपने अपना सम्मान खो दिया। हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। प्रभु और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी इनमें से एक है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं।

34 मिनट और 45 सेकंड आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत से परिपूर्ण अर्पण आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

भ्रम हमेशा रिश्तों को बिखेरता है और प्रेम से अजनबी भी बंध जाते हैं। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके दिए समर्पण की कद्र करे।

परशुराम और लक्ष्मण के वाक युद्ध से स्थिति बिगड़ती देख श्री राम ने ऋषि की क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए क्षमा याचना की। बालक यदि चपलता भी करते हैं तो गुरुजन तथा माता पिता के हृदय में आनंद उत्पन्न होता है, अतः समदर्शी सुशील धैर्यवान तथा ज्ञानी मुनि होने के नाते उन्हें इस अबोध दुधमुहे बच्चे को क्षमा कर देना चाहिए। किंतु तभी लक्ष्मण ने मुनि को एक बार फिर छेड़ा। खड़े खड़े मुनिवर के चरण दुख गए होंगे, सो उन्हें क्रोध त्याग कर बैठ जाना चाहिए। यदि टूटा हुआ धनुष उन्हें इतना ही प्रिय हो तो किसी गुणी को बुलवाकर उसे जुड़वा देने का उपाय करना चाहिए। स्थिति गंभीर होते देख राजा जनक समेत उपस्थित जन आतंकित और भयभीत हो गए। श्रीराम के शीतल वचन सुनकर परशुराम जी ने कहा, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं, किंतु ये मन का मैला और शरीर से वैसा ही सुंदर है जैसे विष से भरा सोने का कलश। श्रीराम ने एक बार फिर उनका क्रोध शांत करने के उद्देश्य से उन्हें सच्चाई से अवगत कराया कि वो नाहक ही उस बालक पर क्रोध कर रहे हैं, वास्तविक दोषी तो स्वयं राम है, और जिस प्रकार भी मुनि का क्रोध समाप्त हो वो सभी उपाय करने को तत्पर हैं। किंतु मुनि का क्रोध दूर भी हो तो कैसे, लक्ष्मण तो अब भी उन्हें टेढ़ी दृष्टि से ही ताक रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर जोर दिया।
1: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद किया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार हैं। सरकार ने कहा है कि E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में तकनीकी खराबी की कोई भी व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। अमरीका के ह्यूस्टन में हुए मुकाबले में क्रिस्टियानो

0: आइए अब सुनते हैं योग पर आधारित हमारी विशेष श्रृंखला। आज का आसन है उत्तान पादासन।
1: योग जीवन जीने की कला है या विज्ञान के रूप में आज योग का प्रचार एवं प्रसार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। यदि इसके अनुसार जीवन जीने का प्रयास करेंगे तो यह आदि व्याधियों से बचाकर श्रेष्ठ और गरिमामय जीवन बिताने का साधन बन जाएगा। आइए हम लोग योग के आसन को करते हैं। प्रातःकाल का समय, वातावरण में ऑक्सीजन जिसको हम प्राणवायु के नाम से जानते हैं की प्रतिशत मात्रा अधिक है और ऐसा व्यवस्था प्रकृति ने बनाई है कि हम इस समय शांत चित हैं। उत्तान पादासन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, उत्तान पाद, उत्तान मायने उठाना, पाद मतलब पैर, पैर उठाने की क्रिया इस अभ्यास में हम लोग दोहराएंगे। और जब पैर उठाएंगे तो उससे हमारा शरीर लाभान्वित होगा, विधि जानते हैं, पीठ के बल लेट जाते हैं, सीधे दोनों आंख सरलता से बंद, दोनों हाथ की हथेलियां जमीन के ऊपर, धीरे से अंतर्मुखी होने का प्रयास। हम हमेशा बाह्यमुखी रहते हैं, आइए योग के द्वारा अंतर्मुखी होते हैं। धीरे से श्वास को गहरा करते हुए दोनों पैर मिलाएं और मिली हुई अवस्था में दोनों पैरों को लगभग 45 अंश तक उठाएं। श्वास रुकी हुई है, पैर यथाशक्ति वहीं रोक कर रखें और महसूस करें उस स्पंदन को जो हमारे पेट के ऊपर हो रहा है। जब तक रोक सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं रोक सकते तो बहुत धीरे धीरे वापस दोनों एड़ियां जमीन को छू जाएंगी। उत्तान पाद, यह अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है हमारे उदर अक्षेत्र के लिए। पेट के ऊपर एकत्रित अतिरिक्त मेद को दूर करता है, टली हुई नाभि को यथास्थान ले आता है, पाचन क्रिया मजबूत होती है। दोनों पैर उठे हैं उस समय पैरों की नस एवं नाड़ियां पुष्ट हो रही हैं, जो उदरस्त वायु है उसका भी निष्कासन होता है। जिस प्रकार हम लोग किसी आसन के बारे में जानते हैं और लाभान्वित होने का प्रयास करते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है कि हमें ये जानना चाहिए कि इसको

0: किस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। यदि पेप्टिक अल्सर है तो इस अभ्यास को ना दोहराएं। यदि कमर दर्द है, रीढ़ की जो हमारी स्थिति है उसमें कोई समस्या है तो भी इस आसन को ना दोहराएं। ब्रोंकाइटिस की स्थिति में भी इस आसन को वर्जित माना गया है। यदि इतना जानकर हम लोग ये अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से ऋषि मुनियों के द्वारा दिया गया यह ज्ञान हम लोगों के लिए लाभान्वित होगा।
1: अभी आप सुन रहे थे योग पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम। वक्त तो चला है 7:15:50। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर नई सुबह की सुनहरी किरणों और ताजी हवाओं के साथ आपका हार्दिक स्वागत है गोल्ड सुप्रभात में। आज साथ हूं मैं आपके बबीता। तो आइए चलते हैं आज के इस सुरीले सफर पर।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: वक्त हो चला है 7:22 आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात। तो आगे बढ़ते हैं और आनंद उठाते हैं इस प्यारे से गाने का।

मौसम की अगर बात करें तो कल शाम आई तेज आंधी और बारिश ने गर्मी से थोड़ी राहत दी है। तापमान में भी थोड़ी गिरावट आई है। आज का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सूर्य उदय हो चुका है सुबह 5:24 पर और उसका अस्त होने का वक्त होगा शाम 7:22 पर।

0: नमस्कार कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज और आज मेरा साथ दे रही हैं मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। आज के इस अंक में हम आपको देंगे देश और दुनिया के समाचार और वो सभी जानकारी जिनका है आपसे सरोकार। महानगरों की खबरें होंगी, इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करेंगे, महानगरों के मौसम का हाल जानेंगे और याद करेंगे कुछ जानी मानी शख्सियतों को। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार शगुन, आपको मेरा
1: नमस्कार। फरहत एंड टू आवर लिसनर्स नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी, अ वेरी वार्म वेलकम। इट्स अ bright sunny day today and we are starting our program Aaj Savere. Well, Farah told us what all will unfold today for you listeners. Latest national international news, we are beginning with it. Metro city updates today. It's 24th of June 2026, so we'll also explore some historical information which is related to today. So Farah, let's begin with the headlines.
0: Ji bilkul.
1: National security advisors, NSAs and senior security officials from BRICS nations called for stronger cooperation to address a widening range of global security challenges, including terrorism, cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. The 16th BRICS National Security Advisors meeting, held under India's chairship of the grouping, led by India's NSA Ajit Doval, brought together top security representatives from member countries to discuss both traditional and emerging threats confronting the international community. According to India's Ministry of External Affairs, the discussions focused on evolving security risks that increasingly transcend national borders. Delegates exchanged views on issues ranging from energy and food security to climate-related instability and the misuse of emerging technologies by terrorist organizations. The External Affairs Ministry said in a statement that the NSA has also reviewed the activities and outcomes of the BRICS joint working groups on counter-terrorism held on 21st and 22nd of May and on security in the use of information and communication technologies held on 8th and 9th of June.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लौफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद किया और घायलों को तुरंत चिकित्सीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी तारीफ की। उन्होंने आशा व्यक्त की इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी।
1: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has called for stronger multilateral cooperation to build resilient economies, accelerate sustainable development and ensure inclusive growth. Addressing the Global Convergence for Growth Summit virtually in New Delhi yesterday, the minister said that while prosperity and challenges are shared in an interconnected world, the consequences of conflicts and uncertainty fall disproportionately on developing countries and the global south. She stressed that coordinated global action is essential to address these challenges, emphasizing on the issue of global imbalances. Ms. Sitharaman said that not all imbalances are alike, as some reflect differences in demographics, development stages, resource endowments, and economic structures. Highlighting India's economic progress, the finance minister said that the country's growth is primarily driven by domestic demand, supported by a largely market-determined exchange rate.
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट भी बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज हॉर्मुज

0: confusing and misleading the public. The government said that it is continuously monitoring the implementation of the ethanol blending program in consultation with oil marketing companies, automobile manufacturers, fuel testing agencies and other stakeholders. It said that since the introduction of E20 petrol, no widespread issues of engine failure or vehicle breakdown attributable to ethanol blending have been reported.
1: और शगुन देश का खनिज मिशन भी जोर पकड़ रहा है. खान मंत्रालय ने 56 जरूरी और रणनीतिक खनिज ब्लॉक और 11 उत्खनन लाइसेंस ब्लॉक की नीलामी की है. इसके साथ ही अब 88 में से नीलाम हो चुके ब्लॉक की संख्या 56 हो गई है. पहली बार गुजरात, उत्तराखंड और तेलंगाना में खनिज ब्लॉक की नीलामी हुई है. इनमें ग्रेफाइट, रेयर अर्थ एलिमेंट, वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लूकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल हैं. अब नीलाम किए गए अन्वेषण लाइसेंस ब्लॉक की संख्या भी 11 हो गई है. अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में पहली बार अन्वेषण लाइसेंस ब्लॉक की नीलामी की गई. खान मंत्रालय के अनुसार ये नीलामी भारत के खनिज क्षेत्र में उद्योग जगत के बढ़ते भरोसे को दिखाती है. इससे स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और उन्नत विनिर्माण के लिए जरूरी खनिज की खोज और विकास में भी तेजी आएगी. इससे आयात पर निर्भरता कम होगी और घरेलू खनिज आपूर्ति श्रृंखला भी मजबूत होती नजर आएगी.
0: Vice Chairperson of Niti Aayog, Dr. Ashok Kumar Lahiri, has said that the total trade of India has grown by 5.4% in the last quarter. Dr. Lahiri said this while releasing the latest edition of the Trade Watch quarterly report in New Delhi. The Vice Chairperson added that India's exports reached $1.84 trillion and imports grew by 6.5% in the last quarter. Talking about the situation in West Asia, he said that the crisis was temporary and expressed hope that soon peace will prevail in the world.
1: सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारी कर रही है. कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि देश में अब तक लगभग 43% कम वर्षा हुई है और जुलाई में भी मानसून के कमजोर रहने की आशंका है. कृषि मंत्री ने कहा कि कार्ययोजना के तौर पर वैकल्पिक फसलों, कम अवधि वाली किस्मों, फसल विविधीकरण और तालाबों, जलाशयों, चेक डैम, फार्म पॉन्ड और जल संसाधनों के बेहतर उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है.
0: Now we'll provide you IMD updates. The India Meteorological Department has said that conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into parts of Maharashtra, Chhattisgarh and Madhya Pradesh during the next 2 days. The Met Department has forecast heavy to very heavy rainfall over coastal Karnataka, Konkan and Goa over the next 3 days. According to IMD, Assam, Meghalaya, interior Karnataka, Madhya Maharashtra, Odisha, sub-Himalayan West Bengal, Sikkim and Telangana are expected to witness heavy rainfall today. The weather agency has predicted thunderstorms and lightning over parts of Delhi, Punjab, Haryana, Chandigarh, Bihar, Rajasthan, Jharkhand, Jammu and Kashmir, Ladakh, Uttarakhand and the northeastern states today.
1: और शगुन बात अब फीफा विश्व कप की, जहां पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है. अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया. स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई और उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया. श्रोताओं, अब हम बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम रुख करेंगे महानगरों की खबरों का, जिसमें होंगी दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता के समाचार. इसके साथ ही बेंगलुरु और हैदराबाद के समाचार भी होंगे. तो शगुन, सबसे पहले चेन्नई में क्या है खास?
0: द फर्स्ट अपडेट फरत
1: जी,
0: द तमिलनाडु इंजीनियरिंग एडमिशंस विल रिलीज द इंजीनियरिंग रैंक लिस्ट ऑन 1st of July. द स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर P. Vishwanathan said that candidates will get time for addressing their grievances from July 1st to 5th. So the Tamil Nadu Engineering Admissions, they scheduled to release the engineering rank list for 2.45 lakh students on June 29th. Following the delay in releasing the CBSE Class 12 results, the release of the rank list has been postponed to 1st of July. As many as 28,693 students have applied for engineering counselling this year. The minister announced that students can approach the nearby Tamil Nadu Engineering Admissions Facilitation Centres to rectify any errors on the rank list. Another update, Farhat, for our listeners. The Tamil Nadu government will launch the Gold Ring Scheme on September 15th. This coincides with the birth anniversary of former Chief Minister C.N. Annadurai, with an annual allocation of 755.83 crore rupees for its implementation. The scheme was one of the key promises outlined in the TVK's manifesto released ahead of the 2026 Assembly election. The government issued orders to operationalize the program and directed

0: officials to immediately float tenders for procurement of the gold rings. So under this scheme, every child born in government hospitals to families permanently residing in Tamil Nadu will receive a 1 gram gold ring. Children born on or after June 22nd this year will be eligible for the benefit and will receive the ring. After formal launch of the scheme, how great! The initiative is aimed at honoring both the newborn and the mother while also encouraging institutional deliveries in government hospitals.
1: और अब दिल्ली का रुख कर लेते हैं। दिल्ली सरकार ने राजधानी के पंजीकृत भवन निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए दिल्ली भवन निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य योजना को स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना से दिल्ली के लगभग 2,70,00,000 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों सहित करीब 10,00,000 लोगों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। इस योजना की अगर बात की जाए तो श्रमिकों और उनके परिवार का वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। इसमें साथ ही कई चिकित्सीय सुविधाएं निःशुल्क मिलेंगी। उपचार की पूरी प्रक्रिया कैशलेस होगी, जिससे श्रमिकों और उनके परिवारों को आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। वहीं क्रिकेट में दिल्ली प्रीमियर लीग DPL का तीसरा सीजन 31 जुलाई से 30 अगस्त तक चलेगा। दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने इसकी घोषणा की है और बताया कि नए सीजन से पहले खिलाड़ियों की नीलामी 1 जुलाई को होगी। एक महीने तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में पुरुषों की 8 टीमें और महिलाओं की 4 टीमें हिस्सा लेंगी। और अब शगुन, बेंगलुरु में क्या है खास?
0: वेल, द फर्स्ट अपडेट फॉर इट इज अबाउट नमा गाइड। The Karnataka Tourism Department is planning to develop a dedicated website and mobile application, which is Nama Guide, to help tourists easily access the services of local guides across the state. So the proposed platform will enable domestic and international visitors to connect with registered guides, obtain authentic information about tourist destinations, and enhance their travel experience. This initiative, it is also expected to generate employment opportunities for guides and support better maintenance and cleanliness of tourist sites. So a good news for the guides. Another update. A stakeholder workshop on Atmanirbharta in defense manufacturing was held at Khanij Bhavan in Bengaluru yesterday, and this brought together over 50 representatives from the center, the Karnataka government, defense PSUs, industry, MSMEs and startups. Inaugurating the workshop, Dr. N. Manjula, Secretary, Electronics, IT, BT and Science and Technology Department, said Karnataka has been entrusted with leading the national policy consultation process on defense manufacturing due to its strong aerospace and defense ecosystem. Discussions focused on strengthening indigenous defense production through policy reforms, also industrial infrastructure, testing and certification facilities, MSME and startup participation.
1: और अब महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के कृषि और आपदा प्रबंधन विभागों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण उच्च मूल्य वाली फसलों को हुए नुकसान का सटीक डेटा प्राप्त करने के लिए संयुक्त रूप से ड्रोन आधारित सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। कल मुंबई में केले की फसल को हुए नुकसान की समीक्षा के लिए आयोजित एक बैठक में श्री फडणवीस ने कहा कि ड्रोन तकनीक फसल के नुकसान का सटीक आकलन सुनिश्चित करेगी, जिससे बीमा कंपनियों को मुआवजे के दावों को बिना किसी कठिनाई के संशोधित करने में भी मदद मिलेगी। वहीं जम्मू के सीमावर्ती जिले पुंछ के छात्रों के एक समूह ने कल मुंबई के लोकभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा से मुलाकात की। ये मुलाकात भारतीय सेना के ऑपरेशन सद्भावना पहल के तहत राष्ट्रीय एकता और सद्भावना कार्यक्रम के हिस्से के रूप में आयोजित की गई थी। आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार राज्यपाल ने उनकी शिक्षा, खेल, उपलब्धियों और भविष्य की आकांक्षाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने उन्हें अपने चुने हुए क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। राज्यपाल ने उनके उज्जवल और सफल भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं दी।
0: हेडिंग नाउ टू हैदराबाद, former Vice President M. Venkaiah Naidu was hailed as the epitome of friendship, discipline and commitment at the launch of the book Venkaiah Naikudu in Hyderabad. This event drew several prominent dignitaries including Union Ministers G. Kishan Reddy and B. Srinivas Verma, Odisha Governor K. Haribabu, Tripura Governor N. Indrasena Reddy as well. Speaking at the event, Union Minister Kishan Reddy praised Naidu's exemplary punctuality and his constructive contributions to rural development. He noted that that Naidu's dignified assembly speeches serve as a vital guide for aspiring politicians especially in an era where political discourse has degraded. Former Haryana Governor B. Dattatreya commended Naidu's tireless nature, his fierce advocacy for the Telugu language and his masterful management of the upper house during the passage of the Article 370 bill. Union Minister Srinivas Verma highlighted Naidu's inspiring journey from a remote village to the nation's second highest constitution.

0: National Office, crediting Naidu's mentorship for shaping numerous dedicated leaders, including himself.
1: और अब पश्चिम बंगाल सरकार के एक महत्वपूर्ण फैसले की बात कर लेते हैं। शहरी विकास और नगर निगम विभाग ने खुले में शौच, कूड़ा फेंकना, अवैध रूप से कचरा डालना, प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग का उपयोग करना और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। राज्यपाल के आदेश अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप जारी ये निर्देश राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों पर लागू होता है। ये प्रतिबंध दो चरणों में लागू होगा। पहला चरण 1 जुलाई 2026 से शुरू होगा, जिसमें दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, कुर्सियोंग और मिरिक अधिसूचित क्षेत्र प्राधिकरण शामिल हैं। इसके बाद दूसरा चरण शुरू होगा 1 सितंबर से, जिसमें पश्चिम बंगाल के सभी शेष नगर निगम, नगर पालिकाएं और अधिसूचित क्षेत्र प्राधिकरण भी शामिल होंगे। उल्लंघनकर्ताओं पर खुले में शौच करने पर 200 रूपये, कूड़ा फेंकने, अवैध रूप से कचरा डालने या प्लास्टिक बैग के उपयोग पर 200 रूपये और अन्य उल्लंघनों पर तत्काल डिजिटल ऑनलाइन जुर्माना लगाया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 100 रूपये का जुर्माना होगा। वहीं नकद वसूली की अनुमति नहीं है और सरकार सभी नागरिकों से स्वच्छ, स्वस्थ और कूड़ा मुक्त रखने में सहयोग करने की अपील कर रही है। और श्रोता, महानगरी की खबरों के बाद अब महानगरों के मौसम का हाल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की। आज तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, यानी थोड़ी सी गर्मी का सामना आज करना पड़ सकता है। 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में लेकिन बादल छाए रहेंगे, बारिश की भी संभावना है वहां पर और तापमान रहेगा 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोलकाता में भी हल्की बारिश हो सकती है, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
0: Chennai is likely to witness a generally cloudy sky with moderate rain. The temperatures are expected to range between minimum 28 degrees and maximum will be around 38 degrees Celsius in Chennai. Bengaluru is forecast to experience a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature is expected to be around 20 degrees, while the maximum may reach 29 degrees Celsius. Hyderabad is likely to see a generally cloudy sky and there is possibility of rain or thunderstorm or dust storm. The temperatures are expected to range from 24 degrees Celsius to 35 degrees Celsius at maximum in Hyderabad.
1: और श्रोताओं, आज है 24 जून 2026। तो आइए इतिहास में दर्ज आज ही के दिन कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात 1717 की, इंग्लैंड में आज ही के दिन पहली संगठित फ्री मेसन ग्रैंड लॉन्च की स्थापना हुई।
0: 1717 इन 1812 नेपोलियन बोनापार्टिस ग्रैंड आर्मी नंबरिंग 500,000 बिगिन देयर इन्वेजन ऑफ रशिया बाय क्रॉसिंग द नीमान रिवर।
1: 1812 में फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्टी ने रूस पर आक्रमण शुरू किया।
0: इन 1853 यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन पियर्स साइंड द गैस्टन परचेज बाइंग 29,670 स्क्वायर माइल्स फ्रॉम मेक्सिको फॉर $10 मिलियन नाउ सदर्न एरिजोना एंड सदर्न न्यू मेक्सिको।
1: 1859 में फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच प्रसिद्ध सोलफेरोनो का युद्ध लड़ा गया।
0: इन 1930 First detection of an airplane using reflected radio waves, a precursor to radar by US Naval Research Laboratory engineers in Anacostia, Washington DC.
1: 1901 में पेरिस में पहली बार पाब्लो पिकासो की कला प्रदर्शनी आयोजित की गई।
0: In 1948, Soviet Union blockades West Berlin by stopping access by road, rail and water.
1: 1982 की अगर बात की जाए तो भारत के तीसरे उपग्रह इनसेट 1A का प्रक्षेपण किया गया।
0: In 1950, the Korean War began after North Korea unleashed an attack southward across the 38th parallel, prompting the UN Security Council minus the Soviet delegate to pass a resolution calling on UN members to assist South Korea.
1: और सर्गुन अगर बात की जाए 1990 की तो आज के दिन पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को एकीकृत करने पर सहमति व्यक्त की थी।
0: In 2010, Australian politician Julia Gillard was sworn in as Australia's first female prime minister.
1: और अब आइए हम बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की ओर, जहां हम याद करेंगे कुछ जानी मानी शख्सियतों को। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भारत के प्रसिद्ध संगीतज्ञ और हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित ओंकारनाथ ठाकुर की। इनका संबंध ग्वालियर घराने से था। ओंकारनाथ के दादा महाशंकर और उनके पिता गौरीशंकर नाना साहेब पेशवा की सेना के वीर योद्धा थे। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर का जितना प्रभावशाली व्यक्तित्व था उतना ही असरदार उनका संगीत भी था। एक बार महात्मा गांधी उनका गायन सुनकर टिप्पणी की थी कि पंडित जी अपनी मातृक रचना से

जन समूह को इतना प्रभावित कर सकते हैं जितना मैं अपने अनेक भाषणों से भी नहीं कर सकता। उन्होंने एक बार सर जगदीश चंद्र बसु की प्रयोगशाला में पेड़ पौधों पर संगीत के स्वरों के प्रभाव विषय पर अभिनव और सफल प्रयोग किया था, जब वे सूरदास का पद मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी गाते थे और पूरे श्रोता समुदाय की आंखें आंसुओं से भीग जाती थी।

0: Well, as we can hear it, we may not be able to understand it because we may not be knowing the language, but we can guess through the voice. He was known for his rich voice and dramatic phrasing. So together with lyricist and longtime collaborator Alfredo Lopera, Gardel wrote several classic tangos. So for many, Gardel embodies the soul of the tango style. He's commonly referred to as Carlitos. Well, that means the song thrush, the king of tango as well, the wizard, and well, ironically, El Mudo as well.
1: और श्रोताओं, आज ही के दिन जन्म हुआ था प्रसिद्ध भारतीय लेखक, इतिहासकार, श्रेष्ठ वक्ता और विद्वान विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े का। इन्हें इतिहास आचार्य राजवाड़े के नाम से ख्याति प्राप्त थी। संस्कृत और व्याकरण के भी वे प्रकांड पंडित थे, जिसका प्रमाण उनके सुप्रसिद्ध कृतियों राजवाड़े धातु कोश और संस्कृत भाषेचा उलगडा आदि में दिखाई देता है। विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े ने भारतीय विवाह संस्था का इतिहास नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना मराठी भाषा में की थी। ग्रंथ इतिहास राजवाड़ी के व्यापक अध्ययन और चिंतन की एक अनूठी उपलब्धि है।
0: टुडे लिसनर्स, वी आर आल्सो रिमेम्बरिंग जेफरी आर्नोल्ड बेक और जेफ बेक, द गिटारिस्ट। ही रोज टू प्रोमिनेंस एज अ मेंबर ऑफ द रॉक बैंड यार्डबर्ड्स एंड आफ्टरवर्ड्स फाउंडेड एंड फ्रंटेड द जेफ बेक ग्रुप एंड बेक एज वेल। इन 1975 ही स्विच्ड टू एन इंस्ट्रूमेंटल स्टाइल विद फोकस ऑन एन इनोवेटिव साउंड एंड हिज रिलीजेस स्पैन जॉनर्स and styles ranging from blues rock, hard rock, jazz fusion as well.

0: influential lead guitarist in rock. So he recorded with many artists, and Beck earned wide critical praise and received the Grammy Award for Best Rock Instrumental Performance 6 times, winning in 3 categories at the 2010 Grammy Awards for a career total of 8 Grammys. He was inducted into the Rock and Roll Hall of Fame 2 times, first as a member of Yardbirds and secondly as a solo artist in the year 2009.
1: और श्रोताओं, आज ही के दिन हमें अलविदा कहा दरबान सिंह नेगी ने। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन चंद भारतीय सैनिकों में से ये एक थे जिन्हें ब्रिटिश राज का सबसे बड़ा युद्ध पुरस्कार विक्टोरिया क्रॉस मिला था। दरबान सिंह नेगी करीब 33 साल के थे और गढ़वाल राइफल्स की पहली बटालियन में नायक के पद पर तैनात थे। 23-24 नवम्बर 1914 को उनकी रेजिमेंट ने दुश्मन से फेस्टुबर्ट के करीब ब्रिटिश खंदकों पर फिर से कब्जा करने की कोशिश की और इस युद्ध के दौरान उनकी भूमिका के लिए उनको विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया।
0: Well, we salute the brave heart.
1: और अब बात करते हैं रानी दुर्गावती की। गोंडवाना की शासक थी ये, जो भारतीय इतिहास की सर्वाधिक प्रसिद्ध रानियों में से एक थी। दुर्गावती ने 16 वर्ष तक जिस कुशलता से राज संभाला, उनकी प्रशस्ति इतिहासकारों ने की। आईना अकबरी में अबुल फजल ने लिखा कि दुर्गावती के शासनकाल में गोंडवाना इतना सुव्यवस्थित और समृद्ध था कि प्रज्ञा लगान की अदायगी स्वर्ण मुद्राओं और हाथियों से करती थी।
0: Today it's also football legend Lionel Messi's birthday. Well, he plays as a forward for and captains both Major League Soccer club Inter Miami and Argentina national team. We have been seeing him a lot because the FIFA World Cup 2026, all eyes on FIFA World Cup 2026. And he started off this World Cup with a bang in the opener against Algeria, where he scored a hat-trick, 3 goals. And well, we regard him as one of the greatest players in history. Messi has set numerous records for individual accolades won throughout his professional footballing career. This include 8 Ballon d'Or and 6 European Golden Shoes, and 8 times being named the world's best player by FIFA. In 2025, he was named the all-time men's world best player. Messi is the most decorated player in the history of professional football, having won 46 team trophies.
1: और अब बात करते हैं मास्टर तारा सिंह की। प्रसिद्ध कट्टर सिख नेता थे ये, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के समय सिखों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया था। तारा सिंह एक ऐसे सिख नेता होने के साथ साथ पत्रकार और लेखक भी रहे। इन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी समर्थन किया। लालपुर के स्कूल में प्रधान अध्यापक का कार्य इन्होंने किया और जिस कारण इनके नाम के साथ मास्टर शब्द हमेशा के लिए जुड़ गया।
0: Michael John Kells Fleetwood's birthday. Mick Fleetwood also, well, the musician, songwriter and actor as well. He is the drummer, co-founder and leader of the rock band Fleetwood Mac.

0: और श्रोताओं, इसके साथ ही वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। अगर आप हमारे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं www.newsonair.gov.in पर। तो इसके साथ ही शगुन और फरहत को दीजिए कार्यक्रम यही समाप्त करने की इजाजत। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत

0: वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक, और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
2: रास लाफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के

0: अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
1: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
3: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मानसून

0: उनके कमजोर रहने की आशंका है।
1: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है, हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है, इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले मतलब जहां 25 से 50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं ऐसे 76 जिले हैं, और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
0: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज़ को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है। खबर को शीर्षक दिया है दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून, जबकि दैनिक भास्कर का कहना है मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हों, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपरफूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। BRICS nations call for stronger cooperation to address widening

0: सलामती को दरपेश बढ़ते हुए बहुत से खतरात से निमटने के लिए मजबूत तर तआवुन के लिए कहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को रासुल-अफ़ान गैस प्लांट धमाके में 12 भारतीयों की हलाकत पर कतर के अमीर की तरफ से ताज़ियती कॉल मौसूल हुई। भारत ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर के बारे में पाकिस्तान की रायज़नी की सख्त मज़म्मत की है। उसने कहा है कि पाकिस्तान इंसानी हुकूक की पामालियों से तवज्जो हटाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। भारत और अमरीका ने मुजवजा दो तरफा तजारती माहदे को ताज़ा शक्ल देने के लिए नई दिल्ली में आला सतह की तजारती बातचीत शुरू की और फीफा आलमी कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के दरमियान मैच बराबरी पर खत्म हुआ। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों और सीनियर सिक्योरिटी अफसरान ने दहशतगर्दी और साइबर खतरा समेत सलामती को दरपेश बहुत से आलमी चैलेंजों से निमटने के लिए मजबूत तर तआवुन के लिए कहा है। भारत की तरफ से ये आवाज कौमी राजधानी में मुनाकिदा एक आला सतह की मीटिंग में उठाई गई। भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल की क्यादत में इस ग्रुप की भारत की सदर नशीनी के तहत मुनाकिदा ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की 16वीं मीटिंग में रुकन मुल्कों के सलामती के सरकर्दा नुमाइंदे यकजा हुए, जिसका मकसद बैन-अल-अक़वामी बिरादरी को दरपेश रिवायती और उभरते हुए खतरात से निमटना था। भारत की वजारत खारजा के मुताबिक बातचीत में सलामती को दरपेश उभरते हुए उन खतरात पर तवज्जो मरकूज की गई जो कौमी सरहदों से बाहर भी लाहक होते जा रहे हैं। मंदुबीन ने तवानाई और सबके लिए खुराक की फराहमी से लेकर आबो हवा से मुतालिक अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्द तंजीमों के हाथों उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के बेजा इस्तेमाल तक के मामलात पर तबादले ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद असानी ने मुख्तलिफ शोबों में बाहमी तआवुन को मजीद मुस्तहकम बनाने के अपने अज़्म को दोहराया है और एक दूसरे के साथ करीबी राबता रखने से इत्तेफाक किया है। दोनों रहनुमाओं ने अपने शहरियों की खुशहाली और हिफाजत को यकीनी बनाने के अज़्म को भी दोहराया और एक दूसरे की यगानगत और मदद के अपने अहद को ताज़ा किया। जनाब मोदी ने कल एक टेलीफोन बातचीत के दौरान कतर के अमीर से इतवार को कतर के रासुल-अफ़ान सनती शहर में एक हादसे के दौरान भारतीय बाशिंदों की हलाकत पर ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। जनाब मोदी ने मुतासिरा कुनबों के तई हमदर्दी जाहिर करने पर कतर के रहनुमा का शुक्रिया अदा किया और जख्मियों के जल्द इलाज के लिए फौरी मदद फराहम करने को सराहा। मगरबी एशिया की सूरत हाल पर बातचीत के दौरान वजीर आजम मोदी ने अमन के लिए जारी कोशिशों में कतर के तामीरी रोल की तारीफ की।
1: रासुल-अफ़ान परियोजना में जो वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की सूरत हाल पर पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की रायजनी की सख्ती से मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि यह रायजनी अपनी नाकामियों को छुपाने और इंसानी हुकूक की पामाली से तवज्जो हटाने की पड़ोसी मुल्क की नाकाम कोशिशें हैं। नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए वजारती खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत इन फर्जी दावों को उतने ही वाजह तौर पर मुस्तरद करता है जिसके ये हकदार हैं। भारत और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान दिफा की शराकत दारी पर तर्जुमान ने कहा कि हालिया बरसों में इमारात के साथ भारत के ताल्लुकात में बड़ा इजाफा हुआ है, जिसमें दिफा से मुताल्लिक शराकत दारी का एक अहम रोल है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने मुस्तहकम मईशतों की तामीर करने, मुस्तकिल तरक्की की रफ्तार में तेजी लाने और सबकी शमूलियत वाली तरक्की को यकीनी बनाने के लिए कसीर मुल्की मजबूत तर तआवुन के लिए कहा है। कल नई दिल्ली में तरक्की से मुतालिक सरबराह कॉन्फ्रेंस के आलमी इज्तिमा से वर्चुअल वसीले से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बाहम मरबूत इस दुनिया में खुशहाली और चैलेंजेस मुश्तरक हैं, लिहाजा तनाज़ात और गैर यकीनी के नताइज तरक्की पजीर मुल्कों और आलमी जुनूब पर गैर मुतनासिब तरीके से मुरतब होते हैं। मोहतरमा सीतारमन ने जोर देकर कहा कि इन चैलेंजों से निमटने के लिए मरबूत आलमी कार्रवाई लाजिम है। भारत की इक्तिसादी तरक्की का खास तौर पर जिक्र करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि मुल्क की तरक्की बुनियादी तौर पर

0: के रहनुमा शामिल हैं। नीति आयोग के नायब चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार लहरी ने कहा है कि आखिरी सेमाही में भारत की मजमूई तिजारत में 5.4% की शरह से तरक्की हुई है। उन्होंने नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट के ताजा एडिशन के इजरा के दौरान ये बात कही। डॉक्टर लहरी ने मजीद कहा कि आखिरी सेमाही में भारत की बरामदात 1.84 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई और दरामदात में 6.5% का इजाफा हुआ है। भारत के अहम मादनियात से मुतालिक मिशन में खातिरखा तेजी आई है। कानों की वजारत ने उमूमी तौर पर अहम 56 और दिफाई एतबार से अहम धात ब्लॉकों और दरियाफ्त करने के लाइसेंस वाले 11 ब्लॉकों की कामयाब नीलामी की है। वजारत ने 10 अहम और दिफाई एतबार से अहम कान ब्लॉकों को 7वें मरहले की नीलामी के तहत कामयाबी के साथ नीलाम किया है। नीलाम किए गए इस तरह के ब्लॉकों की कुल तादाद 56 हो गई है, जबकि अभी तक 88 ब्लॉकों की पेशकश की गई है। नीलामी की यह शरह 63% है। वजारत ने बताया कि ऐसा पहली बार है कि मरकज ने गुजरात, उत्तराखंड और तेलंगाना में अहम मादनियात के ब्लॉकों की नीलामी की है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत और अमेरिका ने एक मुजवजा दो तरफा तिजारती माहिदे को जदीद और कतई शक्ल देने के लिए आला सतह की तिजारती बातचीत शुरू की है। ये बातचीत अमेरिका की महसूल से मुतालिक पॉलिसी में तब्दीली की वजह से इस साल के शुरू में तय किए गए एक फ्रेमवर्क में रुकावट की वजह से की जा रही है। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के तिजारत के नुमाइंदे जेमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के सफीर सर्गियो गौर से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
1: दोनों मुल्कों का मकसद 24 जुलाई से पहले एक उबूरी तिजारती माहदे की तकमील करना है, जब तिजारती शराकतदारों से दरामद किए जाने वाले सामान पर अमरीका के आरजी 10% महसूल की मुद्दत खत्म हो जाएगी। 20 फरवरी को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने इन बेहद महसूलात को खत्म करने का हुक्म दिया था। इसकी वजह से अमरीकी इंतजामिया को सभी मुल्कों पर तिजारती कानून की 122वीं शिक के तहत 150 दिन के लिए 10% आरजी महसूल लागू करना पड़ा था। ये सिलसिला 24 फरवरी को शुरू हुआ था, जो 24 जुलाई को खत्म हो जाएगा। दोतरफा तिजारती कशीदगी में कमी आ जाने के बाद अब अमरीका में ज्यादातर भारतीय अशिया पर दोतरफा तिजारती महसूल में कमी करके इसे 18% कर दिया है और इससे पहले के 25% महसूल को खत्म कर दिया है। भारत ने भी बहुत सी अमरीकी सनती और जरई अशिया पर महसूलात में कमी करने या इन्हें हटाने की तजवीज पेश की है। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: इससे पहले जनाब गोयल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो भारत अमेरिका दो तरफा तिजारती माहदे पर नतीजा खेज बातचीत के बारे में पुरउम्मीद हैं। इस दौरान जनाब गोर ने भी सोशल मीडिया पर एक पैगाम भेजा है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका एक ऐसे दो तरफा मजबूत तिजारती माहदे को कतई शक्ल देने की जानिब फैसला कुन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों मुल्कों के लिए नए इक्तसादी मौके पैदा होंगे और खासतौर पर अमरीका भारत इक्तसादी शराकतदारी में गहराई पैदा होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि बकौल उसके एक तारीखी अमन मुआहदे के हिस्से के तौर पर ईरान इस बात पर रजामंद हो गया है कि वो कभी न्यूक्लियाई हथियार हासिल नहीं करेगा। इस मुआहदे के सबब अबनाए हुरमुज में कशीदगी का खात्मा हो गया है। पेंसिल्वेनिया के शहर मैकनगी में मैन ट्रक्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में जनाब ट्रंप ने कहा कि ईरान को न्यूक्लियाई हथियार हासिल करने से रोकना इस्लामी जमहूरिया की जानिब उसकी इंतजामिया की पॉलिसी का असल मकसद है। जनाब ट्रंप ने ये बात जोर देकर कही कि ईरान की फौजी सलाहियत में शदीद कमजोरी आ गई है। उन्होंने कहा कि ईरान की मईशत और दिफा के शोबे को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक मगरबी एशिया खित्ते में ईरान की हिमायत याफ्ता ग्रुप हमले जारी रखेंगे और मिलिटेंट सरगर्मियों में मसरूफ रहेंगे, पायदार अमन इस्तेहकाम कायम नहीं हो सकता है। खलीज फारस के खित्ते के अपने दौरे के हिस्से के तौर पर अबू ज़हबी पहुंचने पर जनाब रूबियो ने जोर दिया कि लेबनान में जंगबंदी पर बातचीत ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात से अलग है। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने हाल ही में लेबनान के सदर जोसेफ ऑन और अमरीका के नायब सदर जेडी वेन से बात की है और ये कि अमरीकी अहलकार इस वक्त लेबनान में मसरूफ अमल हैं। समंदर से मुतालिक बैन अलाक्वामी तंजीम IMO ने उन 11,000 से ज्यादा जहाजों को निकालने के मंसूबे का ऐलान किया है जो आबनाए हुर्मुज में अब भी फंसे हुए हैं। IMO के सेक्रेटरी जनरल अरसेनियो डोमिगेज

0: एक बयान में कहा है कि उनकी तंजीम ने इन लोगों को निकालने की कार्रवाई में मदद के मकसद से हिफाजत के लिए दरकार जमानतों और महफूज जहाजरानी की तौसीख शुदा शराइत की यकीन दहानी कर ली है। तमिलनाडु की हुकूमत ने वेट्री तमजीगम विजन दस्तावेज को मंजूरी दी है। इस दस्तावेज की अहम पहल मैटरनल अंकल्स गोल्ड रिंग स्कीम है। इस स्कीम के तहत तमिलनाडु में मुस्तकिल तौर पर रिहाइश पजीर खानदानों के नौजायदा बच्चों को 1 ग्राम सोने की रिंग पेश की जाएगी, बशर्ते कि बच्चे की पैदाइश सरकारी अस्पताल में हुई हो। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कहा है कि अगले 2 दिन के दौरान जुनूब मगरबी मानसून की पेशकदमी से महाराष्ट्र के, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम के साजगार रहने का इम्कान है। महकमे ने साहिली कर्नाटक, कोंकण और गोवा में अगले 3 दिन के दरमियान शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। फीफा आलमी कप 2026 में पुर्तगाल ने अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में ग्रुप के मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। 41 साल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल करके पुर्तगाल को उज्बेकिस्तान के खिलाफ 5-0 से जीत दिलाने में मदद की। रोनाल्डो ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 6 अलग-अलग आलमी कप टूर्नामेंट में गोल किए हैं। उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया है। फॉक्सब्रो के बोस्टन स्टेडियम में इंग्लैंड और घाना के दरमियान खेला गया ग्रुप एल में किसी गोल के बगैर बराबरी पर खत्म हुआ। ये थी खबरें और अब अखबार के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया असद। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने IAS 2026 बैच के अफसरान से वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुलाकात की खबर को सफे अव्वल पर शाया करते हुए लिखा है कि वजीर आजम ने कहा कि मजबूत अजम और अवाम की फलाह बहबूद पर मबनी विकसित भारत 2047 की क्यादत करें। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है अमरीका और ईरान के दरमियान अमन माहदे के बाद आबनाए हरमुज में जहाजों की आमद और रफ्त बहाल, भारतीय परचम बरदार जहाज अपनी अपनी मुकर्रा बंदरगाहों के लिए रवाना। इसी अखबार की एक और खबर है कि दिल्ली में ब्रिक्स ममालिक के कौमी सलामती के मुशीरों की एक आला सतही मीटिंग में दहशतगर्दी और साइबर खतरात समेत कई अहम मामले पर नतीजा खेज बातचीत हुई। हुकूमत एलनिनो की वजह से मानसून के असरात से निपटने और किसानों की पेशगी मदद के लिए पूरी तरह तैयार है। वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान के इस बयान को अखबारों ने खसूसियत के साथ शाया किया है। इम्तिहानात मुनक़िद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान CUET 2026 के नतायज का किया ऐलान। उम्मीदवार सरकारी CUET पोर्टल के जरिए स्कोर कार्ड तक रसाई हासिल कर सकते हैं।
0: और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। ब्रिक्स मुल्कों ने दहशतगर्दी और साइबर खतरों समेत आलमी सलामती को दरपेश बढ़ते हुए बहुत से खतरात से निमटने के लिए मजबूत तरतआवन के लिए कहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को रास लफान गैस प्लांट धमाके में 12 भारतीयों की हलाकत पर कतर के अमीर की तरफ से ताज़ियती कॉल मौसूल हुई। भारत ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर के बारे में पाकिस्तान की रायज़नी की सख्त मजम्मत की है। उसने कहा है कि पाकिस्तान इंसानी हकूक की पामालियों से तवज्जो हटाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। भारत और अमेरिका ने मुजवजा 2 तरफा तजारती माहिदे को ताज़ा शक्ल देने के लिए नई दिल्ली में आला सतह की तजारती बातचीत शुरू की है। और फीफा आलमी कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के दरमियान मैच बराबरी पर खत्म हुआ। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।

कर 46 मिनट और 1 सेकेंड। तो आइए हंसते हुए मुस्कुराते हुए एक नए दिन एक नई सुबह का स्वागत करें आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं इस वक्त म्यूजिकल दिल लगी और आज साथ हूँ मैं आपके बबीता। नमस्कार।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: वक्त तो चला है 8:54 और 12 सेकंड। आप सुन रहे हैं म्यूजिकल दिल लगी। जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन आपका साहस और सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ाती रहेगी। मुस्कुराइए, प्रयास करते रहिए और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाते रहिए और सुनते रहिए FM।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के विरुद्ध साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता को दोहराया। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की है। कतर के अमीर ने रविवार को रास लफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति को रोका और इंटरनेट भी वहां बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
1: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जल ढमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं। भारत और अमरीका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को और आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। इससे पहले श्री गोयल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्हें भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। अमरीका के ह्यूस्टन में हुए मुकाबले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी हो गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मैच में आज ग्रुप के में कोलंबिया और कांगो के बीच मुकाबला जारी है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून के महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। अगले 3 दिन तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। National security advisers and senior security officials from the BRICS nations called for stronger cooperation to address a widening range of global security challenges, including terrorism, cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. The 16th BRICS National Security Advisers meeting, held under India's chairship of the grouping, led by India's NSA Ajit Doval, brought together top security representatives from member countries to discuss both traditional and emerging threats confronting the international community. According to India's Ministry of External Affairs, the discussions focused on evolving security risks that increasingly transcend national borders. Delegates exchanged views on issues ranging from energy

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड विश यू अ वेरी हैप्पी वाली मॉर्निंग। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और पक्की वाली दोस्त नाज। लेकर हाजिर हूं म्यूजिकल दिल लगी, जहां ढेर सारी बातें होंगी और एंजॉय करेंगे हम एक से बढ़कर एक सॉन्ग भी। तो कुल मिलाकर माहौल होगा म्यूजिकल और ढेर सारी बातों के बीच मैं पूछूंगी आपसे आज का सवाल भी।

और जिसका जवाब आप देंगे fmgoldairdelhi@gmail.com पर ईमेल के जरिए या फिर व्हाट्सएप मैसेज आप भेजेंगे 9868687533 पर। और फिलहाल एंजॉय करेंगे मेरे साथ प्रोग्राम का ये पहला सॉन्ग और जिसके साथ कुछ डांस स्टेप्स भी हों।

हां जी, तो अर्ज किया है कि नाचना सिर्फ पैरों का हुनर नहीं होता, ये तो दिलों के धड़कने का इशारा होता है। जब ये रूह झूमती है तब ये शरीर नाच उठता है, वरना खाली बदन में ये कमाल कहां होता है। और गौर फरमाइएगा जनाब कि तकदीर के भरोसे बैठने वाले सिर्फ आहें भरते हैं, वरना जो मेहनती होते हैं वो तो अपनी धुन पर ये पूरी दुनिया नचाते हैं।

तो जनाब हंसते रहिए, गाते रहिए और सुनते रहिए म्यूजिकल दिल लगी मेरे यानी नाज के साथ। कहाँ? अरे यहीं एफएम गोल्ड पर। और कहाँ? जहाँ मैं पूछने वाली हूँ आपसे आज का सवाल। आपको बताना है आज उस भारतीय साहित्यकार का नाम जिनकी एक रचना आप हर रोज गाते हैं। कैसे? चलिए ये भी सुन लीजिए। ओम जय जगदीश हरे। ये आरती तो आप भगवान जी के सामने हर रोज ही गाते होंगे। तो बस इसी आरती के रचयिता का नाम आज आपको मुझे बताना है। और एक हिंट आपके लिए ये भी है कि आज यानी 24 जून को इस महान हस्ती का स्मृति दिवस भी है। तो देखिए, टाइम वेस्ट करने का ऑप्शन तो है नहीं। आप जब तक लगाइए दिमाग और लिख भेजिए आज के सवाल का जवाब, तब तक मैं सुनवाती हूँ आपको म्यूजिकल दिल लगी की प्लेलिस्ट से ये अगला ट्रैक।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

म्यूजिकल दिल्लगी चल रहा है प्रोग्राम जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, जहां अब आज की तारीख यानी 24 जून की क्या है कहानी, ये आप सुनिए मेरे यानी नाज की जुबानी। तो जनाब, आज का दिन समर्पित है कूटनीति में हमारे यानी महिलाओं के योगदान को। क्योंकि आज के दिन को पूरी दुनिया में मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन इन डिप्लोमेसी के रूप में। आज का ये दिन वकालत करता है विदेश नीति और राजनयिक फैसलों को लेने में महिलाओं की भागीदारी और बराबरी का। मतलब कि सीधी सी बात है भैया कि महिलाएं न सिर्फ घर संभाल सकती हैं, न सिर्फ एक बेहतर प्रोफेशनल के रूप में खुद को साबित कर सकती हैं, बल्कि देश की आवाज बनकर एक सुनहरे भविष्य को आकार देने वाली मजबूत नेता भी बन सकती हैं। यही मैसेज देता है हमें आज का दिन। और क्या कुछ लिखा है इतिहास में आज के दिन के नाम जानेंगे, मगर इस ट्रैक को एंजॉय करने के बाद।

देखिए, इशारों इशारों में नहीं बल्कि साफ साफ गाकर मैं आपसे पूछ रही हूं कि ओम जय जगदीश हरे, इस आरती के रचयिता कौन हैं जिनका आज ही के दिन यानी 24 जून को देहावसान हो गया था और जिन्हें जाना जाता है आधुनिक पंजाबी गद्य के जनक के रूप में भी। म्यूजिकल दिल्लगी में यही है आज का सवाल, जिसका सही जवाब आपको लिखकर भेजना है। कहां और कैसे ये आप जानते हैं? अगर नहीं तो फिर से सुन लीजिए। fmgoldairdelhi@gmail.com पर करना है ईमेल या फिर व्हाट्सएप मैसेज आप भेजेंगे 9868687 पर। कितना सिंपल है, नहीं? और ठीक उतना ही सिंपल है किसी बुरी आदत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना भी। जी हाँ, बस कोशिश की जानी चाहिए पूरे दिल और ईमानदारी से। और फिर भारत सरकार का नशा मुक्त भारत अभियान भी तो है आपके साथ। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ये एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसका मुख्य उद्देश्य है एक नशा मुक्त समाज का निर्माण। देश भर के 19 लाख से ज्यादा शैक्षणिक संस्थानों को इस अभियान से अब तक जोड़ा जा चुका है और 28 लाख से भी ज्यादा लोगों को नशा मुक्ति और पुनर्वास की सुविधा इस अभियान के तहत दी जा चुकी है। और देखिए ना, नशा करना ही है तो कुछ ऐसा कीजिए ना जो जिंदगी भर ना उतरे और जो जिंदगी बना भी दे, जैसे कि ये।

और देखिए एक रिक्वेस्ट आई है एसके खन्ना जी की ओर से विकासपुरी से, कह रहे हैं कि प्लीज रिपीट क्वेश्चन एज देयर वाज सम डिस्टरबेंस। कोई बात नहीं, दोहरा देते हैं आपके लिए आज का सवाल। आपको आज बताना है कि ओम जय जगदीश हरे ये आरती किसके द्वारा रची गई है और उस महान हस्ती का आज स्मृति दिवस भी है। तो उम्मीद है अब डिस्टरबेंस दूर हो गया होगा और आपने सुन लिया होगा आज का सवाल। तो देर मत कीजिएगा,

0: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
1: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
2: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
1: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
2: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

जारी है म्यूजिकल दिल लगी का आज का सफर, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर विद मी यानी नाज, जहां बातों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे और आपको बताते हैं कि क्यों खास है आज की तारीख यानी 24 जून। तो जनाब, साल था वो 1564 और दिन था आज का ही, जब गोंडवाना की शासक रानी दुर्गावती ने वीर गति पाई थी मुगल शासन के खिलाफ लड़ते हुए। और दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग पाब्लो पिकासो की पहली प्रदर्शनी आज ही के दिन यानी 24 जून को पेरिस में लगाई गई थी, और वो साल था 1901। साल 1983 में भी था आज का दिन खास, क्योंकि तब पहली बार कोई अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में पूरे 6 दिन बिताकर पृथ्वी पर लौट आई थी, और नाम था उनका सैली राइट। इसके अलावा फुटबॉल के दीवानों के लिए भी आज का दिन है बेहद खास, क्योंकि लियोनेल मेसी, जो पूरी दुनिया के फुटबॉल आइडल हैं, मना रहे हैं अपना 39वां जन्मदिन। जाना कहीं नहीं है, रुक कर रहना है यहीं, क्योंकि गपशप रहेगी जारी आपकी और मेरी इस अगले सॉन्ग के बाद भी। अरे, अरे, रुक।

रुके हुए हैं और सुन रहे हैं म्यूजिकल दिल लगी मेरे यानी नाज के साथ, तो जान लीजिए कि आज की तारीख यानी 24 जून किन वजहों से है खास, इस पर ही तो हो रही थी हमारी बात। तो भारत के मशहूर और असरदार गायक होने के साथ साथ एक प्रमुख संगीत शास्त्री और शिक्षाविद रहे पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म दिवस है आज, जो कि अपने भावपूर्ण गायन, अनोखी काको प्रयोग शैली और तीनों सप्तकों में फैली अपनी दमदार आवाज के लिए जाने जाते थे। आज ही के दिन साल 1897 में गुजरात के बड़ौदा में उनका जन्म हुआ था। मुख्य रूप से उनका ताल्लुक ग्वालियर घराने से था और अपनी संगीत रचनाओं में वो अपना उपनाम प्रणव रंग लिखते थे। संगीत के क्षेत्र में आपके योगदान को सम्मानित करते हुए पंडित ओमकार नाथ ठाकुर साल 1955 में पद्मश्री और फिर साल 1963 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुए। फिलहाल मेरे साथ सुनिए ये अगला ट्रैक, इसके बाद जब लौटेंगे तो फिर बात करेंगे कि क्यों आज की तारीख को आपको याद रखना चाहिए।

वराहगिरी वेंकट गिरी, जो भारत के चौथे राष्ट्रपति रहे और देश के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे जिन्होंने एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ये चुनाव जीता और फिर देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए गए। आज यानी 24 जून को ही साल 1980 में वीवी गिरी जी ने हमसे सदा के लिए विदा ली थी और पंचतत्व में विलीन हो गए थे। साल 1969 में तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन साहब के अचानक निधन के बाद वीवी गिरी जी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला था और इसके बाद उन्होंने इतिहास रच दिया था और एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर वो चुनाव जीते और भारत के चौथे राष्ट्रपति बने।

और अब आज के सवाल का सही जवाब क्या है? वैसे तो आप सभी लिखकर भेज चुके हैं, लेकिन जैसी है रवायत, थोड़ी सी जानकारी के साथ बताऊंगी आपको कि पंडित श्रद्धा राम शर्मा है वो शख्सियत जिन्होंने की थी हर घर में गाई जाने वाली प्रभु आरती ओम जय जगदीश की रचना। साल 1837 में जालंधर के फिल्लौर में जन्मे पंडित श्रद्धा राम जी का ताल्लुक एक ब्राह्मण परिवार से था और कोई औपचारिक शिक्षा न मिलने के बावजूद वो सिर्फ 10 साल की उम्र में संस्कृत, हिंदी और फारसी भाषा के साथ साथ संगीत और ज्योतिष के भी ज्ञानी बन चुके थे। आज ही के दिन साल 1881 में इनका देहांत हो गया था, लेकिन उनकी असंख्य रचनाओं के जरिए वो हमेशा हमेशा अमर रहेंगे। और अब बारी है उन सभी लिसनर्स के नाम लेने की जिन्होंने दिया आज के सवाल का बिल्कुल यही और सही जवाब। तो हर रोज की तरह नवीन भाटिया जी का आया सबसे पहले मोती नगर नई दिल्ली से सही जवाब, उसके बाद तो भाई झड़ी ही लग गई। आशीष गायकर मुंबई से, विजय सुरलकर मोताला महाराष्ट्र से, रामकृष्ण चैतलवर नवी मुंबई से, अनु बरजात्या मुंबई से ही, संतोष सक्सेना भी मुंबई से ही, संभाजी सुतार गणेशवाड़ी कोल्हापुर से, परमिंदर सिंह रंधावा भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से, कुमकुम महाराष्ट्र से, ऋतिक कुमार वर्मा कहां से ये नहीं लिखा इन्होंने,

ब्रिजलाल ग्रेटर नोएडा वेस्ट यूपी से, अखिला प्रसाद राजाजी नगर बेंगलोर से, कैप्टन ईश्वर चंद्र शर्मा जी द्वारिका दिल्ली से, कैलाश चंद्र महिंद्रा पार्क दिल्ली से, उषा देसाई गिरगांव मुंबई से, प्रकाश गोगिया दिल्ली, भवानी शंकर चेन्नई से, अमरजीत सिंह दिल्ली से ही, सतीश घनाटे मुंबई से, आशा चंदवानी नई दिल्ली से, कैलाश शर्मा गुरुग्राम से, राजेश कुमार उत्तम नगर नई दिल्ली से, गौरी शंकर नागलोई दिल्ली से, राजकुमार गुप्ता नोएडा से, शेर सिंह राजौरा दिल्ली से, सत प्रकाश गोयल रोहिणी से और नरेंद्र स्वामी जी ने पटियाला से भेजा आज के सवाल का बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। और इसके अलावा भी कई सारे मैसेजेस आए हैं जिन्हें समय की कमी के चलते तो शामिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन चिंता मत कीजिए, वक्त है हमारे पास, बहुत सारा वक्त है, क्योंकि मैं मिलूंगी आपसे अब ठीक 10:30 बजे यानी 10:30 पर दिल का मेल बॉक्स लेकर रहूंगी हाजिर। और उससे पहले जानिएगा हिंदी और अंग्रेजी में देश और दुनिया से जुड़ी हर जरूरी खबर। और उससे भी पहले सुनिएगा म्यूजिकल दिल लगी की प्लेलिस्ट से ये लास्ट बट नेवर द लीस्ट सॉन्ग।

और भाई एक लास्ट लिसनर हमसे नाराज ना हो जाए इसलिए उनका नाम भी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले आया है ये मैसेज महेश अग्रवाल जी का, और इन्होंने भी दिया है आज के सवाल का बिल्कुल सही जवाब।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उसके परिणाम की समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ

0: बर्बर व्यवहार किया है। जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट भी बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिनिगेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस संबंध में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से इथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। तमिलनाडु सरकार ने वेत्री तमिलगम दस्तावेज को मंजूरी दे दी है। इसमें मामा की ओर से सोने की अंगूठी देने की बात कही गई है। योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों में बच्चे का जन्म होने पर राज्य के स्थायी निवासियों के नवजात शिशुओं को 1 ग्राम सोने की अंगूठी दी जाएगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती सुशासन और सेवा के लिए शाश्वत प्रेरणा बनी रहेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे। इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. National security advisers and senior security officials from the BRICS nations called for stronger cooperation to address a widening range of global security challenges, including terrorism, cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. The 16th BRICS National Security Advisers meeting, held under India's chairship of the grouping, led by India's NSA Ajit Doval, brought together top security representatives from member countries to discuss both traditional and emerging threats confronting the international community. Speaking at the meeting, National Security Advisor Ajit Doval stressed the need for collective deliberation and cooperation among BRICS nations to address emerging security risks and evolving forms of terrorism in an increasingly digitized world.
3: We need to be cognizant of the new security threats and challenges. Non-traditional threats have transcended national borders and have developed defeat systems against conventional responses. Innovative disruptive technologies, more camouflaged variants of terrorism, cyber threats in a world which is getting increasingly digitized, they all constitute an important threats for us.
2: Vice Chairperson of Niti Aayog, Dr. Ashok Kumar Lahiri, has said that the total trade of India has grown by 5.4% in the last quarter. He said this while releasing the latest edition of the Trade Watch.

0: सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणाम की समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
3: रास लाफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
3: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में है। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
3: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमरीका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार

0: समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने परमाणु हथियार हासिल न करने पर सहमति जताई है। उन्होंने इसे होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव समाप्त करने वाले एक ऐतिहासिक शांति समझौते का हिस्सा बताया है। अमेरिका में पेंसिल्वेनिया में एक औद्योगिक संयंत्र में आयोजित कार्यक्रम में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोकना उनकी सरकार का मुख्य उद्देश्य रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान की सैन्य क्षमताएं बुरी तरह कमजोर हो गई हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान की अर्थव्यवस्था और रक्षा क्षेत्र को भी काफी नुकसान पहुंचा है। ट्रंप ने कहा कि पश्चिम एशिया में व्यापक अस्थिरता को रोकने के लिए कदम आवश्यक था। ईरानी परमाणु केंद्रों के खिलाफ हालिया सैन्य कार्रवाई के बारे में श्री ट्रंप ने अमरीकी अभियान की प्रशंसा की। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल में इंग्लैंड और घाना के बीच बॉस्टन में मैच ड्रॉ रहा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, शांति समझौते के अंतर्गत ईरान ने परमाणु हथियार हासिल न करने पर सहमति जताई। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good morning. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the World News. The headlines. BRICS nations call for stronger cooperation to address widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats. Prime Minister Narendra Modi gets condolence call from Qatar's Emir after 12 Indians killed in Ras Laffan gas plant blast. India and United States open high-level trade talks in New Delhi to recalibrate proposed bilateral trade agreement. US President Donald Trump claims Iran has agreed never to acquire a nuclear weapon as part of peace agreement. And in FIFA World Cup, Portugal thrash Uzbekistan 5-0. Match between England and Ghana draw goalless. And now the news in detail. National security advisors and senior security officials from the BRICS nations called for stronger cooperation to address a widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. The 16th BRICS National Security Advisors meeting, held under India's chairship of the grouping, led by India's NSA, Ajit Doval, brought together top security representatives from member countries to discuss both traditional and

नमस्कार, ट्यून किया हुआ है आपने आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम शुरू हो चुका है दिल का मेल बॉक्स, जहां मैं यानी नाज करती हूं आपका वेलकम, स्वागत और खैर मकदम भी। और आप क्या करेंगे, जल्दी से खोलेंगे अपना फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर टैब, जो भी आपके पास मौजूद हो, fmgoldair@gmail.com। जी हाँ, बिल्कुल इसी एड्रेस पर भेजेंगे अपना नाम, कहाँ से लिख रहे हैं और कौन सा गीत सुनना चाहते हैं, और इसके साथ ही कुछ शेर व शायरी या कोई ऐसी बात जो बस बात बना दे। लिख भेजिए जल्दी से, व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं हमें, 9868686753 है हमारा नंबर। और जनाब, बात बस इतनी सी नहीं है, टेस्ट होगी आपकी फिल्मी नॉलेज भी, क्योंकि आपको सुनवाने वाली हूँ आज एक बार फिर एक खूबसूरत सा म्यूजिक पीस जो एक फेमस रॉक एंड रोल गाने का हिस्सा है और जिसे सुनकर आपको पहचानने हैं गीत के बोल। और फिर क्या करना है, बस वो बोल लिख कर भेज देने हैं, और क्या। तो सुनिए, ये रहा वो म्यूजिक पीस।

तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ही फेमस गाना है ये और रॉक एंड रोल गाना है ये, मस्ती भरा जिसे सुनकर कदम रुक ही ना पाए, है ना। तो जल्दी कीजिए, देर करने का ऑप्शन नहीं है आपके पास। और जैसा कि आपके मैसेजेस आने शुरू भी हो गए हैं मेरे पास, उन्हें करूंगी मैं लगातार शामिल। लेकिन उससे पहले चलिए एक फरमाइश पूरी क्यों ना कर दी जाए। तो सबसे पहला गीत जो आज हम दिल का मेलबॉक्स में सुनने वाले हैं, उसकी फरमाइश आई है हमारे पास सीधा मोताला महाराष्ट्र से। जी हाँ, और विजय सुरलकर, रतनमाला, ओम कुमार ने भेजी है ये फरमाइश और बहुत ही खूबसूरत गीत है। फिल्म है प्रेम गीत और सुरेश वाडेकर साहब के साथ अनुराधा जी की मीठी आवाज़।

और देखिए हम भी मिल गए हैं एक बार फिर। दिल का मेल बॉक्स चल रहा है प्रोग्राम, जहां आप भेज रहे हैं लगातार मैसेजेस और ईमेल्स भी, जिन्हें मैं करूंगी अब कार्यक्रम में शामिल। तो जनाब, मैसेज आया है तुलसी मस्कीन साहब का, अपना फरमाइशी गीत लिखकर भेजा है। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से लिखा है और इनके साथ शामिल हैं वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन और चंडीगढ़ से भी शामिल हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मैसेज के लिए। और अगला मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है लालगिरी जी का, रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से सीधा आ रहा है ये ईमेल। हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी इनके साथ शामिल हैं। लिख रहे हैं कि कार्यक्रम दिल का मेल बॉक्स, पेशकर्ता जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन, बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारा भी धन्यवाद स्वीकार कीजिए इस ईमेल को भेजने के लिए। और चलिए, अब याद दिलाना पड़ता है आपको हर बार कि भाई मेरी नजरें ढूंढती हैं उन मैसेजेस को, उन ईमेल्स को, जिनमें होती है कुछ शेरो शायरी या कुछ खास बात, क्योंकि सिर्फ नाम पढ़ने में या नाम शामिल करवा लेने में वो बात कहाँ, जो अपना लिखा हुआ कुछ बढ़िया सा अगर पढ़ा जाए तो मुझे भी पढ़ने में मजा आए और आपको भी सुनने में खुशी हो, है ना। तो जल्दी कीजिए, वक्त अभी है हमारे पास, कुछ ढूंढिए अच्छा सा और लिख भेजिए। और फरमाइशी गीत और आज के सवाल का जवाब तो आप लिखकर भेज ही रहे हैं। चलिए इसी बात पे एक बार फिर आपको वो धुन सुना देती हूँ जिसे आपको सुनना है और पहचानना है कि वो किस गीत का हिस्सा है।

तो एनर्जी आ गई है इस खूबसूरत से म्यूजिक पीस को, इस एनर्जी से भरे म्यूजिक को सुनने के बाद। तो अब देर मत कीजिए, जल्दी से लिख भेजिए कि कौन सा है ये गाना, और जो कुछ भी जानते हैं आप इस गाने के बारे में लिख डालिए। तो चलिए इसी बात पर अगला मैसेज हम शामिल कर लेते हैं। लिखा है कि धड़कनों की बातों को महसूस करना, उन बातों को समझ कर जवाब देना। कहने के लिए तो ये सामान्य बात होती है, लेकिन दिल की बात कहने के लिए न जाने कितने महीने लग जाते हैं, न जाने कितने साल गुजर जाते हैं। शायद इन्हीं हालात के बीच में रहने वाले शख्स जो भी होते हैं, हम कह सकते हैं कि मोहब्बत इसी को कहते हैं, प्यार इसी को कहते हैं। प्यार की मौजूदगी ही जीवन को विचलित कर देती है, और प्यार की खुशबू ही प्यार की पहचान कराती है। बात तो बड़ी गहरी लिखी है जनाब, और गाना भी बड़ा गहरा और बड़ा ही खूबसूरत चुना है इन्होंने, जिसकी फरमाइश लिखकर भेजी है उसे हम करेंगे पूरा। लेकिन कहां से आई है फरमाइश, किसने भेजा है मैसेज, ये तो सुन लीजिए। शिवाजी चौक कटनी से आया है ये मैसेज। अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कन्नौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रज्जन रजक, लालू, सोना, मोना, हनी और यश, और उनके मम्मी पापा भी इस मैसेज में शामिल हैं। क्या बात है जी, लगता है कि पूरा मतलब जो कॉलोनी है आपकी वो शायद इस वक्त प्रोग्राम सुन रही है, और सबने अपना अपना नाम इसमें लिखकर भेजा है। और वाकई ये मैसेज पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। और एक कमाल की बात बताऊं, सेम सॉन्ग की फरमाइश हमें एक और लिसनर से भी आई है। कौन है वो, सुनिए। बोध राज खोरवाल जी, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल, उत्तम नगर, दिल्ली से आई है फरमाइश। आप दोनों की फरमाइश एक है, तो चलिए हम भी इंजॉय करते हैं इस खूबसूरत गाने को।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको।

0: अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

स्वागत है आपका एक बार फिर। दिल का मेल बॉक्स खुला हुआ है, प्रोग्राम जारी है और आपके साथ मैं हूँ नाज। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपसे की थी रिक्वेस्ट, आपने भेजनी शुरू कर दी हैं बड़ी ही खूबसूरत सी शायरियां भाई, जिन्हें शामिल तो करना ही पड़ेगा। तो लिखा है कि माइक संभालो तो महफिल जगमगाए, नाज की आवाज दिलों को छू जाए, शब्दों में मिठास, लहजे में नजाकत, आरजे ही नहीं तुम हो मोहब्बत। नाज यूं ही चमकती रहो, तुम्हारी आवाज यूं ही दिलों तक पहुंचती रहे। क्या बात है अनुजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनु बड़जात्या जी का है ये मैसेज, सीधा मुंबई से आया है। शमशुल खान और अनुराज बेनारा इनके साथ इस मैसेज में शामिल है। और अगला मैसेज आया है चंडीगढ़ से। लिखते हैं कि सुख प्राप्त करने की चाह में आदमी मकान बदलता है, फिर दुकान बदलता है, और कभी कभी देश भी बदल देता है, और कभी कभी भेष भी बदल देता है, लेकिन अपनी सोच, अपना स्वभाव बदलने को बिल्कुल राजी नहीं है वो। भूमि नहीं, अपनी भूमिका बदलो। जिस दिन आपने अपना स्वभाव जीत लिया, उसी दिन आपका अभाव मिट जाएगा। क्या बात है। सतीश अनेजा जी का ये ईमेल आया सीधा चंडीगढ़ से, बिमला अनेजा जी के साथ। आपका भी बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मैसेज बहुत ही प्यारा है। जीवन टेस्ट है, खुशियां रेस्ट है, ज्यादा सोचना वेस्ट है, क्योंकि हम खुद ही इस संसार में कौन है, गेस्ट हैं। इसलिए स्वयं खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, यही हमारे लिए बेस्ट है। क्या बात है। और ये आपका जो मैसेज है ना सर, ये भी बेस्टम बेस्ट है। उत्तम नगर दिल्ली से आया ये मैसेज बोध राज घोरवाल, कमला रानी और भानु प्रकाश इस मैसेज में शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खूबसूरत से मैसेज के लिए। और अगला मैसेज शामिल करेंगे हम, जिसकी जैसी सोच वैसी तो कहानी रखता है, वैसी वो कहानी रखता है, कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है, हादसा उसका क्या बिगाड़ लेगा, जो घर से निकलते वक्त मां की दी हुई निशानी रखता है, जो औरों के लिए जीता है ईश्वर उस पे मेहरबानी रखता है, हमारा देश महफूज है, महफूज ही रहेगा, इसकी सरहद की खुदा निगहबानी करता है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत मैसेज। व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से आया है भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष इसमें शामिल है। और चलिए, घड़ी पर डाल ली है मैंने नजर, 10:51 भी हो चुके हैं जनाब, तो हमारे पास अभी है थोड़ा सा वक्त, तो कुछ और मैसेजेस हम शामिल कर लेते हैं। मेल का रुख कर लिया है मैंने। कृष्ण कुमार गुप्ता जी का ईमेल खोल लिया है। लिखते हैं कि विश्वास का पक्षी प्रभात होने से पूर्व ही प्रकाश का अनुभव करने लगता है और खुशी से गाने लगता है। बिल्कुल सही बात है। और आज के सवाल का जवाब भी लिखकर भेजा है भाई, सही है या गलत थोड़े से इंतजार के बाद आपको पता चल ही जाएगा। फिलहाल अगले मैसेज को ढूंढ रही हूं मैं, जिसमें लिखी हो कुछ ऐसी ही बात। मिल गया है मुझे। दोस्ती दिल से हो तो वफा बन जाती है, दोस्ती प्यार से हो तो इश्क बन जाती है, दोस्ती गैरों से हो तो पहचान बन जाती है, दोस्ती अच्छे इंसान से हो तो जिंदगी बन जाती है। होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल ने भेजा है ये मैसेज और एक बहुत ही खूबसूरत गीत की फरमाइश भी लिखकर भेजी है। और एक और मैसेज, होस्ट नाज जी हम भी सुन रहे हैं, प्लीज एनी सॉन्ग में शामिल कर लीजिए। ये मैसेज आया है रचिता मस्कीन, चैतन्य मस्कीन, तुलसी मस्कीन जी की ओर से, आशीष राजा भी इसमें शामिल है, चंडीगढ़ से ही है ये मैसेज। चलिए, और ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से भी आया है मैसेज हमारे पास। बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू भी इस मैसेज में शामिल हैं।
लेकिन शिकायत है मेरी आपसे कि ना आपने आज के सवाल का जवाब लिखा, ना कोई शेर व शायरी लिखी, ये क्या बात हुई भाई? कोई बात नहीं, अगली बार आप जरूर लिखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। खूबसूरत बहुत जिसका अंदाज है, आई हुई शो में गुल नाज है, जिसके आने से महक उठती है दिल की महफिल, धुन ये संगीत की क्या बजी आज है। ये तो यही तो आपको पहचानना है, पहचान लिया तो लिखकर क्यों नहीं भेजा। शमशुल कमर राही साहब, शाहीन फातिमा, अनु खान, अदनान खान और फैजान खान का ये मैसेज है। कहाँ से है? गंज डुंडवारा से है भाई। तो देर नहीं हुई है, अभी भी लिखकर भेज दीजिए जल्दी से गाने के बोल, ठीक है। और अगला मैसेज मैं शामिल कर रही हूँ, किसका? मास्टर अशोक वर्मा जी का कर लेते हैं। और जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से आया है ये मैसेज। अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना इसमें शामिल है। सुदामा नगर खंडवा से भी इसमें लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप शामिल हैं। और फरमाइश लिखकर भेजी है अपनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ईमेल के लिए। और अगला मैसेज मैं शामिल कर रही हूँ, अच्छा अगला मैसेज मैं शामिल करूँ उससे पहले एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप मेल करते हैं या मैसेज करते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ एक ही बार करें, या अगर दोबारा करना चाहते हैं तो थोड़ा रुक कर करें। लगातार मैसेज करने से क्या होता है ना कि जो बेचारे

लिसनर्स ईमानदारी से सिंगल मैसेज करते हैं, उनके मैसेजेस खो जाते हैं और बार बार बार बार रिपीट एक ही मैसेज स्क्रीन पर नजर आता है, तो ये तो थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाती है ना। तो प्लीज प्लीज प्लीज भरोसा रखिए हम पर, हम करेंगे आपके मैसेज शामिल और आपकी फरमाइश भी पूरी। बस थोड़ा सा सब्र रखने की जरूरत है और एक ही मैसेज करने की जरूरत है, ठीक है। उम्मीद है मुझे कि अगली बार आप ख्याल रखेंगे इस बात का। फिलहाल चलिए बात कर लेते हैं आज के उस गीत की जिसकी धुन, शुरुआती धुन मैंने आपको सुनाई, क्योंकि वक्त अब बहुत तेजी से बीत रहा है। तो जनाब, साल था वो 1965 जब एक सस्पेंस और थ्रिल से भरी फिल्म रिलीज हुई थी और जिसका नाम था गुमनाम। उसी फिल्म से है ये आइकॉनिक गाना जिसे आवाज दी रफी साहब ने, संगीत से सजाया शंकर जयकिशन की जोड़ी ने और गीत के शानदार बोल लिखे शैलेंद्र जी ने। एक डिस्को क्लब में ये गाना फिल्माया गया है जिस पर उस समय की मशहूर डांसर लक्ष्मी छाया जी को आप कोरियोग्राफर हरमन बेंजामिन के सिखाए स्टेप्स करते हुए देखते हैं। और एक खास बात बताऊं आपको कि साल 2001 में यानी पूरे 36 साल बाद ये गाना हॉलीवुड मूवी घोस्ट वर्ल्ड, जी हां, घोस्ट वर्ल्ड के शुरुआती क्रेडिट्स में कई सीन्स में ये गाना सुनाई दिया था। और चलिए हम भी सुने ये मस्ती भरा सॉन्ग। उससे पहले जल्दी से उन लिसनर्स के नाम शामिल कर लेते हैं जिन्होंने इस धुन को जल्दी से पहचाना और गीत के बोल भी लिखकर भेज दिए। प्रकाश गोगिया दिल्ली से, जयराम खोरवाल उत्तम नगर से, सतप्रकाश गोयल, मधु किरण, राजू मिंगलानी, फारूक अली खान, फैजी फराज, गुन्नौर यूपी से, सुदर्शन मुखी शांति नगर सोनीपत से आया जवाब। और मैं जानती हूँ इसके अलावा भी कई सारे जवाब आए हैं जो कहीं खो गए हैं, क्योंकि इतने सारे ईमेल्स और इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि उनमें से ढूंढना टटोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। लेकिन देखिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।

0: आसान हूँ।
1: देखिए जाना कहीं नहीं है क्योंकि इस गाने के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और उसके बाद फिर होगी हमारी मुलाकात। एक बेहद खूबसूरत जगह की तस्वीर लेकर रहूंगी हाजिर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उसके परिणाम की समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि टिप्पणियां पाकिस्तान के नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है। जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है।
1: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन हॉर्मुज जलडमरू मध्य से में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को वहां से निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों तथा समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्चस्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर भारत और विदेश में सभी पासपोर्ट प्राधिकरणों को शुभकामनाएं दी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल किए। इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

Namaskar, suswagatam, assalamu alaikum and have a grand welcome by me, आपकी होस्ट और घुमक्कड़ दोस्त नाज। ट्यून किया हुआ है आपने आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और जहां के स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त टाइम हुआ है 11:11:30। एंड एज यू नो ऑलरेडी कि ये समय है सैर सपाटे का, क्योंकि ये समय है हमारी खास पेशकश तस्वीर का। तो खूबसूरत गानों से सजी तस्वीर की आज की प्लेलिस्ट के साथ मैं तो हूँ पूरी तरह से तैयार, लेकिन क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ तो ध्यान से सुनिए। आज आप मेरे साथ एक बार फिर चल रहे हैं पूर्वोत्तर भारत, और करने वाले हैं सिक्किम राज्य के एक खूबसूरत हिल स्टेशन की सैर। बर्फ से ढकी पहाड़ों की ऊंची चोटियां यहां से आपको नजर आएंगी, और आप करेंगे भारत की पहली ग्लास स्काई वॉक मेरे यानी नास के साथ। तिब्बती भाषा में पदलिंग और ऐतिहासिक रूप से पेमांग गत्से मठ के लिए मशहूर इस जगह को आम बोलचाल में किस नाम से जाना जाता है, ये मैं नहीं, हर बार की तरह आप ही मुझे बताएंगे कहां और कैसे। वैसे तो आप जानते हैं, लेकिन फिर भी याद दिला रही हूं कि FM गोल्ड AIR Delhi@gmail.com पर करेंगे ईमेल या फिर व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे 9868687 पर, वो भी इस सॉन्ग के शुरू होकर खत्म होने से पहले।

भाई दो लोगों ने पूरी और बेहतरीन कोशिश की है आज की डेस्टिनेशन को पहचानने की, लेकिन थोड़े से अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि आपका जवाब सही नहीं है। सुदर्शन मुखी जी शांतिनगर सोनीपत से और अनु बड़जात्या जी मुंबई से, आपने कोशिश बहुत अच्छी की लेकिन थोड़े से दूर रह गए। आप सिक्किम राज्य के बेहद खूबसूरत और मशहूर हिल स्टेशन पेलिंग की आज सैर करेंगे, जो कि समुद्र तल से 2150 मीटर यानी लगभग 7200 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। खासियतें कई सारी हैं जिन पर सिलसिलेवार बातें करते रहेंगे, लेकिन पहले ये तो जान लीजिए कि यहाँ यानी पेलिंग तक पहुंचेंगे कैसे। तो भाई फ्लाइट लेंगे तो लैंड करेंगे बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसकी पेलिंग से दूरी 126 किलोमीटर के आसपास है। आराम से टैक्सी या कैब के जरिए आप ये सफर तय कर सकते हैं। बाय ट्रेन आपको नजदीकी रेलवे स्टेशन पड़ेगा न्यू जलपाईगुड़ी, जो कि सिलीगुड़ी में मौजूद है, और पेलिंग से यहाँ की दूरी है लगभग 120 किलोमीटर के आसपास। पूरी तरह बाय रोड ही जाना है तो जनाब बागडोगरा पहुंचिए और फिर वहीं से बुक कर लीजिए। प्राइवेट टैक्सी या फिर शेयरिंग कैब का भी ऑप्शन आपके लिए मौजूद है। फिलहाल सुनिए ये अगला गाना, फिर जब वापस आएंगे तो मुझे है आपको बताना कि किस मौसम में चाहिए आपको पेलिंग का प्लान बनाना।

देखिए, वैसे तो साल भर ही पेलिंग का मौसम सुहाना ही रहता है, लेकिन खासकर मार्च से जून के बीच अगर आप यहां आते हैं तो आसमान साफ होने की वजह से आप कंचनजंगा पर्वत की चोटियां साफ देख पाएंगे। छोटा सा खूबसूरत और शांत शहर है ये, तो छुट्टियां बिताने के लिए परफेक्ट प्लेस के रूप में ये खुद को साबित करता है। फोटोग्राफी या फिर रील्स बनाने के अगर हैं आप शौकीन, तो भाई अप्रैल से मई का टाइम स्लॉट आपको चुनना चाहिए, क्योंकि इस समय आप घाटी को लाल और गुलाबी फूलों से ढका हुआ पाएंगे। स्नोफॉल एंजॉय करना है तो आइए दिसंबर के आखिरी हफ्ते से जनवरी के बीच, और अपने साथ भरपूर मात्रा में गर्म कपड़े रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मॉनसून के दौरान पेलिंग जाने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस दौरान सिलीगुड़ी से पेलिंग के पहाड़ी रास्ते थोड़े खतरनाक हो जाते हैं। बाकी मौसम में जब आएंगे तो क्या कुछ एंजॉय करेंगे यहाँ यानी पेलिंग में जानेंगे, लेकिन इस अगले ट्रैक को सुनने के बाद।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

पूर्वोत्तर भारत के राज्य सिक्किम में राजधानी गैंगटॉक के बाद दूसरा सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस बनकर उभर रहा है पेलिंग, जहां की सैर पर हम निकले हैं और प्रोग्राम चल रहा है तस्वीर। और पेलिंग पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले जाना चाहिए यहां मौजूद पेमाइंग गत्से मठ, जो कि साल 1705 से यहां शान से खड़ा है। सिक्किम के सबसे मशहूर धार्मिक स्थलों में इसकी गिनती होती है और ये मठ बौद्ध धर्म के निंगमा संप्रदाय के अंतर्गत आता है। इस मठ का खूबसूरत आर्किटेक्चर आपकी आंखों को खूब भाएगा और यहाँ का शांत और आध्यात्मिक वातावरण आपको उस शांति का अनुभव कराएगा यकीनन जिसकी तलाश आपको जरूर होगी। इसके बाद सांगा चोइलिंग मठ भी आपको जरूर जाना चाहिए, जिसका निर्माण हुआ था साल 1642 में और जो कि घने जंगलों के ऊपर बादलों के बीच मौजूद है। प्रार्थना के झंडों की फड़फड़ाहट और कभी कभी मठ के अंदर से सुनाई देने वाला मंत्रों का उच्चारण आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देगा, जिसे आप कभी भुला तो नहीं पाएंगे, ये पक्की बात है।

देखिए, भुला तो आप एक और चीज नहीं पाएंगे और जिसे आप एक्सपीरियंस करेंगे यहीं पेलिंग में, सांगा चोइलिंग मठ के ठीक बगल में। बेसिकली ये 137 फुट ऊंची एक स्मारक है जिसकी बारीकियों को आप तभी समझ पाएंगे जब आप इसके ठीक नीचे खड़े होंगे, और इसके लिए करनी होगी आपको ग्लास स्काई वॉक। एक्चुअली ये एक पुल है जिसकी जमीन कांच से बनी है, और जमीन के काफी ऊपर होने की वजह से ये आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है। इसके बाद आप निकल जाइए राब डेंटसे की ओर, जो कि साल 1670 से 1814 तक सिक्किम की दूसरी राजधानी रहा, और अब यहाँ के खंडहर तब के इतिहास की झलक आपको दिखाते हैं। ताशी दिंग मठ भी एक बेहतरीन चॉइस है। राथोंग चू और रंगीत नहीं के बीच मौजूद ये मठ सिक्किम के सबसे पवित्र स्थानों में गिना जाता है, और जिसके हर कोने में आपको शांति और एकांत का अनुभव होता है, ठीक वैसे जैसे इस अगले

ऊंचे पहाड़ों के खूबसूरत नजारों, आध्यात्मिक मठों के साथ साथ हरे भरे माहौल के बीच खूबसूरत झरनों की भी यहाँ यानी पेलिंग में कोई कमी नहीं है। हिमालय की पर्वत की बर्फ से ढकी चोटियों में कंचनजंगा वाटरफॉल सबसे पहले आता है जहां आपको जाना चाहिए। यहां गिरते पानी की टिमटिमाती आवाज आपके कानों को किसी मधुर संगीत की तरह सुनाई देगी। चाय और मैगी के स्टॉल्स इस जगह को और भी खास बना देते हैं। और इसके साथ ही रामबी वाटरफॉल भी है जो खेचो पालरी और युक्सम जाने वाले रास्ते पर पड़ता है। ज्यादा नहीं तो सिर्फ एक घंटा अगर आपने यहाँ बिता लिया ना, तो बस वही आपकी सारी उलझनों को दूर करने के लिए काफी है।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
4: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
5: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
4: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
5: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

तस्वीर चल रहा है प्रोग्राम जहां खूबसूरत पेलिंग की सैर पर निकले हैं आप मेरे यानी नाज के साथ, जहां अब मैं आपको लेकर चल रही हूं खेचे ओपालरी झील के किनारे, जहां हरे भरे पेड़ों की छांव में आप अपनों के साथ कुछ सुकून के पल बिताना जरूर पसंद करेंगे। बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों के लिए ये जगह बहुत पवित्र मानी जाती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि ये झील भगवान शिव का पद चिन्ह है, जबकि बौद्ध धर्म के लिए ये देवी तारा का पद चिन्ह है। और यही वजह है कि इस झील में मछलियों को पकड़ना पूरी तरह से मना है। और शायद यही वजह है कि ये झील मछलियों की बड़ी तादाद का घर भी है। एक पगडंडी से होकर आप यहाँ पहुंचते हैं और फिर बस यहीं के होकर

0: एशिया के दूसरे सबसे लंबे पुल पर अगर आप चलना चाहते हैं तो जनाब बिल्कुल सही जगह हैं आप। पेलिंग, जिसकी तस्वीर के हर रंग की तरह ये रंग भी बहुत खास है। सिंगशर ब्रिज इसका नाम है, काफी लंबा है और दो हरे भरे पहाड़ों को आपस में जोड़ने का काम ये सिंगशोर ब्रिज करता है। ब्रिज के नीचे गहरी घाटी फैली हुई है और जिसके ऊपर ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको दिखाई पड़ते हैं। गाड़ियों की आवाजाही की इस पुल पर मनाही है, तो आप आराम से पैदल चलते हुए न सिर्फ खूबसूरत नजारों का लुत्फ ले सकते हैं बल्कि फोटोज क्लिक करके अपनी तस्वीर में पेलिंग की इस खूबसूरती को कैद भी कर सकते हैं।
1: तेरे दिल में जिस दिन

और अब चलते चलते बात पेलिंग के स्वाद की भी। तो जनाब, नेपाली और तिब्बतियन स्वाद का जबरदस्त और टेस्टी कॉम्बिनेशन आप यहाँ पेलिंग में चखेंगे। पहाड़ी इलाका है तो सब कुछ लगभग आपको गर्मा गर्म ही परोसा जाएगा, जिसमें मोमोज आप चाहे जहां जाएं मिल ही जाएंगे। इनके अलावा थुक्पा, जो तिब्बतियन बेस्ड एक गाढ़ा नूडल सूप है, ढेर सारी सब्जियों या फिर मीट के साथ इसे बनाया जाता है। इसके साथ ही शाफले, जो कि एक तिब्बतियन ब्रेड या एक तरह की स्टफ्ड कचौड़ी भी आप इसे कह सकते हैं, आपको यहाँ पर मिलेगी, और जिसके अंदर भी आपको वेज और नॉन वेज दोनों तरह की फिलिंग टेस्ट करने के लिए मिल जाएंगी। गुंडूक सूप भी आप यहाँ के मेन्यू में पाएंगे, जो कि एक ऑथेंटिक सिक्किमी आइटम है और जो राई के साथ मूली के पत्तों को सुखाकर और फिर फर्मेंट करके बनाया जाता है। चावल के आटे से बनी डोनट के शेप में बनी सेल रोटी आपको परोसी जाएगी, जिसके साथ आप टेस्ट कीजिएगा यहाँ की स्पेशल छुरपी चटनी भी। अभी लुत्फ उठाइएगा तस्वीर की प्लेलिस्ट से आज के इस लास्ट सॉन्ग का। मुझे यानी नाज को दीजिएगा इजाजत फिलहाल आपसे विदा लेने की, इस वादे के साथ कि बहुत जल्द फिर किसी नए सफर की नई तस्वीर के साथ जरूर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, टेक केयर और नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सर अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सर अध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को वहां से निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेस ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित

0: डोभालने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दोहराई। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए एक नया परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर रखने को कहा गया है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news are read by Abhishek Mukhopadhyay. India strongly objected to Pakistan raising the Kashmir issue at the United Nations Forum, accusing Islamabad of politicizing the platform, also slammed it for misusing its position as co-chair instead of being unbiased, as behooves the position. The remarks were made by India's permanent representative to the UN in New York, P. Harish, in response to comments by Pakistan's permanent representative, Asim Iftikhar Ahmed. Responding to Pakistan's intervention, Mr. Harish criticized the conduct of the co-chair and reiterated India's long-standing position on Jammu and Kashmir. He added that Union Territory of Jammu and Kashmir is a matter strictly internal to India. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today said that the rollout of Passport Seva Program 2.0, introduction of chip-enabled e-passports, opening of new Passport Seva Kendras and Post Office Passport Seva Kendras, and record levels of passport issuance are enhancing ease of travel, expanding access to global opportunities, and empowering citizens. In a social media post, the minister extended greetings to all passport authorities in India and abroad on the occasion of the 14th Passport Seva Divas. Dr. Jayashankar also reaffirmed the government's commitment to keep making passport services delivery faster, more transparent and accessible, guided by the vision of Surakshit Passport, Sugam Seva and Sashakt Nagrik. National security advisors and senior security officials from the BRICS nations call for stronger cooperation to address the widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. Speaking at the meeting, National Security Advisor Ajit Dobhal stressed the need for collective deliberation and cooperation among BRICS nations to address the emerging security risks and evolving forms of terrorism in an increasingly digitized world.
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges. Non-traditional threats have transcended national borders and have developed defeat systems against conventional responses. Innovative disruptive technologies, more camouflaged variants of terrorism, cyber threats in a world which is getting increasingly digitized, they all constitute an important threat for us.
1: Vice Chairperson of Niti Aayog, Dr. Ashok Kumar Lahiri, has said that the total trade of India has grown by 5.4% in the last quarter. He said this while releasing the latest edition of the Trade Watch Quarter.

0: श्रोताओं, शहर की रफ्तार चाहे जितनी भी तेज हो, दोपहर का ये एक घंटा थोड़ा ठहर जाने और सुकून से सांस लेने का नाम है। तो बस अपने रेडियो की सुई यही ठीक यहीं पर टिकाइए, बाकी का इंतजाम हम कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी श्रुति पुरी और आज इस कार्यक्रम में मेरी हम सफर है
1: रश्मि कुकरेती। और श्रुति जी, आपको और FM गोल्ड चैनल दिल्ली के सभी श्रोताओं और आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ चैनल के सभी श्रोताओं को मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। और ये है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन FM गोल्ड 100.1 MHz पर। और अगर आप इस वक्त घर के किसी कोने में भाई चाय की प्याली थामे बैठे हैं, या ऑफिस की भागदौड़ के बीच में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, या कर रहे हैं गाड़ी में सफर, या फिर बस यूं ही दिन भर की व्यस्तताओं से कुछ पल चुरा पाए हैं, तो आइए अगले 50 मिनट हम साथ बिताते हैं।
0: दोपहर के 12:10 से 1 बजे तक, यानी इस वक्त में सिर्फ आपका और हमारा साथ है। आप हमें सिर्फ FM गोल्ड पर ही नहीं सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल पर 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर, और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े श्रोता हमें AIR News Live 24/7 यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं।
1: और इस सफर में

0: अगर कोई बात आती है ना आपके दिल में, कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो या कोई प्रतिक्रिया देनी हो, तो जरूर लिखिए fmgoldga@gmail.com पर, क्योंकि आपकी हर राय श्रुति जी हमारे लिए बहुत जरूरी है ना, है ना? और जल्दी हर बार की तरह हम आपसे कुछ पूछने भी वाले हैं।
1: रश्मि रुको रुको, अभी नहीं, पहले हम सुनाएंगे ये प्यारा सा गीत लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म है जब प्यार किसी से होता है।

0: तो दोस्तों, एक बार एक छोटा सा बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा था। बार बार गिरता, घुटने छिल जाते, मगर हर बार उठकर फिर पैडल पर पैर रखता।
1: किसी ने उससे पूछा कि इतने बार गिरने के बाद भी तुमने हार नहीं मानी। बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, मैं गिरा नहीं, मैं सीख रहा था। यही सोच है हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की, और उन्होंने इसको बहुत अच्छे से शब्दों में बांधा था। आप जानती हो रश्मि क्या कहा था उन्होंने?
0: भाई, अगर आप असफल होते हैं तो कभी हार मत मानो, क्योंकि जब फेल होते हैं ना, यानी FAIL, उसका अर्थ है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, पहला सबक सीखा आपने।
1: जी बिल्कुल, और जिंदगी भी कुछ ऐसी ही साइकिल है ना रश्मि, जिसमें गिरना तो तय है लेकिन उठना जो
0: हमारे
1: है वो हमारे हाथ
0: जी,
1: में
0: बिल्कुल। और देखिए, जो श्रुति थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाया तो हजारों बार कोशिश की और हर नाकामी से उन्होंने कुछ सीखा।
1: हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई कोशिश नाकाम हो ना आपकी, तो उसे हार मत समझिए, उसे समझिए कि ये पहली कोशिश है जो आपको आगे कामयाब बनाएगी।
0: बिल्कुल, असफलता को हम दुश्मन नहीं माने, अपना दोस्त माने, अपना गुरु माने, क्योंकि वही आपको मंजिल तक पहुंचाएगी और सही रास्ता दिखाएगी।
1: तो दोस्तों, क्या आपने भी असफलता की सीढ़ी से सफर शुरू किया था जो बाद में सफलता में तब्दील हुआ? तो झटपट लिख भेजिए और ईमेल तो बता दे रश्मि आप।
0: जी बिल्कुल, बताती हूँ, fmgoldga@gmail.com। भाई जल्दी से लिख डालिए कि आपने क्या सबक सीखा जब पहली असफलता मिली और सफलता कैसे मिली।
1: और तब तक आनंद लीजिए इस गीत का।

0: लता मंगेशकर और मुकेश को अभी आप सुन रहे थे। फिल्म थी एक हसीना दो दीवाने। देखो रश्मि, अभी हमने सवाल पूछा था और हमारे श्रोता कितने जागरूक हैं, हमें फटाफट से एक मेल भी मिल गया है। और ये मेल हमें भेजा है नवीन भाटिया, जो मोतीनगर दिल्ली से हैं। ये लिख रहे हैं कि 2003 में जब काम शुरू किया था तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल कम था, पर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ गया और आगे बढ़ते गए
1: जी। और एक और संदेश आया है, आप हैं अदिति दिल्ली से, वो कह रही हैं कि भाई स्कूल में एक दौड़ प्रतियोगिता में मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ भागी, लेकिन आखिर समय में हार गई, लेकिन उस हार से मैंने प्रेरणा ली, मेहनत की और फिर अगली रेस जीती। भाई वाह अदिति, बनाए रखिए ऐसा ही जज्बा।
0: बिल्कुल। और देखो रश्मि, ये जो कैलेंडर होता है ना, कभी नोटिस किया ये कितने कमाल की चीज है? उसका एक ही पन्ना, एक ही तारीख, न जाने कितनी कहानियां अपने अंदर समेटे होता है
1: भाई श्रुति। क्योंकि तारीख सिर्फ एक नंबर नहीं होती ना, वो तो किसी संघर्ष की निशानी होती है, किसी के सुर की गूंज होती है और बड़े बदलाव की शुरुआत भी होती है।
0: बिल्कुल रश्मि। और आज 24 जून है और ये तारीख कुछ ऐसी ही दिलचस्प कहानियां अपने अंदर छुपाए बैठी है। चलिए इन्हें एक एक करके खोलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं उस दुनिया की तरफ जहां फैसले लिए जाते हैं, संधियां होती हैं और जहां सदियों से तस्वीर एक जैसी ही रही है, बदली नहीं है।
1: मैं समझ गई आप क्या कहना चाह रही हैं, थोड़ी सी पहेलियां बुझा रही हैं लेकिन यानी कि कॉन्फ्रेंस टेबल में चारों ओर भाई सूट बूट में बैठे पुरुष हैं, लेकिन भाई आज तो 24 जून इसी तस्वीर को बदलने का एक प्रतीक वाला दिन है। और ये दिन है दोस्तों डिप्लोमेसी में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, है ना?
0: हाँ बिल्कुल। और साल 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को मान्यता दी और इसका मकसद सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं था बल्कि एक सवाल खड़ा करना था कि कूटनीति की दुनिया में महिलाएं कहाँ हैं।
1: वाह भाई, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी महिलाओं को मौका मिला उन्होंने मिसाल कायम की। और कूटनीति सिर्फ ताकत की भाषा नहीं है, समझ और संवेदनशीलता की भी भाषा है, और ये भाषा तो भाई महिलाओं से बेहतर कौन जानता है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल। और यही वजह है कि ये दिन हर साल हमें याद दिलाता है कि जब तक आधी दुनिया की आवाज मेज पर नहीं होगी तब तक दुनिया के फैसले अधूरे रहेंगे।
1: और आज का दिन खास है क्योंकि आज की तारीख एक सुर भी बसता है। जी हाँ, साल 1897 में आज ही के दिन जन्मे थे पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, जिन्होंने आजादी की सुबह आकाशवाणी से वंदे मातरम गाकर इतिहास रच दिया था।
0: और साथ ही आज भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी की भी पुण्यतिथि है। वो इतिहास के इकलौते ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सर्वोच्च पद पर रहे।
1: जी तो दोस्तों, बदलाव चाहे कूटनीति की मेज पर हो, संगीत के मंच पर हो या राजनीति के गलियारों में, उसकी जड़ में तो है हिम्मत और डटकर खड़े रहने की ताकत।

0: और आप सुन रहे थे लता मंगेशकर जी को, फिल्म थी दिल लगी।
1: हाँ, और देखो रश्मि, एक और मेल आई है पढ़ूं से?
2: जी बिल्कुल।
1: देखो अच्छा लगता है ना जब श्रोता हमसे बात करते हैं, अपने विचार अपने अनुभव हमसे साझा करते हैं। ये मेल आई है डी राजेश्वर राव की, और ये दिल्ली से लिख रहे हैं कि जब भी मैं कभी ऑफिस जाता हूँ तो गाड़ी में आपका FM सुनता हुआ जाता हूँ, मेरी एनर्जी बढ़ जाती है। और लिख रहे हैं कि जो असफलता है ना, वो एक कदम है, एक मील का पत्थर है सफलता की ओर। तो फेलियर कुछ भी नहीं होता, सफलता की सीढ़ियां ही हैं ये सब।
0: जी बिल्कुल। और एक और संदेश हमें मिला है, कोटद्वार से सुमन जुड़ी हैं हमारे साथ, वो कह रही हैं कि रिश्तों से जुड़ी ये एक सीख मिली मुझे। वो कहती हैं कि मैं कभी किसी की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई, और लेकिन उन अनुभवों ने मुझे रिश्तों की अहमियत करना और संवाद का महत्व सिखाया। वाह, कितनी सुंदर बात। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए कि आप खरी नहीं उतर पाई, वो तो आपका पहला कदम था सुमन। आगे बढ़ते रहिए, प्यार से रिश्तों को संजोए रखिए, जैसे हम संजोए रखते हैं यहाँ FM गोल्ड के चैनल से।
1: बिल्कुल, एक और मेल पढ़ दूं?
0: जी बिल्कुल।
1: ये गौरी शंकर जी का आया है दिल्ली से, लिखते हैं कि आप दोनों बेटियों को राम राम, इंसान पूरी जिंदगी सीखता है, यानी मरते दम तक। शुरू में हम कोई काम सीखते हैं, मेहनत करने पर कामयाबी ना मिले तो हम दूसरे काम की कोशिश करने लगते हैं, शायद वहां कामयाबी मिल जाए। यानी कि हार नहीं माननी चाहिए, इंसान को कामयाबी जरूर मिलेगी। बाकी प्रोग्राम सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है।
0: वाह, अच्छा लग रहा है, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा भी लगता है जब मैं फिल्में देखती हूँ, श्रुति, है ना। मैं थोड़ा सा बदल रही हूँ, अब सब्जेक्ट बदल रही हूँ, कि फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और हिंदी फिल्में भी मुझे बहुत पसंद
1: है। अच्छा, तो रश्मि जरा सोचिए, आपने आखिरी फिल्म कौन सी देखी थी? वो हिंदी में थी या किसी और भाषा में थी जिसने आपका दिल जीत लिया? शायद वो कंतारा थी या RRR थी या कोई मराठी फिल्म थी?
0: भाई श्रुति, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी, मैं क्षेत्रीय सिनेमा बहुत देखती हूँ, और बरसों तक हमारे देश में एक धारणा बनी रही कि भाई बड़ी फिल्मों का अर्थ है हिंदी फिल्में, करोड़ों का बजट और उनके वहां के सुपरस्टार। पर विश्वास कीजिए, क्षेत्रीय सिनेमा बहुत खूबसूरत निखर कर आ रहा है।
1: और जानती हो, बाकी सब सिनेमा जो छोटा, सीमित, सिर्फ अपनी भाषा और अपने राज्य तक ही सीमित था, उसको कम पहचान मिलती थी, लेकिन अब
0: पिछले सालों में बहुत कुछ बदला है ना श्रुति, और ये बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि धीरे धीरे मगर मजबूती से बना है। भाई देखो, आज तेलुगु सिनेमा ऑस्कर तक पहुंचा है, और कन्नड़ सिनेमा राष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ता है। मलयालम सिनेमा की अगर बात करें तो भाई कहानी कहने की कला में दुनिया भर में सराहा जाता है, वाह वहां की कला फिल्में। और पंजाबी, बंगाली, मराठी, असमिया, भोजपुरी सिनेमा की तो अलग पहचान है।
1: और जानती हो रश्मि, इस बदलाव के पीछे एक बड़ी वजह है, डबिंग का जादू।
0: भाई वाह। हाँ। भाई डबिंग का जादू आपसे ज्यादा कौन जानेगा, आप तो आवाज की जादूगर हो ही, है ना।
1: नहीं, वो तो देखो हम यहाँ पर बैठे हैं तो सभी आवाज के जादूगर हैं। और आज कोई भी फिल्म जो है ना, सिर्फ अपनी मूल भाषा तक ही नहीं रुकती, बल्कि वो हिंदी में डब होकर सीधे पूरे भारत के घर घर तक पहुंचाती है, और कई बार तो तमिल, बंगाली, पंजाबी में भी डब होकर देश के हर कोने में अपनी जगह बना लेती है।
0: और देखिए श्रुति, OTT प्लेटफॉर्म के ने इस सफर को और भी आसान बना दिया है, क्योंकि एक क्लिक पर आप भाषा बदल सकते हैं। यानी कि आप फिल्म देख रहे हैं, आपको पसंद नहीं आई, आपको जम नहीं रही, तो आपने भाषा बदल दी, और कहानी अपनी पसंद की जुबान में सुन सकते हैं। यही वजह है कि अब क्षेत्रीय सिनेमा सिर्फ अपने राज्य या अपनी भाषा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हर क्षेत्र में भी अपनी गर्मजोशी के साथ देखा जा रहा है और सराहा जा रहा है।
1: इतना ही नहीं, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ा योगदान दे रहा है क्षेत्रीय सिनेमा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम घर बैठे अलग अलग राज्यों की कला और संस्कृति से रूबरू हो पा रहे हैं, और शायद इसीलिए नए टैलेंट को पहचान भी मिल
0: भाई
1: रही
0: और
1: है।
0: भी तो टैलेंट दिखाओ, कोई गीत भी तो सुनाओ श्रुति।
1: हाँ बिल्कुल, सुनाते हैं। तो अप्रैल फूल फिल्म में आप सुने लता मंगेशकर को।

0: देखो रश्मि, कितना अच्छा लगता है ना जब श्रोता हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं, तो मजा आ जाता है। और एक और मेल हमारे पास आई है, ये हैं सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और सिमरन मुखी। ये लिख रहे हैं कि गिरकर उठना सीख लो, यही असली जिंदगी है। हार का डर मत पालो, कोशिश छोड़ना ही हार है। लक्ष्य को कभी मत छोड़ो, ये या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अनुभव। कितनी बढ़िया बात कही है ना?
1: बात है, वाह वाह। और एक और संदेश हमें प्राप्त हुआ है, कांता जी रोहिणी से कह रही हैं कि माँ की कहानी बता रही हैं। वो कह रही हैं कि बच्चों को अच्छी परवरिश देने की कोशिश में मुझे कई बार ऐसा लगा कि शायद मैं सही नहीं कर रही हूँ, लेकिन समय के साथ जब बच्चों को आगे बढ़ते देखा तो मैं समझ गई कि हर छोटी बड़ी गलती से भी जो सीख का हिस्सा ही थी, और हर छोटी बड़ी गलती से मैंने सीखा। बहुत अच्छी बात। देखिए क्या करना है क्या नहीं करना बच्चों के साथ जो सिखाना है, वो माँ से बेहतर और कौन जान सकता है ना?
0: और आजकल तो देखो फोन हर बच्चे के हाथ में है, हर बड़े के हाथ में
1: जी,
0: है
1: जी।
0: तो फोन से अगर हम अच्छी चीज जाने ना तो कितना अच्छा रहता है। मतलब ज्ञानवर्धक बातें अगर हमें मिलती रहे, हमारी जानकारियां बढ़ती रहे तो कितना अच्छा है।
1: बिल्कुल। और सवेरे सवेरे अगर फोन स्क्रॉल करें ना श्रुति जी, तो कभी कीटो डाइट, कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग, कभी प्रोटीन डाइट, कभी डिटॉक्स जूस, ये सब भरमार दिख जाती है। और हर कोई कहता है ये तरीका अच्छा है। सच बताऊं कई बार मेरे दिमाग में बहुत उलझन पैदा हो जाती है।
0: देखो ना रश्मि, हर हफ्ते एक नया फिटनेस ट्रेंड आता है और हर ट्रेंड यही दावा करता है कि उसके पास सबसे तेज और सबसे आसान नतीजा है। दरअसल इन ट्रेंड्स की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण जो है ना, वो सोशल मीडिया की रफ्तार है। जहां किसी सेलिब्रिटी की एक पोस्ट या किसी इन्फ्लुएंसर का एक वीडियो किसी भी थ्योरी को रातों रात मशहूर बना देता है, भले ही वो शरीर के लिए सही हो या ना हो।
1: भाई श्रुति, मुझे तो लगता है इसके मुकाबले खड़ी है एक बहुत पुरानी और सीधी सीधी सोच भाई, जिसे कहा जाता है संतुलित डाइट, माने है ना। और इसमें ना कोई सख्त परहेज है ना कोई चमत्कारी शॉर्टकट है। बस आपको ये समझना है कि शरीर को अनाज, सब्जी, फल, प्रोटीन और थोड़ी वसा सभी की जरूरत है, और इन्हें सही मात्रा में लेना ही असली सेहत की कुंजी है।
0: देखो कई बार ना ये जो हमारे पोषण विशेषज्ञ हैं, ये बार बार यही कहते हैं कि किसी एक खाद्य समूह को पूरी तरह से छोड़ देना या किसी एक ही चीज को सब कुछ मान लेना लंबे समय में नुकसान कर सकता
1: है।
0: जबकि संतुलित और अच्छा खानपान जो होता है ना, वो शरीर को लंबे समय तक मजबूत और ऊर्जावान बनाए रखता है।
1: तो यही तो कारण है श्रुति कि फिटनेस ट्रेंड चाहे कितने भी चमकदार दिखे लगे, और जो कोई असली और टिकाऊ नतीजा जो है ना, वो तो भाई संतुलन से ही मिलता है, किसी फॉर्मूले से नहीं मिलता।
0: हाँ बिल्कुल ठीक कहा। तो अगली बार अगर आपको कोई नया डाइट ट्रेंड फीड पर दिखे तो एक पल के लिए रुकें और सोचें कि क्या वो वाकई संतुलन की जगह ले सकता है या फिर एक नया शोर है। इसी सोच के साथ चलिए सुनते हैं ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में, जिसे हमने लिया है हम आपके हैं कौन फिल्म से।

0: और श्रुति भाई, चॉकलेट लाइम जूस की बात हुई और ऐसे ही खाने पीने से जुड़ी जो है एक जवाब आ गया है मेरे पास, एक संदेश है। तो आप हैं सुरभि दिल्ली से, वो बता रही हैं कि पहली बार जब पूरे परिवार के लिए कोई खास डिश बनाई तो बिल्कुल ही खराब बन गई। हाँ, घर में सब हंसे, लेकिन फिर उस दिन से मेरे को खाना बनाने सीखने का शौक पैदा हुआ और आज मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ भाई।
1: ये
0: वाह सुरभि।
1: बिल्कुल ठीक कह रही हो, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कुछ, लेकिन वो बात हम बाद में करेंगे। अभी एक और मेल बता देते हैं, इदरिस सैफी जी का मेल आया है। ये बोल रहे हैं कि सुबह 11 बजे से रात के 9 बजे तक मैं दुकान पर बैठकर सिर्फ FM गोल्ड ही सुनता हूँ।
0: और इन्हें सवाल भी बता दो श्रुति एक
1: हाँ,
0: बार फिर।
1: सवाल बताना बहुत जरूरी है। हमने सवाल पूछा था कि क्या आपकी सफलता की सीढ़ियों में पहली सीढ़ी असफलता की थी, तो
0: और
1: अगर
0: उससे आपने क्या सीखा है
1: और
0: ना।
1: उससे आपने क्या सीखा, क्योंकि आपके अनुभव किसी के लिए प्रेरणा बन सकते हैं।
0: जी
1: तो यदि आप हमारे कार्यक्रम से अभी जुड़े हैं तो हमें झटपट मेल भेजिए
0: FM
1: हमारे
0: गोल्ड चैनल,
1: FM गोल्ड
0: FM गोल्ड GA@gmail.com
1: पर। और देखो, एक और मेल आया है हमारे पास, ये डी राजेश्वर राव जी का ही है, जिन्होंने जिनका मेल अभी हमने पढ़ा था। उन्होंने बोला कि मेरी
0: एक और
1: बेटी,
0: मेल आया
1: हाँ,
0: उनका।
1: उनका एक और मेल आया है। ये लिख रहे हैं कि मेरी बेटी जो है वो एक आर्टिस्ट है और MFA उसने किया था शांति निकेतन से, पर वो कहती है कि मैंने कुछ मिस्टेक्स कर दी, तो लेकिन वो कभी डिमोरलाइज नहीं होती है और वो हमेशा सही काम करने की सोचती है। तो हमेशा हर एक को सक्सेसफुल होने के लिए काम करना ही
0: जी,
1: चाहिए।
0: और चलते जाना ही जिंदगी का नाम है,
1: बिल्कुल।
0: रुकना हमारा काम नहीं है ना। और जब चलते जाना है तो फिर तो यानी कि एक सफर की बात हो रही है ना। भाई, ये खुली
1: बिल्कुल।
0: सड़क हो और खिड़की से आती ताजी हवा हो, पसंदीदा गीत हो और मंजिल कोई तय नहीं हो, बस चलते जाना हो, तो भाई इसे कहते हैं श्रुति रोड ट्रिप। इसका अलग ही मजा है ना।
1: बिल्कुल, क्या बात है रश्मि, बहुत शायराना बातें कर रही हो। ये कहीं हाल ही में तुमने कोई रोड ट्रिप तो नहीं किया, उसका अनुभव
0: जी
1: तो नहीं बता
0: नहीं।
1: रहे पर
0: जी
1: बात तो सच है, कभी कभी सफर ही मंजिल बन जाता है। आज पूरे भारत में रोड ट्रिप का जो क्रेज बढ़ रहा है ना, वो सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है बल्कि एक नई सोच, एक जीवन का नया दर्शन है।
0: जी बिल्कुल। अब भारत में जो कहा जा रहा है कि यात्री अब हवाई जहाज की बजाय सड़क मार्ग से यात्रा करना पसंद कर रहे हैं और ये संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। दरअसल ना, रोड ट्रिप पर एक ऐसा अनुभव है जो वो आपको सब कुछ ऐसा दिखाता है जो फ्लाइट की खिड़की से कभी नहीं दिखता है ना।
1: बिल्कुल, रास्ते में पड़ने वाला एक छोटा सा ढाबा, किसी अनजान गांव की सुबह, पहाड़ों के बीच अचानक मिलती झील, या किसी गांव में किसी बुजुर्ग से अगर 5 मिनट बातचीत हो जाए तो ये जिंदगी भर याद रहती है।
0: पर
1: यही तो
0: यही तो
1: असली
0: जी
1: यात्रा
0: बिल्कुल। और
1: है।
0: देखो ना श्रुति, कोरोना के बाद में ना लोगों में भीड़भाड़ वाली जगहों से बचने की एक प्रवृत्ति बढ़ी है और रोड ट्रिप उन्हें अपनी शर्तों पर, अपने समय पर और अपने लोगों के साथ घूमने की आजादी देती है। और अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो यहाँ पर तो रोड ट्रिप के लिए पहले से भी बेहतर समय है ना।
1: हाँ, और जानती हो क्यों? क्योंकि सरकार के भारतमाला प्रोजेक्ट से देश में राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे लेह लद्दाख, स्पीति वैली, कच्छ का रण, कोंकण तट, कुर्ग की हरियाली, ये सब अब पहले से ज्यादा आसानी से सड़क मार्ग से जुड़ गए हैं और
0: जी
1: युवाओं में तो ये जुनून इस कदर बढ़ा है कि सोलो रोड ट्रिप यानी अकेले निकल पड़ना एक नई
0: वाह।
1: पहचान बन गई है, खासकर महिलाओं में,
0: अच्छा
1: जो अब बिना किसी झिझक के अकेले ही लंबी लंबी यात्राएं कर रही हैं।
0: तो दोस्तों, अगर जिंदगी की भाग दौड़ में कभी थका हुआ महसूस करें, मन उदास हो, कभी एक ब्रेक चाहिए, तो गाड़ी निकालिए, एक रास्ता चुनिए और निकल पड़िए, क्योंकि कुछ जवाब किताबों में नहीं मिलते भाई, सड़कों पर मिल जाते हैं जब आप बाहर निकलते हैं। रोड ट्रिप सिर्फ एक यात्रा नहीं है, खुद को फिर से खोजने का सबसे खूबसूरत तरीका है। पर सड़क पर चलते हुए ख्याल रखिएगा अपना भी और दूसरों का भी।

0: देखो कितनी गर्मी पड़ रही है ना रश्मि, और ये जब चिलचिलाती धूप हो, शरीर थका हुआ हो, गला सूख रहा हो, तो एनर्जी ड्रिंक का ख्याल चारों तरफ से घेर लेता है। तब एक बार जरा सा थोड़ा सा रुककर सोचो तो सही कि हमारी नानी दादी बिना किसी एनर्जी ड्रिंक के इतनी गर्मी में भी तंदुरुस्त कैसे रहती थी।
1: भाई मैं बताती हूँ श्रुति, इसका जवाब है भाई सत्तू, वो देसी सुपर फूड जो सदियों से बिहार, उत्तर प्रदेश और पूर्वी भारत के घरों में गर्मियों का सबसे भरोसेमंद साथी रहा है और आज पूरे देश में जिसकी धूम मच रही है।
0: जानती हो रश्मि, सत्तू असल में भुने हुए चने या जौ को पीसकर बनाया जाता है और इसे गरीबों का प्रोटीन भी कहा जाता है। गरीबों का नहीं, आजकल तो सबका प्रोटीन है, लेकिन इसके गुण बहुत महंगे हैं क्योंकि जो किसी भी प्रोटीन पाउडर से कतई कम नहीं है। 100 ग्राम सत्तू में लगभग 22 ग्राम प्रोटीन, 7 ग्राम फाइबर और भरपूर मात्रा में आयरन, मैग्नीज और मैग्नीशियम पाया जाता है।
1: भाई मैं तो इतना जानती हूँ श्रुति कि ये शरीर को अंदर से ठंडा रखता है, पाचन दुरुस्त करता है और देर तक भूख नहीं लगने देता। और भाई गर्मियों में लू से बचाव के लिए तो सत्तू का शरबत एक कवच की तरह काम करता है।

0: अब तो बड़े बड़े शहरों में भी सत्तू की वापसी हो रही है।
1: हाँ, अब तो कैफे और हेल्थ स्टोर्स जो है ना, उनमें भी सत्तू स्मूदी, सत्तू के लड्डू, सत्तू एनर्जी बार मिलने लगे हैं। और फिटनेस विशेषज्ञ तो अब खुलकर सत्तू को पोस्ट वर्कआउट मील के रूप में सुझा रहे हैं।
0: भाई बहुत अच्छी बात है, अपना देसी सत्तू जो है इसे बहुत आसान ड्रिंक बना सकते हैं। हम आपको बता लेते हैं है ना, नमकीन सत्तू शरबत कैसे बनाएं। भाई एक गिलास ठंडे पानी में दो बड़े चम्मच सत्तू घोलिए, उसमें आधा चम्मच आधा नींबू निचोड़िए और चुटकी भर काला नमक और थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर मिला लीजिए। बस तैयार है आपका देसी कूलिंग ड्रिंक जो लू से भी बचाए और एनर्जी भी दे।
1: और अगर मीठा सत्तू पीना हो तो एक गिलास ठंडे दूध या पानी में दो चम्मच सत्तू, एक चम्मच गुड़ या शहद और इलायची पाउडर मिलाइए। ये बच्चों को बहुत पसंद आता है और सुबह के नाश्ते के लिए बहुत बढ़िया विकल्प है।
0: हाँ, और देखिए कितने सारे तरीके हैं इसे इस्तेमाल करने के लिए। भाई आप सत्तू की लस्सी भी बना सकते हैं। एक कप दही ले, उसमें दो चम्मच सत्तू डालें और थोड़ा पानी डालें, काला नमक और पुदीना मिलाकर फेंट दें और प्रोटीन से भरपूर ये ड्रिंक दोपहर की थकान को पल भर में उड़ा देती है और पेट भी देर तक भरा रखती है।
1: हाँ बिल्कुल, तो इस गर्मी में महंगे जो सप्लीमेंट और आर्टिफिशियल ड्रिंक्स है ना, इनसे थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और अपनी रसोई में उसी पुरानी विरासत को जगह दीजिए। सत्तू सिर्फ एक खाद्य पदार्थ नहीं, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारे पुरखों की समझदारी है और जलती गर्मी में आपके शरीर के लिए प्रकृति का सच्चा तोहफा है। तो इसके साथ आप सीधा मत करिए।

0: भाई समय का तो पता नहीं चला, और देखिए आज की ये 50 मिनट की मुलाकात भी यहाँ पूरी हो रही है। उम्मीद है आपके दिन के इस हिस्से में हम थोड़ा सा सुकून और थोड़ी ताज़ा सोच जोड़ पाए होंगे।
1: आपकी राय, आपके सुझाव हमारे लिए हमेशा अहम रहेंगे, तो लिखते रहिए fmgoldga@gmail.com पर, और हमें बताइए कि आज की ये बातचीत आपको कैसी लगी। ये सिलसिला यहीं नहीं थमेगा, कल फिर इसी समय इसी जगह घर आंगन में आपका इंतजार करेंगे। तब तक के लिए स्वीकारिए श्रुति पुरी
0: और रश्मि कुकरेती का प्यार भरा नमस्कार।
1: जी।

0: लता मंगेशकर को अभी आप फिल्म आंखें में सुन रहे थे।
1: आंगन आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि साध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने साध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी तथा सतर्कता बरतने और स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है। 4 महीने से चल रहे पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ

1989 में एक ऐसी फिल्म आई थी जिसके गीतों ने आते ही जबरदस्त धूम मचा दी थी। ये उस दशक की सबसे ज्यादा बिकने वाली म्यूजिक एल्बम थी और आज भी इसके गीत सदी के सबसे लोकप्रिय गीतों में गिने जाते हैं। लेकिन इनकी रचना करने वाले गीतकार के बारे में लोगों को आज भी काफी कम जानकारी है। ये फिल्म थी मैंने प्यार किया और इसके कालजयी गीतों के रचनाकार थे असद भोपाली। कलाकार बेमिसाल आप सुन रहे हैं मेरे यानी रजनी के साथ आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर।

मैंने प्यार किया फिल्म से ये लोकप्रिय गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। हालांकि मैंने प्यार किया के कुछ गीत देव कोहली ने भी लिखे थे, लेकिन ज्यादातर गीत असद भोपाली की कलम से निकले थे। 10 जुलाई 1921 को भोपाल में असदुल्ला खां के रूप में उनका जन्म हुआ। पुराने भोपाल की तहजीब में पले बड़े असद को बचपन से ही शायरी का शौक था। उन्हें फारसी, अरबी, उर्दू और इंग्लिश में महारत हासिल थी। आगे की कहानी सुनेंगे हम सब उस्ताद हैं इस फिल्म के गीत के बाद, जिसे आवाज दी है किशोर कुमार ने।

असद भोपाली मिर्जा गालिब को अपना आदर्श मानते थे और इत्तेफाक देखिए कि मिर्जा गालिब का असली नाम भी असदुल्ला खां था। 20 साल की उम्र में ही असद भोपाली मुशायरों में शिरकत करने लगे थे। 1949 का साल था, भोपाल टॉकीज में एक मुशायरा हो रहा था। असद भोपाली भी इसमें हिस्सा ले रहे थे। दर्शकों में मौजूद थे फिल्म निर्माता फाजली ब्रदर्स, जो कि उन दिनों दुनिया नाम से एक फिल्म बना रहे थे। इसकी फिल्म के जो गीतकार थे वो थे आरजू लखनवी, जिन्होंने दो गीत लिखने के बाद ये फिल्म छोड़ दी। इसके बाद क्या हुआ बताएंगे आपको अगले गीत के बाद, जो कि हमने चुना है फिल्म उस्तादों के उस्ताद से। आवाज है मोहम्मद रफी की।

फजली ब्रदर्स ने जब असद भोपाली के अशार सुने तो उन्होंने वहीं पे असद को 500 रुपए देकर अपनी फिल्म दुनिया के लिए साइन कर लिया। उस समय असद भोपाली की उम्र 28 बरस की थी। मन में फिल्म गीतकार बनने का सपना लेकर वो मुंबई आ गए। उनके लिखे दुनिया फिल्म के दो गीत काफी पसंद किए गए। इसके बाद 1951 में उन्होंने बीआर चोपड़ा की फिल्म अफसाना के गीत लिखे जो कि काफी लोकप्रिय हुए। फिलहाल अगला गीत जिस फिल्म से हमने चुना है उसका नाम है तू नहीं और सही। आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

मोहम्मद रफी और उषा खन्ना की आवाज में ये गीत था फिल्म बिन फेरे हम तेरे से। आज कलाकार बेमिसाल में बात हम कर रहे हैं गीतकार असद भोपाली की। 1949 से 1990 तक असद भोपाली ने लगभग 400 गीत लिखे, जिनमें तू नहीं और सही, उस्तादों के उस्ताद, हम सब उस्ताद हैं, पारस मणि, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, एक सपेरा एक लुटेरा, टावर हाउस, छैला बाबू, वंदना, दादा, मैंने प्यार किया और पुलिस पब्लिक जैसी फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे। हालांकि उनके हिस्से में ज्यादातर कम बजट वाली फिल्में ही आई, जिनमें से ए ग्रेड फिल्में बहुत कम थी, लेकिन फिर भी इन फिल्मों के गीत आज भी गुनगुनाए जाते हैं। ऐसा ही एक गीत है फिल्म रूप तेरा मस्ताना से, जिसे आवाज दी है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

मैंने प्यार किया फिल्म के लिए असद भूपाली को सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, लेकिन इस पुरस्कार को लेने वो स्टेज पर नहीं जा पाए क्योंकि लंबी बीमारी के कारण वो बिस्तर पे थे और अगले ही साल 9 जून 1990 को 68 बरस की उम्र में असद भूपाली इस दुनिया को अलविदा कह गए। अगला गीत उन्हीं का लिखा फिल्म एक सपेरा एक लुटेरा से, आवाज है मोहम्मद रफी की।

आज असद भोपाली हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके लिखे यादगार गीत हमेशा हमारे साथ रहेंगे। गुलजार द्वारा संकलित द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदी सिनेमा में असद भोपाली का नाम उन कुछ नामों में बताया गया है जो हिंदी फिल्मी गीतों में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। फिल्मी गीतों के अलावा उनकी कविताओं का संग्रह रोशनी धूप चांदनी 1995 में भोपाल की उर्दू अकादमी द्वारा प्रकाशित किया गया था।

ये प्यारा सा रोमांटिक गीत आपने सुना फिल्म पारसमणि से। कलाकार बेमिसाल में आज हमने बात की असद भूपाली के बारे में, जिन्होंने कई यादगार गीतों की रचना की। और इसी के साथ फिलहाल रजनी को कलाकार बेमिसाल से इजाजत दीजिए। आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर, जिसमें कुछ ही देर में आप सुन सकते हैं उर्दू में खबरें।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। भारत ने अक़्वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर का मामला उठाने पर सख्त एहतजाज किया है और इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान मुआविन सदर की अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तेहरान में भारतीय सफारतखाने ने भारतीय शहरियों के लिए नए सिरे से एडवाइजरी जारी की है और यह भी कहा कि वह ईरान का गैर जरूरी सफर करने से गुरेज जारी रखें। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज कोंकण और गोवा में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों में शदीद बारिश के बाद अचानक सैलाब के पेश नजर आसाम में हाई अलर्ट कर दिया गया है। हॉकी इंडिया ने आइंदा माह शुरू होने वाले बरतानिया के दौरे के लिए 24 रुकनी जूनियर खवातीन टीम का ऐलान किया है और फीफा आलमी कप में आज मैक्सिको में कोलंबिया ने डीआर कोंगो को 1-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब खबरें तफसील से। भारत ने अक़्वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर का मामला उठाए जाने पर यह कहते हुए सख्त एतराज जाहिर किया कि उसने इस प्लेटफॉर्म को सियासत के लिए इस्तेमाल करना जारी रखा है और पाकिस्तान की इस बात के लिए भी शदीद नुक्ताचीनी की है कि उसने मुआविन सदर की अपनी पोजीशन को गलत तौर पर इस्तेमाल किया है, बजाय इसके कि उसे एक इस मुकाम पर रहते हुए इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। न्यूयॉर्क में अक़्वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे आसिम इफ्तखार अहमद की रायजनी करके जवाब में ये बात कही। पाकिस्तान की जानिब से रायजनी का जवाब देते हुए जनाब हरीश ने मुआविन सदर की हैसियत से उसके तर्ज अमल की सख्त तनकीद की और जम्मू कश्मीर पर भारत के देरीना मौकफ को दोहराया। उन्होंने मजीद कहा कि मरकज के जेर इंतजाम इलाका जम्मू कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों और सीनियर सिक्योरिटी अफसरान ने दहशतगर्दी और साइबर खतरात समेत सलामती को दरपेश बहुत से आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए मजबूत तर इश्तराक के लिए कहा है। मीटिंग से खिताब करते हुए कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने उभरते हुए सिक्योरिटी खतरात और डिजिटल दुनिया में दहशतगर्दी के बदलते तौर तरीकों में इजाले के लिए ब्रिक्स ममालिक के दरमियान जामे बातचीत और इश्तराक की जरूरत पर जोर दिया। तेहरान में भारत के सफारतखाने ने मुल्क में बेहतर सिक्योरिटी हालात के पेश नजर भारतीय शहरियों के लिए नए सिरे से एडवाइजरी जारी की है। हालिया मुस्बत वाकयात और मजमूई सूरत हाल में बेहतरी के मद्देनजर सफारतखाने ने हिंदुस्तानी बाशिंदों को मशवरा दिया कि वो सोच समझकर और एहतियात के साथ ईरान का सफर करें। भारतीय बाशिंदों को यह भी सलाह दी गई कि वो अगले नोटिस तक गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। सफारतखाने ने यह भी कहा कि वो जो भारतीय बाशिंदे इस वक्त ईरान में हैं, जो नागुजीर वजूहात की बिना पर ईरान का सफर करना चाहते हैं, वो इंतहाई एहतियात से काम लें, हालात से बाखबर रहें और चौकसी बरतें। उनसे यह भी कहा गया कि वो लगातार सफारतखाने की बाजाब्ता वेबसाइट देखते रहें। सफारतखाने ने मदद के लिए हंगामी नंबर भी जारी किए हैं, +989128109115 +989128109109 +989128109102 +989932179359 भारतीय बाशिंदे सफारतखाने से ईमेल के जरिए भी cons.tehran.mea.gov.in से राब्ता कायम कर सकते हैं।

0: नीति आयोग के नायब सरबराह डॉ अशोक कुमार लहरी ने कहा है कि आखिरी सहमाही में भारत की मजमूई तिजारत में 5.4% का इजाफा हुआ। उन्होंने नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट जारी करते हुए ये बात बताई। डॉ लहरी ने यह भी बताया कि इस अरसे में भारत की बरामद 1.84 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जबकि दरामद में 6.5% का इजाफा हुआ। मकानात और शहरी उमूर के वजीर मनोहर लाल ने कौमी राजधानी में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए सेंट्रल सेक्रेटरिएट मेट्रो स्टेशन पर तामीराती काम का इफ्तिताह किया।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है, जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा, और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग, उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अष्टमी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर 9 स्टेशन
0: है। नामरीगारों से गुफ्तगु करते हुए वजीर मौसूफ ने इसे एक तारीखी लम्हा करार दिया और कहा कि इस प्रोजेक्ट से सरकारी मुलाजमीन और तमाम पेशावर अफराद की रोजमर्रा की आमदोरफ्त को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट आर के आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ तक होगा, इसमें शिवाजी स्टेडियम भी शामिल होगा और जनकपुरी वेस्ट से इंद्रलोक तक मुसाफिर बिला रुकावट सफर कर सकेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारतीय सनतों के वजीर एच डी कुमारास्वामी ने आज जोर देकर कहा कि स्टील की सनतों को डिजिटाइज करना मुस्तकबिल में तरक्की के लिए इंतहाई अहम साबित होगा। नई दिल्ली में स्टील के शोबे की डिजिटलाइजेशन पर चिंतन शिविर से खिताब करते हुए उन्होंने भारत के मुतहरिक स्टील शोबे की कारकर्दगी को उजागर किया। उन्होंने कहा कि मुल्क ने 2018 के बाद से स्टील की सबसे ज्यादा पैदावार करने वाले दुनिया के दूसरे मुल्क की अपनी पोजीशन बरकरार रखी है। वजीर मौसूफ ने कहा कि माली बरस 2021-22 से खाम स्टील की पैदावार तकरीबन सालाना 8% बढ़ी है, जबकि तैयारशुदा स्टील की खपत में अंदाजन 13% का इजाफा हुआ है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया जा रहा है। 24 जून 1967 को पासपोर्ट से मुतालिक कानून बनाया गया था, उसी मुनासिबत से यह दिन मनाया जाता है। इस मौके पर वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा कि दूसरे पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम चिप वाले ई पासपोर्ट की शुरुआत नए पासपोर्ट सेवा केंद्र और डाकखाने के पासपोर्ट सेवा केंद्र और रिकॉर्ड तादाद में पासपोर्ट जारी किए जाने से सफर में आसानी पैदा हुई है। आलमी मौकों तक रसाई में तौसी हुई है और शहरियों को बाख्तियार बनाया गया है। भारत के मौसमियात के महकमे ने आज कोंकण और गोवा में तेज से बहुत तेज बारिश होने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन के दौरान साहली कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह के हालात रहने का इम्कान है। महकमे ने इस महीने की 29 तारीख तक आसाम, मेघालय, अंदरूनी कर्नाटक, ओडिशा, तेलंगाना, मगरबी बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने हफ्ते के दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने खलीजी खित्ते का 3 रोजा दौरा शुरू किया। इस दौरे का मकसद अमरीका के ईरान के साथ तय पाने वाले समझौते के बाद अपने अरब साथी मुल्कों को फिर से एतमाद में लेना है। अमरीका, इसराइल और तेहरान के दरमियान 4 महीने से जारी लड़ाई के बाद अमरीका ने ईरान के साथ समझौता किया है। हॉकी इंडिया ने आइंदा माह शुरू होने वाले बरतानिया के दौरे के लिए 24 रुकनी जूनियर खवातीन टीम का ऐलान किया है। यह दौरा 5 जुलाई से 14 जुलाई तक होगा। नए कोच टिम व्हाइट की निगरानी में टीम स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मुकाबले खेलेगी, जो आइंदा बैन अल-अक़वामी की तैयारी का एक हिस्सा होगा, जिसमें जूनियर एशिया कप भी शामिल है। टीम की कप्तान खैदम शिलेमा चानू करेंगी, जबकि निधि और एंजली हर्षा रानी मिंज 2 गोलकीपर होंगी। नौरोज के इस दौरे का आगाज स्कॉटलैंड की सीनियर खवातीन की टीम के साथ 2 मुकाबलों से होगा। फीफा वर्ल्ड कप में कोलंबिया ने आज मेक्सिको के ग्वाडा लाजारा में ग्रुप के मैच में डीआर कांगो को 1-0 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इससे कबल अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत ने अक़्वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर का मामला उठाने पर सख्त एहतजाज किया है और इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान मुआविन सदर की अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तेहरान में भारतीय सफारतखाने ने भारतीय शहरियों के लिए नए सिरे से एडवाइजरी जारी की है और यह भी कहा कि वह ईरान का गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज कोंकण और गोवा में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों में शदीद बारिश के बाद अचानक सैलाब के पेश नजर आसाम में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। हॉकी इंडिया ने आइंदा माह शुरू होने वाले बर्तानिया के दौरे के लिए 24 रुकनी जूनियर खवातीन टीम का ऐलान किया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Good afternoon. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the Midday News. The headlines. India lodges strong protest against Pakistan over Kashmir issue at UNSC, accuses Islamabad of misusing its position as co-chair. Indian Embassy in Tehran issues revised advisory for Indian nationals to continue to avoid all non-essential travel to Iran. IMD issues red alert for very heavy rainfall over Konkan and Goa today. Assam on high alert after heavy rain accompanied with flash floods hit parts of Arunachal Pradesh. Hockey India announces 24-member junior women's squad for upcoming United Kingdom tour beginning next month. And in FIFA World Cup, Colombia qualifies for round of 32 after beating DR Congo 1-0 in Mexico today. India strongly objected to Pakistan raising the Kashmir issue at a United Nations forum, accusing Islamabad of politicizing the platform, also slammed it for misusing its position as co-chair instead of being unbiased as behooves the position. The remarks were made by India's permanent representative to the UN in New York, P. Harish, in response to comments by Pakistan's permanent representative, Asim Iftikhar Ahmed. Responding to Pakistan's intervention, Mr. Harish criticized the conduct of the co-chair and reiterated India's long-standing position on Jammu and Kashmir.
3: I also refer to the unwarranted remarks made by the representative of Pakistan. It is incredible that a co-chair expected to be balanced and unbiased in conduct has chosen to politicize this forum. I would only like to stress for brevity of time that the Union Territory of Jammu and Kashmir is a matter strictly internal to India. It has always been, is and will remain so.
2: The Indian envoy also spoke about the ongoing review of the UN mandates under the UN-80 framework, which aims to improve efficiency across the organization. The Indian Embassy in Tehran has issued a revised advisory for Indian nationals in view of the improving security situation in the country. In light of recent positive developments and the improvement in the overall situation, the embassy advised Indian nationals to contemplate about traveling to Iran. According to the advisory, Indian nationals advised to continue to avoid all non-essential travel to Iran until further notice. The embassy said Indian citizens currently residing in Iran, as well as those required to travel to Iran for unavoidable reasons, are advised to exercise a high degree of caution, remain vigilant and maintain constant situational awareness. The embassy further advised all Indian nationals currently in Iran and those arriving in the country to register their particulars with the embassy at the earliest opportunity. For assistance, the embassy has issued emergency helpline numbers +989128109115, +989128109109, +989128109102, and +989932179359. Internationals can also contact the embassy through email at cons.tehran@mea.gov.in. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today highlighted the importance of deepening India-South Korea ties amid a challenging global environment, saying that countries with shared values and mutual trust need to work together more closely. In his opening remarks during the meeting with South Korean Foreign Minister Choi Hyun in Seoul, he stressed that the current international situation makes cooperation among trusted partners more important than ever.
4: It is clearly our responsibility to take this relationship forward, to oversee what different parts

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सहअध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहअध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर हैं +98912810915। दूसरा नंबर है +98912810909। तीसरा नंबर +98912810902। और चौथा नंबर है +98993217935। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
1: चार महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गोल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमरीका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही। हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रूपये की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गई। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
3: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए आजमी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आरके आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशन्स है।
0: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम के छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा

0: पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले दो दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिले के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
1: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले एक से दो दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदिम शिलेमा जानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मुनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक की उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: कार्यक्रम उन्नत किसान में बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज मैं हूँ आपके साथ सीमा सती और मेरे साथ है
1: बिल्कुल मैं हूँ गौतम। और कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार
0: जी। और जैसे कि आज बात होगी, वैसे आप देख ही रहे हो कि बाहर बहुत गर्मी हो रही है गौतम, देख ही रहे हो, और इसका हम पर तो बहुत असर पड़ ही रहे हैं, साथ ही साथ हमारी फसलों पर भी बहुत असर पड़ रहा है और हमारे पशुधन पे भी बहुत असर पड़ रहा है। तो मौसम का हर चीज पे बहुत असर पड़ता है, मौसम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासतौर पे बात करें हमारी खेती बाड़ी के लिए। तो आज कुछ ऐसी चर्चा करने वाले हैं हम।
1: बिल्कुल, आज का जो विषय है हमारा सीमा जी वो है स्मार्ट खेती के लिए मौसम आधारित फसल प्रबंधन। अगर हम स्मार्ट खेती की बात करें तो आधुनिक कृषि की एक महत्वपूर्ण पद्धति है जिसमें मौसम की जानकारी का उपयोग करके फसलों का बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है। और अगर मौसम पूर्वानुमान के आसार अनुसार किसान बुआई, सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन करें और कीटनाशकों के प्रयोग का सही समय निर्धारित कर सकते हैं अगर मौसम के पूर्वानुमान से, तो उनको मतलब निश्चित तौर पे लाभ होगा। और इसके लिए ही आज का हमारा विषय भी यही है, स्मार्ट खेती के लिए मौसम आधारित फसल प्रबंधन। और हमारे स्टूडियो में हमने विशेषज्ञ भी आमंत्रित कर रखा है। हमारी आज की जो विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर आरती भाटिया, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में।
2: मेरे सारे किसान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार।
1: और सबसे पहला जो सवाल मेरे जहन में आ रहा है मैम कि वो स्मार्ट खेती होता क्या है?
2: देखिए, स्मार्ट खेती का अर्थ है कि सही समय पे सही निर्णय लेके खेती करना
1: जी।
2: और जैसे कि हम देख रहे हैं कि मौसम जो है वो बहुत ही अनुकूल नहीं है आजकल, कभी गर्मी इतनी तेज पड़ रही है, तापमान इतना ज्यादा हो रहा है, वर्षा की अनियमितता हो गई है, कभी लेट आएगी कभी। अभी खरीफ का जो पूर्वानुमान है कि वर्षा इस बारी पहले के साधारण से थोड़ी कम पड़ेगी
1: जी।
2: तो किस समय बुआई करें, किस समय आप पानी की सिंचाई करें, किस समय उर्वरक लगाएं, किस समय पेस्टिसाइड लगाएं, ये सब हमें मौसम के इसको जो मौसम की जो अनियमितता हो रही है उनके देख रेख में ही हमको ये सब करनी
1: जी।
2: अगर हम पहले जैसे करते थे नॉर्मल तरीके से, हमने जी बुआई कर दी और फिर बारिश नहीं आई, तो आप देखिए फिर वो आपका जो उसकी होगी जो हमने लगाई है फसल, तो बिना बात के उसमें हमें ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, ज्यादा सिंचाई करनी पड़ेगी। अब सिंचाई के लिए पानी नहीं होगा तो फिर कैसे करेंगे? तो मौसम बहुत जरूरी। और कई बार ऐसा होता था हमने उर्वरक का छिड़काव किया है, उसी टाइम वर्षा आ गई तो सारा का सारा उर्वरक बह गया। तो ये सब बहुत जरूरी हो गया है कि हम अपनी खेती में मौसम की जानकारी का सदुपयोग करते हुए खेती करें।
1: बिल्कुल
0: जी हाँ। और जैसे कि आप बहुत अच्छी बात बताई कि अगर हमें पहले ही पता चल जाए कि मौसम कैसा रहने वाला है या हमारी फसल पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम मेंटली भी तैयार हो जाते हैं और उसके लिए बचाव और सावधानियों की भी तैयारी कर लेते हैं। तो अगर जैसे कि डॉक्टर साहब आपने बताया कि मौसम का हमारी फसलों पे प्रभाव, तो अगर हम मौसम की बात कर रहे हैं और फसलों की बात कर रहे हैं तो किस्मों का भी यहाँ पे चयन करते वक्त किसान को ध्यान में रखना पड़ेगा
2: जी। जैसे कि इस बार पूर्वानुमान है कि बारिश पहले से कम पड़ेगी, तो हमको जो सूखा जो प्रतिरोधी किस्में हैं, ड्राउट टॉलरेंट जो किस्में हैं, उनकी जानकारी लेते हुए उन्हीं की बुआई करनी चाहिए, जो कि बारिश अगर कम भी हो तो वो झेल सके। और किसी किसी इलाके में क्या है, जैसे कि बहुत ज्यादा बारिश आने

0: की संभावना है। तो हमको ना एक अपने खेत में निकासी की भी जो सुविधा है वो जरूर रखनी चाहिए। नहीं तो हम सोचते हैं पानी है तो अच्छा ही है, ज्यादा पानी रहेगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन नहीं, ज्यादा पानी से ज्यादा नमी हो जाती है, उससे ज्यादा कीट लगते हैं, ज्यादा तरह के रोग आते हैं। तो दो चीजों का किसान भाइयों को ख्याल रखना पड़ेगा कि एक जो आपके जो सूखा प्रतिरोधी किस्में हैं, अगर जिस इलाके में वो अनुमान है कि यहाँ बारिश कम होगी, और दूसरा अगर जहाँ अनुमान है कि बारिश ज़्यादा होगी तो अपने खेत में पहले से ही पानी की निकासी का प्रयोजन करके रखें।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक चीज़ और, जैसे हम लोग स्मार्ट खेती की बात कर रहे हैं, तो स्मार्ट खेती में कौन कौन सी आधुनिक तकनीकों का उपयोग हम कर सकते हैं?
0: हाँ देखिए, स्मार्ट खेती में कई तरीके होते हैं। सबसे पहले तो हमारे खेत जो होता है, ये तो मौसम का एक तो है ही, लेकिन इसके अलावा जैसे कि जो खेत है, हमको एक खेत में ना लेवलिंग बहुत ज़रूरी होती है।
1: जी
0: तो नहीं तो क्या होता है, एक तरफ ढलान होती है तो पानी एक ही तरफ आके इकट्ठा होता रहता है। तो जो लैंड लेवलर होते हैं उसकी प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका खेत थोड़ा समतल रहे जहाँ पे ये हो सकता है। देखिए कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे कि ढलान बहुत ज़्यादा है तो वहाँ तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जहाँ पे ढलान इतनी नहीं है और खेत उस जगह पे आपको लैंड लेवलर से, जैसे लेजर लैंड लेवलर वगैरह है, उसके प्रयोग करके अपने खेत को समतल करने की जरूरत है। इसके अलावा आजकल जो छोटे छोटे एक पावर टिलर्स टाइप के वो हैं, जैसे कि जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि हम मतलब अपनी फसलें तो लेते ही हैं, वहाँ पे हम ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जैसे कि किसी की ज़मीन कम हो गई है, बड़ा ट्रैक्टर नहीं चल पा रहा है, तो आजकल स्मार्ट खेती में छोटे छोटे यंत्र बनने शुरू हो गए हैं, छोटे छोटे पावर टिलर्स बोलते हैं, जो कि जो बड़े ट्रैक्टर के साथ में हम इम्प्लीमेंट्स लगा के खेती के वो जुताई वगैरह करते थे, वो आजकल छोटे छोटे भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि कम एरिया में कम ईंधन के साथ ही वो वाला काम कर देते हैं। तो इस तरह के यंत्र भी हैं, इनको भी प्रयोग करना स्मार्ट खेती के तहत आता है। इसके अलावा आजकल एक बहुत बड़ी चीज़ है, जैसे कि वो आपने सुना होगा IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स करके।
1: जी
0: इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक मतलब हमारे भारत सरकार का एक डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है, उसके तहत इसको काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है कि IoT। IoT का मतलब क्या है कि आपके इंटरनेट की सुविधा से आपकी खेत की जानकारी आपके मोबाइल फोन पे आ जाए। तो इसके तहत जो है आपके खेत में कितनी मतलब क्या उसका तापमान हो रहा है, कितनी नमी है, सिंचाई लगानी चाहिए नहीं चाहिए, तो ये आपको घर बैठे ही आपको सॉइल के मॉइस्चर के सेंसर लगते हैं, और वो सेंसर आपको आपकी ज़मीन में पानी की लगाने की ज़रूरत है या नहीं है उसकी जानकारी आपको सीधा आपके मोबाइल पर दे देते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो इससे क्या है, आप अननेसेसरली की सिंचाई नहीं करेंगे। इसके अलावा जो NPK की जानकारी है कि कितना नाइट्रोजन, कितना पोटाश, कितना फास्फोरस लगाना है, कमी हो रही है नहीं हो रही है, सॉइल जो हेल्थ कार्ड है उसका प्रयोग करके, जैसे कि हम लोगों को वैसे भी इसका प्रयोग करना चाहिए जो NPK फर्टिलाइजर का, अगर आपके खेत में पहले से P बहुत है या K बहुत है, तो हम ऐसे ही, ज़रूरी नहीं है कि P K हर बार लगाते रहें।
1: जी
0: अगर सॉइल हेल्थ कार्ड में हमारा आ रहा है, मिट्टी की जांच के बाद आ रहा है कि हमें आवश्यकता है, तभी हम लगाएं। और जैसे मैंने बताया, ये सेंसर जो है, ये भी सेंसर जो है, आपको उसी टाइम पे आपकी मिट्टी में क्या स्थिति है, उर्वरक कौन सा लगाने की ज़रूरत है, उसकी भी जानकारी आपको आपके मोबाइल पे आ जाती है।
1: बिल्कुल
0: उसके अलावा जो तापमान होता है, वो आपको आपके खेत का जो पौधों के नीचे का तापमान है उसकी भी जानकारी मिल जाती है, क्योंकि क्या है कि तापमान ज़्यादा बढ़ने से हम जैसे हम लोग सबको कष्ट होता है, वैसे पौधे को भी कष्ट होता है
1: बिल्कुल
0: कि भी हल्की सिंचाई लगाने की ज़रूरत है या नहीं है उस स्थिति में। तो इसका पूर्वानुमान भी आपको IoT के थ्रू आपके उस पे मोबाइल पे आ जाएगा जानकारी, तो आप उस समय आप एक सिंचाई लगा सकते हैं। तो ये तो हुई एक IoT की चीज़। इसके अलावा जो स्मार्ट खेती के अंदर आजकल जो एप्स बनी हुई हैं, जो कि आजकल मौसम की जानकारी देती हैं, बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी एप्स हैं भारत सरकार की। हमारी मेघदूत ऐप है, किसान सारथी ऐप है, पूसा कृषि जो ऐप है, तो ये सारी ऐप्स हैं जो कि आपको फसल प्रबंधन बताती हैं कि आपके इलाके में जब आप उसमें उसमें डालेंगे तो आपको 3 से 5 दिन की आपके आगे आने वाले समय की जानकारी एकदम मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल ही आने वाला समय है, तो आप उसी हिसाब से प्रबंधन कर सकते हैं। आपको वो बताएगा कि भी

0: और जानकारी, तो वो आपको उसकी जानकारी एकदम से आपको आगे आने वाले 5 दिनों तक का पूर्वानुमान आपको मिल जाता है। तो उसी हिसाब से आप इसका प्रबंधन करें। और जिन किसान भाइयों के पास स्मार्टफोन नहीं है वो भी जानकारी लेने के लिए रजिस्ट्री कर सकते हैं। उसका फोन नंबर भी है जो कि मैं बता सकती हूँ, जिसपे कि वो मतलब जो नॉन स्मार्ट वाले फोन वाले जो हैं वो अभी आगे कार्यक्रम में आपको बताऊंगी। तो इस तरह से जो ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं, जिसको कि हम बोलते हैं आजकल स्मार्ट टेक्नोलॉजीज, इनका प्रयोग करके किसान जी अपने फसल का प्रबंधन। अच्छा, ये आपको ये भी जानकारी देती हैं कि अब जैसे इस स्थिति में कि ये वाला फसल अगर आपने लगा रखी है, आप उसमें फसल के बारे में भी बताएं, और तापमान ऐसे होने वाला, वर्षा ऐसे होने वाली, तो इतनी नमी आएगी, तो इसके साथ में आप जो है कौन सी पेस्टिसाइड का, कौन से कीटनाशक का उपयोग करें, उसकी जानकारी भी वो आपको देते हैं। और अगर किसान भाई मित्रों के पास में या बहनों के पास में किसी के खेत में कोई कीट आ गया, कोई रोग आ गया, तो आप उसकी फोटो खींच के आप उनको दे सक उसमें शेयर कर सकते हैं। और वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो देख के भी आपको उसके लिए क्या, उसको उसके निवारण के लिए क्या करना है, उसकी जानकारी आपको देंगे। तो ये अलग-अलग ऐप्स हैं जिसके बारे में हम आगे बात कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। और मैं एक चीज़ और किसान भाइयों को बता दूं कि जो कि हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहते हैं वो हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का जो एसटीडी कोड है वो है 011, और जो नंबर है हमारा वो है 2342-1081। दूसरा नंबर हमारा है 2342-1083। हमें आप कॉल कर सकते हैं, और आज का जो विषय है हमारा स्मार्ट खेती के लिए मौसम आधारित फसल प्रबंधन, और विशेषज्ञ हमारे जो हैं आज के डॉक्टर आरती भाटिया स्टूडियो में मौजूद हैं, वो आपके सवालों का जवाब देंगी। अगर आपके जहन में कोई इस विषय से सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं।
2: जी हाँ, और जैसे डॉक्टर साहब आपने बताया है कि ज्यादा बारिश आ जाती है, या कुछ सिंचाई भी कर दिया, बारिश भी आ गई, और फिर वो पोषक तत्वों का रिसाव हो रहा है, तो उसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, क्या इससे रिलेटेड जानकारी भी हमें मिल सकती है?
0: बिल्कुल, इस तरह की जानकारी आपको मिल सकती है, क्योंकि अब जो एक्सपर्ट्स हैं आपने उनके साथ में शेयर किया, आपने उनको अपने जो खेत की असली जो फोटो खींच के आपने भेजी, तो वो एकदम से एक्सपर्ट होते हैं, वो आपको देख के बता सकते हैं कि इसमें कौन से जो सूक्ष्म पोषण तत्व की कमी हो रही है, कोई रोग आ रहा है तो किसकी वजह से आ रहा है, तो वो जानकारी देते हैं। तो फिर आप उसी के हिसाब से जो कीटनाशक है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और उसके अलावा जो आपको सूक्ष्म पोषण तत्व लगाने हैं उनकी भी उपयोग कर
2: जी
0: सकते
2: हाँ डॉक्टर साहब, यहाँ पर हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो,
3: हेलो।
2: हाँ जी सर, नमस्कार, अपना नाम बताइएगा, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
3: बोल
2: हाँ जी, बोले, सवाल कीजिए।
3: मेरा सवाल ये है कि अभी के मौसम में कौन सा फसल लगा सकते हैं?
0: जी, आपके मौसम में आप धान लगाएंगे, मक्का लगाएंगे, सोयाबीन लगाएंगे, और आप
3: धान लगाने का
0: जैसे,
3: प्लान सोचा है?
0: हाँ जी,
2: पहले तो
3: धान
2: ना
3: लगाने का
2: पहले तो आप
3: प्लान
2: अपना ये
3: सोचा
2: रेडियो सेट को ना पहले आवाज कम करिए, आप हमें आवाज नहीं आ पा रही है ठीक से,
3: जी मैडम,
2: पहले उसे वो कम करिए आप।
3: हेलो,
2: हाँ जी, आप पूछिए।
3: धान लगाने के लिए सोच रहा हूँ खेत में।
0: हाँ, बिल्कुल, धान लगाने का बिल्कुल सही समय है, लेकिन धान में अगर आप जैसे लगाना चाहते हैं तो आजकल कई विधि है धान लगाने की, जैसे कि आप धान को जो सीधी बिजाई की विधि से लगा सकते हैं, श्री विधि है जो सिस्टम ऑफ राइस कल्टीवेशन जो है उसकी विधि से लगा सकते हैं। जल भरकर धान लगाना कोई ज़रूरी नहीं है आजकल पैदावार के लिए, आप अच्छी उपज जो सीधी बिजाई के धान एवं श्री विधि से लगाए धान दोनों से ले सकते हैं।
2: तो उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और भी श्रोता अगर हमें सुन रहे हैं और आज स्मार्ट खेती से रिलेटेड कोई सवाल करना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिएगा। 2342-1081 और 2342-1083 पे आपका स्वागत है फ़ोन का। और भी हम जानना चाहेंगे कि अगर हम बुआई कर रहे हैं, किस्मों की सही जानकारी ले रहे हैं, जैसे कि उन्होंने बोला कि धान की खेती करना चाहते हैं, तो किस तरह से, कब करें, कैसे करें, कौन सी किस्म लें, तो ये सब जानकारी किस तरह इन्हें मिल पाएगी?
0: देखिए, जिस अलग अलग किस्में हैं पूरे भारतवर्ष के लिए, और सब जो जहाँ की मिट्टी कैसी है, कैसा उनका जो क्लाइमेट है, उसके हिसाब से किस्में का चयन होता है।

0: तो उनको जो उनके निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र है वहां जाके कि कौन सी उन्नत किस्में हैं, क्योंकि जो किसान भाई लगाए जा रहे हैं, कई समय से लगाए जा रहे हैं, उसमें क्या होता है कि बार बार बार बार जो कीट और रोग अब आने शुरू हो जाते हैं। और वो कीट और रोग क्यों आते हैं? क्योंकि हम वही किस्में वही फसलें बार बार लगाए जा रहे हैं। तो किसान भाइयों को बहुत आवश्यक है कि जलवायु परिवर्तन के समय में कीट और रोग जो परेशान कर रहे हैं, उसके लिए अपने फसल चक्र में दलहनीय और तिलहनीय फसलों का लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि इससे क्या है, देखिए, अगर आप एक ही फसल बार बार लेते रहते हैं तो मिट्टी में आप चाहे कितनी भी उसमें कीटनाशक रोगनाशक डालें, उसमें जो मिट्टी में जो जीवाणु हैं, जो प्यूपा टाइप के होते हैं, जो इंसेक्ट लगते हैं, वो आपने वैसे तो कीटनाशक डाली, वो वैसे ऊपर से मर गए, लेकिन उनके कण रह जाते हैं जो कि फिर बार बार रह रह के वापस आते रहते हैं। तो इस सब का फसल विविधीकरण ही
1: जी
0: एक बड़ा रोकथाम है, ताकि आप अपने फसल चक्र में दूसरी किस्में लें, दूसरी जो मतलब दूसरी किस्में नहीं कि दूसरी फसलें लें। तो जरूरी है कि दलने और तिलने, इससे आपकी मृदा का स्वास्थ्य बहुत बेहतर होगा और जलवायु परिवर्तन के समय में आपको जो रोगों से लड़ने की क्षमता आपकी जो जो मृदा की है वो भी बढ़ेगी।
1: जी हाँ डॉक्टर साहब, यहाँ पर हमारे बीच किसान भाई आ रहे हैं। हेलो।
2: हेलो हेलो,
1: हाँ जी सर, अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं।
2: नमस्ते मैम जी,
1: हाँ जी नमस्कार।
2: डॉक्टर साहब को भी नमस्ते।
1: नमस्ते जी।
2: अच्छा, मैं तो जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ, राजेश कुमार।
1: जी जी राजेश जी, सवाल कीजिए।
2: सवाल ये है कि ये अदरक और हल्दी की जो फसल है, ये कौन से महीने में लगाते हैं और इनको कौन सा खाद जो है देना चाहिए, इसके बारे में जानकारी मांगते हैं।
1: जी अच्छा, ये अदरक और जो हल्दी
0: हल्दी की जो फसलें हैं, आप इसको इसकी जो जानकारी, देखिए कौन सी किस्में हैं और किस तरह से इसकी लगाने का सही समय रहेगा, ये जैसे मैंने आपको ये बताया ना कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आप एक ये ऐप है हमारी, पूसा कृषि ऐप है, ठीक है, ये पूसा कृषि ऐप है, और एक पूसा व्हाट्सएप सलाह है, इसका नंबर नोट कीजिए, 9560297502। मैं फिर से दोहराऊंगी, 9560297502। इस पे अगर आप अपना प्रश्न जो पूछ के व्हाट्सएप के थ्रू भेजेंगे तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको किस्म की भी जो उन्नत किस्म और क्या सही समय रहेगा अब तापमान का और वर्षा का पूर्वानुमान लेते हुए वो आपको इसकी जानकारी देंगे, एक साइंटिफिक और वेदर बेस्ड सॉल्यूशन के तहत। तो आप ये देख लीजिए, अगर आपके पास में ये स्मार्टफोन नहीं है तो आप डायरेक्ट कॉलिंग भी कर सकते हैं, उसका नंबर रहेगा 01125841670, 01125841670, और दूसरा नंबर है 01125841039। इन पे आपको डायरेक्टली कि कब आप जो ये है अदरक और जो आप हल्दी लगाना चाहते हैं और किस किस जो सही इसकी क्या किस्म रहेगी और कितना उर्वरक लगेगा, इस सब का आपको उत्तर उस पर्टिकुलर से मिल जाएगा।
3: बिल्कुल
1: जी।
3: और डॉक्टर साहब, जैसे वापस हम लोग अपनी विषय की ओर आते हैं, स्मार्ट खेती की बात कर रहे हैं हम लोग और मौसम आधारित फसल प्रबंधन की बात कर रहे हैं, तो मेरा एक सवाल है किसान भाइयों की तरफ से कि स्मार्ट खेती और पारंपरिक खेती में अंतर क्या है।
0: जी देखिए, पारंपरिक खेती क्या होती थी, पारंपरिक खेती में तो हमने हिसाब लगा ही लिया कि भाई हमको तो अब समय हो गया है, जो जुलाई का पहला महीना अब आने पहला हफ्ता आने वाला है, तो हमें धान की खेती बुआई जो है ट्रांसप्लांटिंग कर ही देनी थी।
3: बिल्कुल
0: लेकिन अब स्मार्ट खेती में ये हो रहा है कि आपको पता है कि आपके इलाके में अगर पूर्वानुमान है कि भाई वर्षा की कमी होने वाली है, तो सबसे पहले आपको पता लग जाएगा कि वर्षा की कमी होने वाली है तो हमें जल भर के धान की खेती नहीं कर पाएंगे, हमें दूसरे जो
3: जो कम सिंचाई
0: कम
3: वाले।
0: सिंचाई वाले हमें एक तो वो लगाने पड़ेंगे, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन है,
3: जी
0: स्प्रिंकलर इरिगेशन।

0: हम उसका, और सरकार सब्सिडी भी देती है, तो हम उसका प्रबंधन करें अपने खेत के लिए। तो ये एक स्मार्ट खेती का ही वो है। और दूसरा, मौसम जो एप्स हैं ये आपको बताती हैं कि अभी अगले हफ्ते भर तक आपकी बारिश नहीं आने वाली, और या 10 दिन में आएगी या 4 दिन में आएगी, तो आप उसी हिसाब से बुआई कर लें। क्योंकि ये भी नहीं होना चाहिए कि आपने बुआई की और अगले दिन बारिश आ गई तो सारा बीज बह गया।
1: जी
0: तो यही स्मार्ट खेती और पारंपरिक खेती में फर्क है कि किसान की लागत और किसान की जो उसकी आगे प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने की तरफ ही ये एक जो है, क्या
2: कदम
0: बोलते
2: है।
0: हैं,
2: बिल्कुल,
0: कदम
2: हाँ
0: है। जी
2: जी। डॉक्टर साहब यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो।
3: हेलो
2: हाँ जी सर, अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: जी, मेरा नाम सुनील है जी, और मैं झारखंड से बोल रहा था।
2: जी सुनील जी, सवाल कीजिए।
3: सवाल था ये जी, मैं धान लगाने वाला हूँ, तो
2: जी
3: इसमें वो घास बहुत ज्यादा हो जाता है धान के साथ में, तो उससे हम कैसे बच सकते हैं? घास
0: हाँ, देखिए
3: के वजह से वो धान नहीं चल पाता है।
0: जी जी बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। धान बहुत ज्यादा हो रहा है तो आपको ना, जो इसके लिए आपको धान से पहले ही, जब आप खेत तैयार कर रहे हैं तो बुआई करने से पहले आपको एक जो है पेंडामिथलिन का स्प्रे करना पड़ेगा उसके लिए। तो इससे जो होगी ना, जो घास है वो जो है उसमें आप, मतलब जो इसको बोलते हैं घास जो आप बोल रहे हैं वो वीड्स होती हैं बेसिकली। तो वीडिसाइड का प्रयोग होता है, जो आपके ब्लॉक के अधिकारी हैं या कृषि विज्ञान केंद्र वाले हैं वो आपको कौन सी पर्टिकुलरली वीडिसाइड लगानी है जो आपके इलाके में मिल रही हो, और वो ये भी देख सकते हैं कि कौन सी टाइप की घास है। देखिए अलग अलग घास के लिए अलग अलग वीडिसाइड का उपयोग रहेगा। तो अगर आप वो वीडिस जो घास है उसकी फोटो आपके पास में हो वो खींच के भेज दे तो ज्यादा अच्छे से उसकी जानकारी दी जा सकती है। नहीं तो आपको वीडिसाइड का उपयोग करना पड़ेगा, प्री एमर्जेंस एंड पोस्ट एमर्जेंस बोलते हैं, कि जो हमने लगाया, जो धान का बीज लगाया तो उसके अंकुरित होने से पहले और उसके अंकुरित होने के बाद हमको एक वीडिसाइड लगानी पड़ती है, जो कि जिससे कि ये आपकी घास कम हो सके।
2: जी हाँ,
0: इसके अलावा जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे स्मार्ट खेती की, तो मैं ये चीज़, ये वीडिसाइड पे और पेस्टिसाइड पे बात आई है तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आजकल स्मार्ट खेती के तहत ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है,
1: बिल्कुल
0: इन एग्री ड्रोन्स का। तो इससे क्या होता है, इससे जब ड्रोन आपको इन्फॉर्मेशन देता है और IoT के थ्रू आपको ये पता लग जाता है कि कौन सा पौधा बीमार है और किस इलाके में आपके खेत में रोग आ रहा है। तो आपको जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा ना सब पूरे में छिड़काव करना है, जैसे हम होता है कि अब बीमारी आई तो हमने तो पूरे खेत में
1: जी।
0: छिड़काव कर दिया, लेकिन ड्रोन टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको ये पता लग जाता है कि किस हिस्से में, हमारे खेत के किस हिस्से में बीमारी कर रही है, तो हम वहीं से उसका निवारण करना शुरू करें ताकि वो रोग फैले नहीं पूरे के पूरे में। और दूसरा, जो स्मार्ट खेती के तहत जो हमारी एप्स हैं ये जब आपको बता देती हैं वो आपको कितनी नमी होगी मृदा में, कितना तापमान होगा, कितनी वर्षा होगी, तो जब आपको इसका पूर्वानुमान हो जाता है तो ये भी, अब किसान भाई तो खुद भी जानते हैं कि कौन सा कीट आ रहा है, क्योंकि आजकल तो अब कितने सालों से वो करते आ रहे हैं। तो अगर उनको ये मतलब पता लग जाता है और जो पूर्वानुमान में ये बता दिया जाता है कि आप जो है, जैसे जनरल जो पेस्टिसाइड है जो कि अच्छी मानी जाती है, जैसे नीम, नीम के कई प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो वो आप जो नीम और कुछ अनुशासित जो कीटनाशक हैं उनका प्रयोग आप प्रबंधन के तौर पे पहले से ही कर सकते हैं ताकि रोग ज्यादा मात्रा में नहीं आए। तो ये सब आपको मौसम की जानकारी के
2: आधार पे,
0: आधार पे ही करना है। जब तेज हवाएं चल रही हैं तब आप कीटनाशक का प्रयोग ना करें, जब वर्षा आने वाली हो तब कीटनाशक का प्रयोग ना करें। और दूसरा, कीटनाशक का जब प्रयोग करते हैं तो एक स्टिकर टाइप का आता है जिससे कि ना वो कीटनाशक जो है वो पौधों पे थोड़ा चिपक जाता है ताकि वो बहे ना, तो उसका भी ध्यान रखें। इसके अलावा जो कीटनाशक और उर्वरक, या तो सुबह का प्रयोग करें या शाम को प्रयोग करें, दिन में जब धूप तेज हो तब ना करें, क्योंकि उससे फिर जो हमें उसका फायदा मिलने वाला है उसमें काफी कमी आ जाती है।
2: जी हाँ डॉक्टर, और एक यहाँ पे सवाल है, जैसे कि स्मार्ट खेती की बात हुई और जैसे कि हम यहाँ पे एप्स की बात करी, मेघदूत की हमने करी और किसान सारथी की करी, तो हमारे किसान भाई इसमें किस तरह से खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और किस तरह से इस सेवा का फायदा ले पाएंगे?
0: जी हाँ, तो उनको ना ये रजिस्टर करना पड़ेगा किसान सारथी ऐप पे, और इसके लिए

0: किसान सारथी ऐप है, इसके लिए तो किसान सारथी पोर्टल पे जाएंगे और वहां पे वो अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और वो मोबाइल नंबर के थ्रू रजिस्टर उस पे कर सकते हैं। तो उससे क्या है, जो भी उनको जो केवीके के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो उनके निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र के एक्सपर्ट्स हैं और जो मौसम की जो एडवाइजरीज हैं, वो उनको समय समय पे खुद से मिलेंगी,
1: SMS के जरिए पहुंच
0: SMS के
1: जाएंगे
0: जरिए
1: जी
0: मिलेंगी। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया, जिन किसान भाइयों के पास में
1: स्मार्टफोन
0: स्मार्टफोन नहीं है और अपने फोन से रजिस्टर नहीं कर सकते, उनके लिए एक नंबर है 1800 1800 1551। इस पे वो अपने बेसिक फोन से इस पे फोन करके अपनी जो है, जो उनको जो भी परेशानी हो रही है, जो उनकी क्वेरी है, वो डाल सकते हैं और फिर SMS के थ्रू उनको इस पे इसका जवाब जरूर मिलेगा। तो किसान सारथी ऐप पे या तो आप स्मार्टफोन से चलें या बेसिक फोन से चलें, तो आप उस पे रजिस्टर कर सकते हैं इस तरह से।
1: जी हाँ, तो हमारे किसान भाइयों ने बहुत अच्छे से सुना होगा कि अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप ज़रूर ये जितनी भी एप्स मैम ने बताए हैं तो ये डाउनलोड कर लीजिए और इसका सही तरीके से इस्तेमाल करके आपको सही जानकारी SMS के माध्यम से मिल सकती है। और अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो इसके लिए एक टोल फ्री नंबर मैम ने बताया है 1800 180 155। इस नंबर पर आप सीधे फ़ोन कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान,
0: 1551
1: हाँ एक बार मैम दोबारा बता दीजिए वो नंबर।
0: हाँ 1800 180 155।
1: 1551 इस नंबर पे हम सीधे फोन करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। जैसे मैम, जैसे कि आप अगर AI टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो क्या वो भी इसमें इंक्लूड होती है और उसका किस तरीके से हमारे किसान भाई फायदा ले सकते हैं?
0: देखिए, AI टेक्नोलॉजी, जब हम वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं तो वो सब AI टेक्नोलॉजी ही है, क्योंकि वो
1: जैसे
0: AI के थ्रू आपके जो खेत का जो वो रिकॉर्डिंग करते हैं, जो सेंसर्स
1: फोटो
0: हैं
1: भी
0: वो
1: भेज सकते
0: रिकॉर्डिंग
1: हैं।
0: करते हैं और फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही आपके खेत का पूरा पूर्वानुमान लगा के आपको बताया जाता है AI के थ्रू कि आपके खेत में कितनी नमी है, आपके खेत में उर्वरक की मात्रा क्या है, और फिर आप उसी हिसाब से आप उर्वरक का छिड़काव करिए, और या नमी अगर है, सिंचाई लगाने की जरूरत है या नहीं है, तो वो कर सकते हैं। और इसी के तहत एक छोटा सा है, अगर जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बहुत बड़ी बात है, किसान भाई को थोड़ा सुन के लगे भी सही कि भाई ये क्या बात हुई जा रही है, तो किसान भाई लोग छोटा सा है, आजकल ना ये चीजें हैं, ये छोटे छोटे उपकरण है स्मार्ट इरिगेशन कंट्रोलर टाइप के, ये 5000 रुपए से स्टार्ट होते हैं, छोटे से उपकरण होते हैं, जो कि उनका जो पहले जो सिंचाई का पंप है जो वो चलाते हैं, ये उसी पंप में ये छोटे से इरिगेशन कंट्रोलर लग जाते हैं। और फिर ये होता है कि ये जो इरिगेशन कंट्रोलर से जो है, आप अपने मोबाइल से ही कितना इरिगेशन का कंट्रोल करना है तो घर बैठे भी किसान भाई अपने इरिगेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो मतलब, ये देखिए, आपकी सुविधा के लिए बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन किसान भाइयों को बहुत जरूरी है कि मौसम का पूर्वानुमान की जानकारी अपने पास रखें और उसी के हिसाब से वो कदम उठाएं, फसलों का चयन करें, उर्वरक का प्रबंधन करें, कीटनाशक का प्रबंधन करें, और किस में भी जैसे है ना, जब आप ये पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे, कल्प पोर्टल है, मेघदूत है, तो इसमें क्या होगा कि आपके आपके ब्लॉक लेवल तक आगे जाके आपको एडवाइजरी मिलेगी और आप अपनी जो कौन सी उपज लेने वाले हैं उसका भी नाम दे सकते हैं, उसके हिसाब से आपको फीडबैक मिलेगा, उसके हिसाब से प्रबंधन करने का। इतना नहीं, जो पूसा की जो पूसा की कृषि ऐप है, उसमें अगर आप अपना डालेंगे कि मेरा 1 एकड़ का खेत है तो, और मुझे ये फसल लेनी है, तो कितना बीज लगाना है, कितना उर्वरक लगाना है, कितना कीटनाशक लगाना है सबका, ताकि आप ज्यादा बीज भी ना लगाएं, क्योंकि बीज भी देखिए ना, अगर बहुत ज्यादा किसान लगा देते हैं तो वो आपस में ही पौधों में कंपटीशन बढ़ जाता है और पैदावार ज्यादा नहीं हो पाती।
2: बिल्कुल
0: तो
2: डॉक्टर आरती भाटिया जी, आप स्टूडियो में आई और इतनी विस्तार से जानकारी दी हमारे श्रोताओं को मौसम आधारित फसल प्रबंधन, स्मार्ट खेती के बारे में, जो कि महत्वपूर्ण हिस्सा है आज की कृषि का और किसान भाइयों के लिए लागत कम करने और किसानों की आय में वृद्धि करने में सहायक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हाँ, सभी को, किसान भाइयों को मेरा सुनने के लिए धन्यवाद।
1: और कार्यक्रम कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा kkbongold@gmail.com पर, और अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ कार्यक्रम उन्नत किसान से मैं सीमा सती,
2: बिल्कुल मैं हूँ गौतम, और कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाइयों बहनों को
1: नमस्कार,
2: नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिकार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया। मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है। ईरान में तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही। इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए सिरे से बातचीत के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है। श्री रूबियो का संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे खाड़ी सहयोग परिषद के अधिकारियों से भी मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के बारे में जानकारी देंगे। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले में जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शमशुरुदुगुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवाकर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनगिरी सिरी जिले के में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले के यजाली क्षेत्र में पिछले 24 घंटों में 72.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन के दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदम शिलेमा चानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की भूमिका निभाएंगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको में ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से शिकस्त दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन

हेलो, राम राम, नमस्ते जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं मन भावन फरमाशी गीतों का कार्यक्रम। और क्या हाल है आपका? पूछो जरा, पूछो क्या हाल है, हाल मेरा बेहाल है जी। इस गर्मी में तो ऐसा ही होता है। तो फिर आप वो ORS के घोल ले रहे हैं ना, जो इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार में होता है, सरकार कहती है लिया करें। मुझे लगता है किसी भी कोल्ड ड्रिंक से ज़्यादा अच्छा है ना, एक बोतल लो, उसमें एक पैकेट डालो और सारा दिन अपने साथ रखो, और अपनी शख्सियत भी कुछ ऐसी बनाओ। कैसी? ORS जैसी? नहीं, मतलब नमक जैसी। देखो, नमक जब खाने में होता है ना, कोई उसका कदर नहीं करता, पता नहीं, लेकिन नमक एक दिन खाने में ना हो तो उसकी कमी खलती है ना। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं मन भावन, रूमी मलिक के साथ स्वागत है।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर मनभावन फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम। आपके ढेर सारे ईमेल्स आ गए हैं fmgoldairdelhi@gmail.com पर। हाँ जी, सतीश अनेजा जी लिख रहे हैं, रूमी बहना जी प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है, एफएम गोल्ड के लिए बेशुमार मोहब्बतें, बहुत बहुत शुक्रिया। बोधराज खोरवाल जी, किशन वंजानी, कौन कौन है हमारे साथ, देखो अटेंडेंस शुरू हो गई है ना, मेहर अरोड़ा, विजय सुरालकर, राजेंद्र सिंह भाटिया जी, आप इतनी लंबी ईमेल्स बार बार फॉरवर्ड करते हैं और उसमें एंड में लिखते हैं कोई भी गाना चला दीजिए, फिर मैं आगे से आपका नाम नहीं लूँगी, यू हैव टू वर्क हार्ड है ना, आपको गाने का नाम देना पड़ेगा। सोहेल शेख क्या लिखते हैं, सलाम नमस्ते वेलकम, रूमी दीदी आपके बोलने का अंदाज लाजवाब है, अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है, क्या बोला मैंने। भारत भूषण, गुड आफ्टरनून रूमी मालिक जी, आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल आई लिसन टू योर मेलोडियस वॉइस, बिलीव मी व्हेन यू इंक्लूड माई मेल इन द प्रोग्राम आई एम ऑन क्लाउड 9 As if I have received Padmashri Award. Oh, this is so brilliant. I think I should take a picture of this email and keep it, है ना? जब मैं 80 साल की हो जाऊंगी ना, तो मैं ऐसी ऐसी email ना पढ़ा करूंगी और बड़ा खुश हुआ करूंगी, देखो ऐसे दीवाने होते थे मेरे। भारत भूषण जी, आई वॉज अवे, यस मैं हिमालय गई थी, मैं उत्तरकाशी गंगोत्री में थी, तो इसलिए मुझे काफी ज्यादा समय लगा है ना, वहां पर हमने पढ़ाई भी करी, हाँ हाँ भाई हमने वेदांत पढ़ा था। अक्रम हुसैन प्रिंस, विजय सुरालकर हो गए ना नाम, तुलसी मस्किन जी, अच्छा अगले पेज पे चले, गोविंद वैष्णव, राजकुमार दूधी जी, गुरमीत सिंह जी, राधेश्याम देवानगन, अच्छा इसके बाद आप एक जना इतनी इतनी ईमेल्स भेजता है, इट रियली डिस्ट्रॉयज द फ्लो, रियली है ना, बच्चे थोड़ी हैं आप, एक ही मेल भेजिए ना। दीपेश जी, अनिल कुमार गवहनकर, विट्ठल यादव, मैंने एक बड़े कमाल का अभी मैसेज पढ़ा कि ये हाल तो तब है जब हमें ये पता है कि सब कुछ यहाँ छोड़ के जाना है, मतलब अगर भूल से आपके कोई नाम ना लिया गया तो देखिए कितना हो हल्ला मचेगा। अनिल कुमार गवहनकर, राम नरेश चिक, शमशुल कमर राही जी है ना, अच्छा अब इसके बाद में आगे देखें किसने, अहमद फूलवाले जी और जगन्नाथ पटेल, टेक बाय विदित, अच्छा रजक मोहम्मद, उदय भानपाल है ना, आई वॉन्ट टू टेक न्यू नेम, सुधाकर जाधव, सरफुदीर अंसारी, धर्मेंद्र चीपा, कमलकांत गुप्ता, नीतू मल्होत्रा जी, नितेश देवांगन, तनुजा देवांगन, अच्छा उसके बाद में एक और मैसेज हमने देखा था अभी, बबलू ठेकेदार, अच्छा और सुधाकर जाधव, इसके बाद में रास क्रिएशंस ने हमें एक मैसेज

भेजा कि आप हमें गीत सुनाइए। कौन सा गीत सुनाइए? सुनील पाठक जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, बबलेश पंवर जी भी, इन्होंने कहा कि हमें आप ये गीत सुनाइए। हमने कुछ निकाल के रखा था, हमने नहीं निकाल के रखा था, देखते हैं एक सेकेंड, लेट मी सी। सतीश अनीजा जी ने हमें बोला कि सौतन फिल्म का गाना सुना दीजिए। कौन सा वाला? शायद मेरी शादी का ख्याल। एक मिनट रुको जी, एक मिनट, पहले तो गाना निकाल लिया जाए, है ना। दिस इज वॉट हैपन्स। एक मिनट, चाय चाय, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, कलयुग का अमृत। हम छोटे होते थे ना तो वो आते थे, क्विज आती थी छोटी छोटी, तो कलयुग का अमृत लिखा होता था चाय, तो हम अपनी मम्मी के पास दौड़ के जाते थे, मम्मी मम्मी देखो आपको चाय इतनी पसंद है ना, इसे कलयुग का अमृत कहा गया है। नहीं, चाय बहुत काम आती है सचमुच में, हम तो हिमालय में भी चाय पी रहे थे। चलो जी, ये अच्छा सा गाना सुनते हैं। हैप्पी सतीश जी, विमला जी।

अंगा सचिव श्री अंगा छत्रपति शाम्भाजी संभाजी नगर से राजेश सांबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश कहते हैं कि इनको अब्दुल्ला फिल्म का गीत सुनना है। मैंने पूछा चांद से कि देखा है हसीं। अच्छा सांबाजी नगर से याद आया, आपको पता है मैं हमेशा ही सोचती थी कि सांबार है ना, सांबार उसको सही प्रोनंसिएशन यही है जो दक्षिण भारतीय करते हैं कि दक्षिण भारत में ईजाद हुआ होगा। पर आपको पता है शिवाजी के पुत्र सांभाजी को इस तरह का ऐसा तरल जो है ये पसंद था जिसे सांबार उनके नाम पर सांबार बना है। मुझे नहीं पता था ये वाली बात अंटिल आई रेड इट। इसीलिए मैं कह रही हूँ रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ फ़ोन ना देखा करें, रेडियो सुना करें और रीडिंग किया करें और रूमी को सुना करें। आर आर आर, आर।

ऐ चांद, ऐ चांद अपना मजहब तो बता, ईद भी तेरी और करवा चौथ भी तेरा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ मन भावन कार्यक्रम है फरमाइशी गीतों का। एफएम गोल्ड AIRDelhi@gmail.com पर आपकी ढेर सारी रिक्वेस्ट्स आ रही हैं। अगली फरमाइश है नीटू मल्होत्रा जी, लक्ष्य लाडो कोयल जी की। ये क्या लिख रहे हैं नमस्कार जी, आपको मान्य योग्य आरजे जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें योग्य होने का दर्जा दिया ये सुनना चाहते हैं गीत ओ मेरे दिल के चैन चैन आए, मेरे दिल को दुआ कीजिए। दुआ हर एक के लिए करनी चाहिए, सचमुच में जिसकी कल्याणमयी भावना होती है ना सबके लिए, उसके बढ़ोतरी को दुनिया रोक नहीं सकती। लोग अचंभा करते हैं कि अरे गिर गिर के भी उठ गई, आगे बढ़ गई, सफल हो गई। तो ये अपना ध्येय होना चाहिए, है ना। हमेशा सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो है ना, अगर आप अपनी प्रगति पर लग जाएंगे ना तो बहुत कल्याण करेंगे। इस बारे में और बातें होती रहेंगी, लेकिन एक गीत सुन लेते हैं।

0: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
2: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
3: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
2: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
3: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

एफएम गोल्ड और मिली मुझे एक मैसेज फिर मिली संगीत सुनना चाहते हैं, आए तुम याद मुझे। अनिल मोहन जी, उषा मोहन, टिलू नायक और मधु नायक, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से। तो हम ये गीत सुने।

0: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
1: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
2: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
1: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
2: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
3: 3-5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।
4: गर्मियों में मीठा रस खाना चाहिए, कई बार मैंने आपको बताया, इसीलिए आम रस, आम पन्ना, आम खाइए और बनिए खास। ये अगली फरमाइश किसकी है? अगली फरमाइश है किशन अंजानी जी की, इनके प्रिय मित्र हैं सुमन महाजन जी, इनको डेडिकेट करना चाहते हैं। ये गीत कौन सा? अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी। अच्छा जी, ये हैप्पी बर्थडे सॉन्ग होता है किशन जी, है ये क्या तरीका है? चलो खैर, अच्छा लगता, हो सकता है इनकी मित्र को गीत पसंद हो ना, ऐसा भी हो सकता है। हैप्पी बर्थडे सुमन जी, हमारे भी बर्थडे वाला मंथ आने ही वाला है, जुलाई आने ही वाला है। बिट्टू भाटिया जी, ताज मोहम्मद जी, मोहम्मद सैयद अवासी जी, सुरेश राठौड़, ताज मोहम्मद, फग्गू राम यादव जी, प्रकाश वर्मा जी, उदयभान पाल जी, ये सब हमारे साथ जुड़े हैं। उत्तम सिंह जंगेल जी, उमेश कुमार जी, मेहर अरोड़ा जी, विजय सुरलकर जी, दिग्दर्शन कौर जी, हाउ कुड आई फॉरगेट दिग्दर्शन कौर जी, मैं ये सोच ही रही थी, इन्होंने बोला कल निर्जला एकादशी है, ये लिख रही है, आप भी व्रत रखेंगे हम भी व्रत रखेंगे। और कोई गीत ये सुनना चाहती है, हरि भक्ति का गीत? सब कुछ में, मैं तो हर एक में हरि देखती हूँ दिग्दर्शन कौर जी, और क्या, सब कुछ, ये सारे गाने क्या हैं, ये मेरे हरि के ही तो हैं, विष्णु भगवान की माया से तो चल रहा है। माया का जो उपाधि है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए रिजर्व्ड है, मायापति। है ना, तो आइए ना सुनते हैं ये गीत, अजीब दास्तां है ये।

0: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ, दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
1: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
2: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
1: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
3: 3 से 5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।
4: आप सुन रहे हैं मन भावन आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आपके साथ हैं हम रूमी मलिक। हमारे साथ हैं जॉन डी कैस्ट्रो, रोजी डी कैस्ट्रो, पर्ल और विलिस। और ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि चुरा लिया है तुमने जो दिल को, ये गीत सुनेंगे जो मन भावन की आखिरी पेशकश होगी। पर आप जुड़े

रहिए हमारे साथ, इसके बाद भी हम आपको गीत सुनाएंगे, 5-10 से गाते गुनगुनाते भी होगा, तो रहिए हमारे साथ आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz।

0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान में तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए नया परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमेरिका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते की जानकारी देंगे। श्री रूबियो का संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही। विदेश मंत्री ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जैमिसिन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। प्रवर्तन निदेशालय गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शमशुद्दुरून और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय

इस बीच अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको में ग्रुप के में कोलंबिया ने

0: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ, दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
1: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका

0: किए जा रहे हैं, आवेदन प्रपत्र, पात्रता शर्तों, भर्ती के तरीके और अन्य विस्तृत जानकारियों के लिए देखिए सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय की वेबसाइट www.bsf.gov.in। असम विश्वविद्यालय सिलचर, जो कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर तथा मुख्यालय में प्रोफेसर क वर्ग के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विषयों, विभागों, नियम, शर्तों, आयु, वेतनमान आदि की विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी इस वेबसाइट पर www.aus.ac.in। इसके अलावा इस वेबसाइट पर भी आपको ये जानकारियां मिलेंगी curec.samarth.ac.in। ऑनलाइन आवेदन 10 जुलाई 2026 तक किए जा सकते हैं और ये सभी जानकारियां विस्तार से यदि आप देखना चाहें तो 20 जून 2026 से 26 जून 2026 का रोजगार समाचार पत्र भी आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड सहायक प्रबंधक टेलीकॉम के एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। योग्यता प्राप्ति के बाद उम्मीदवार को 5 वर्ष का अनुभव अवश्य हासिल होना चाहिए। पात्रता मानदंड, आवेदन पत्र आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम की वेबसाइट www.ncrtc.in। इस वेबसाइट पर जाकर करियर अनुभाग में रिक्ति सूचना संख्या 23/2026 को देख सकते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज शिलोंग मेघालय प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। जिन विभागों में रिक्तियां उपलब्ध हैं उनके नाम हैं एनेस्थीसियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कार्डियोलॉजी, CTVS, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनोकोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, पैथोलॉजी, पेन पैलिएटिव, फार्माकोलॉजी, रेडियो डायग्नोसिस और इमेजिंग, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, टीबी और रेस्पिरेटरी डिजीज, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन और ब्लड सेंटर तथा यूरोलॉजी। आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं इस ईमेल पर arstti@neigrihms.gov.in। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट edu.easbuzz.in। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए आप चाहें तो फोन कर सकते हैं। फोन नंबर है 03-64, इसके बाद डायल कीजिए 253-8020 या 253-2915। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार श्रोताओ, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ उनके पास खास। इसके अलावा खेल जगत की गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि या जयंती। तो श्रोताओं, परिक्रमा के संग के साथ आज मैं हूं मुकेश।

0: और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी सायरा मुश्तबा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार मुकेश, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। हसबी दस्तूर लाए हैं आपके लिए ताज़ा तरीन खबरें, और मुकेश ने बता ही दिया है क्या कुछ होगा। ऑफ कोर्स लाइक एवरी अदर डे वी ब्रिंग यू द लेटेस्ट फ्रॉम द कंट्री, एंड ऑफ कोर्स इज द नेम ऑफ द शो इज परिक्रमा, तो जाहिर सी बात है देश के कोनों कोनों में जाएंगे, देखेंगे व्हाट इंटरेस्टिंग स्टोरीज आवर कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैव फ्रॉम देयर। ऑल ऑफ दैट इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर और सो। लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस फर्स्ट। India lodges strong protest against Pakistan over Kashmir issue at UNSC, accuses Islamabad of misusing its position as co-chair.
0: ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी।
1: IMD issues red alert for very heavy rainfall over Konkan and Goa today. Assam on high alert after heavy rain accompanied with flash floods hit parts of Arunachal Pradesh.
0: हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की घोषणा की।
1: एंड इन फीफा वर्ल्ड कप कोलंबिया क्वालिफाइज फॉर राउंड ऑफ 32 आफ्टर बीटिंग डीआर कांगो 1-0 इन मेक्सिको टुडे। And now, as always, that we start our show with our special segment, Dateline India, where we talk about some important topics that take place at the national or global level. And today, we will talk about a very, very important topic, especially agar dekha jaye, Mukesh, aajkal ki bhag daur ki zindagi mein, ye bahut zaruri hai to remind us that this is the self-care month. Log jo hai, apni hi fikr nahi karte, dusro ki itni fikr rehti hai.
0: Bas dusro ki fikr mein hi apna sara kharch kar dete.
1: राइट right, चाहे वो आपकी इमोशनल हेल्थ हो, चाहे यू नो मेंटल हेल्थ हो, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक विद इन एंड प्लीज फोकस ऑन योर ओन सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इट्स अ रिमाइंडर दैट टेकिंग केयर ऑफ आवर सेल्फ इट्स नॉट अ लग्जरी, इट्स अ डेली कमिटमेंट टू आवर इमोशनल मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग।
0: जी हाँ, 24 जून से सेल्फ केयर मंथ यानी स्व देखभाल का महीना शुरुआत हो रही है जो 24 जुलाई तक चलेगा, और सेल्फ केयर डे जो 24 जुलाई को मनाया जाता है तब तक चलेगा।

0: एब्सोल्युटली हम हैं नए अंदाज क्यों हो पुराना, एंड खासतौर से अपनी केयर करने का तो अंदाज हमेशा हर दिन हर वक्त नया ही होना चाहिए. दैट्स एन इंटरेस्टिंग रीजन बिहाइंड दैट डेट. वेल नंबर्स 24 एंड 7 सिंबलाइज द आइडिया दैट सेल्फ केयर कैन एंड शुड बी प्रैक्टिस्ड 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक. एंड दिस ईयर्स थीम इज सेल्फ केयर पुट्स योर हेल्थ इन योर हैंड्स. टेस्ट ट्रैक एंड थ्राइव. Test, which means that when you need a baseline to help maintain and improve your health and well-being, you need a clear picture of where you are now. So it's very important, especially in our Indian society. बहुत अजीब सी चीज देखते हैं हम लोग मुकेश, कि हम लोग को जब तक कोई मर्ज होता नहीं है, हम लोग अपना कोई
1: हम ये समझते हैं कि हम सही हैं
0: और कोई टेस्ट नहीं करवाते.
1: पहले कतई नहीं करना जी.
0: Yes, so it's very important that you know you get yourself tested regularly of all the you know vital things that are happening in our own body, and of course then track up, you know, once you get the results, then you need to track ki aapki kahan deficiency ho rahi hai, especially Delhi mein ya big metros where people are living in apartments.
1: Jee.
0: They don't have much exposure to sunlight. So 90% people have deficiency of vitamin D. To ye to bahut zaruri hai ki aap track kariye. Vitamin D ka to maine sirf ek example diya, be it blood sugar, be it blood pressure, anything, but you need to first test, then track, and of course then take the adequate steps so that you can thrive, that is you can live with confidence and watch your health bloom.
1: बिल्कुल, सेल्फ केयर मंथ यानी स्व देखभाल का

0: ना स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने, सेहतमंद अपना आदतों को अपनाने और हर किसी को अपनी भलाई की भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करने का एक वैश्विक अवसर है। हम अक्सर सेल्फ केयर शब्द सुनते तो हैं, लेकिन असल में इसका क्या मतलब होता है वो आपको बताएंगे।
1: वेल, सबसे पहले तो लाइक इन लेमैन्स लैंग्वेज आई वुड से दैट आप अगर अपने बारे में सोच रहे हैं तो यू नो सम हाउ इन आवर सोसाइटी अगेन आई वुड से दैट स्पेशली वंस यू बिकम पेरेंट्स, बी इट फादर और मदर, उनको ऐसा पिडेस्टल पे हम लोग रख देते हैं कि मतलब बस वो सिर्फ सैक्रिफाइस की मूर्त बन जाए, बट वी ऑब्वियसली
0: अपने लिए ना तो समय निकाल पाते हैं और ना ही ध्यान दे पाते हैं,
1: विच इज वेरी bad. And you won't believe Mukesh that you after like you know having two children myself, I could not go to on a vacation for many you know for Ji. these 5 years. And then when I actually got a chance when I was on a professional assignment, then after the professional assignment I told that you know I'm going to stay there for two extra days.
0: Bilkul.
1: You know, to wo do din sirf hum akele ek beach cottage book kiya and I lived there, and people might think that oh what kind of a mother she is, she has left her two kids behind, but that's I was doing exactly for them because आप देखिए जो औरतें सो कॉल 24 घंटा सिर्फ केयर में दूसरों की लगी रहती हैं,
0: बिल्कुल,
1: वो
0: बिल्कुल.
1: कितनी चिड़चिड़ी हो जाती हैं।
0: वही वही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप केयर कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आप ही सही नहीं होंगे, आप ही स्वस्थ नहीं होंगे, तो आप दूसरों की देखभाल कैसे कर पाएंगे?
1: Exactly.
0: इसलिए पहले अपनी देखभाल जरूरी है, उसके बाद दूसरों की।
1: एब्सोल्युटली। एंड समटाइम्स यू नो वी फील दैट यू नो अगर सर्दी है, खांसी है, बुखार है, तभी केयर करो। नो, बिकॉज इफ यू डू थिंग्स दैट एक्चुअली you know nourish your soul, for example traveling, for example reading or listening to music, anything that you like, wo phir aapki personality mein jhalakta hai, then you are happy always, and you know aura of happiness, other automatically you know others also get happy when they see you. I have personally experienced that, so it's very important that you know you pay attention to this kind of self care. And jaisa ki gana hamari editor sahiba ne select kiya tha, the zamane khud aap thokar pe rakhiye, aap mat sochiye, don't carry anybody's opinion to your head that you know what people will think if you are taking care of yourself. Let that thing, but what you need is to actually focus on yourself. And agar aapne iska jo maine puche the self care ke aakhir maine kya hain, to humne to layman's language mein bataya, but according to WHO, the World Health Organization, self care is the ability of individuals, families and communities to promote and maintain health, prevent disease and cope with illness or disability with or without the support of a healthcare worker.
0: जी हाँ, क्या खुद का ख्याल रखने का मतलब केवल स्पा डे और छुट्टियां बिताना ही होता है?
1: नॉट एट ऑल. While relaxation is important, so it's yes, indeed it is important to have a spa day and have vacations, but it's not limited to that. Self-care also includes eating nutritious food, staying physically active, getting enough sleep, managing stress, and seeking help when needed. In an increasingly hectic world, the concept has emerged as a crucial element in maintaining overall well-being. Defined as the practice of taking an active role in protecting one's own health, self-care encompasses a wide range of activities that nurture both the body and the mind.
0: जी हाँ, mindfulness, exercise और relaxation technique से लेकर physical fitness और healthy खानपान की आदतें स्व देखभाल को प्राथमिकता देने वाले कई और बड़े फायदे भी इससे मिलते हैं। जरा अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या के बारे में सोचिए, अपनी देखभाल के लिए आप कौन सी एक चीज करते हैं? क्या ये टहलना है, किताब पढ़ना है या कॉफी पीना है? मैंने सेल्फ केयर इंटरवेंशन शब्द भी सुना है, आखिर ये क्या होते हैं?
1: दैट्स राइट, बट ये भी जरूरी है कि यू नो जो आप समय निकाल रहे हैं खुद का ख्याल रखने के लिए, वो बहुत जरूरी है, और वो क्यों जरूरी है?
0: जी हाँ, तो अब बात करते हैं कि आज के समय में स्व देखभाल इतनी जरूरी क्यों है। असलियत यह है कि दुनिया भर में स्वास्थ्य प्रणाली की बड़ी चुनौतियां सामने आ रही हैं। अरबों लोगों के पास अब भी जरूरी स्वास्थ्य सेवा तक नहीं पहुंच पाती है, और कई देशों में स्वास्थ्य कर्मियों की बहुत भारी कमी है।
1: दैट्स राइट, एंड इफ यू ऐड टू दैट सो मेनी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, क्लाइमेट रिलेटेड इमरजेंसीज, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड हेल्थ इमरजेंसीज लाइक कोविड दैट हैपेंड, एंड दैट पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन हेल्थ केयर सिस्टम्स, एंड ऑफ कोर्स दैट बिकम्स इवन ग्रेटर इन सच।
0: बिल्कुल, और यहीं पर स्व देखभाल अपनी प्रमुख भूमिका निभाती है। लोगों को अपनी सेहत के बारे में सही

0: प्रोत्साहित करें, साथ मिलकर हम ज्यादा स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं।
1: एंड मुकेश, ये तो हम लोग ने बात कर ली सेल्फ केयर मंथ की, एंड अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर सेगमेंट डेडलाइन इंडिया इज दैट इट्स पासपोर्ट सेवा दिवस। यस, वी आर ऑब्जर्विंग पासपोर्ट सेवा दिवस टुडे, अ डे दैट सेलिब्रेट्स द जर्नी ऑफ मेकिंग पासपोर्ट सर्विसेज मोर एक्सेसिबल, इफिशियंट and citizen friendly, while commemorating the enactment of the Passports Act on 24th of June 1967.
0: जी हाँ, पासपोर्ट केवल यात्रा के एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि दुनिया भर में अवसरों, संपर्कों और अनुभवों का एक जरिया है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस पर हम उन सभी प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं जो इस जरिए को ये हर नागरिक के लिए सुलभ बनाते हैं।
1: From bustling cities to remote corners of the country, passport services are reaching citizens like never before. Today on Passport Seva Divas, we've recognized the strides made in delivering faster, smarter and more accessible services to all.
0: और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस अवसर पर कहा है कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम का दूसरे चरण की शुरुआत चिप इनेबल्ड ई पासपोर्ट लाना, नए पासपोर्ट सेवा केंद्र और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलना तथा रिकॉर्ड संख्या में पासपोर्ट जारी करने से यात्रा करना आसान हो रहा है और लोगों की वैश्विक पहुंच भी बढ़ रही है और नागरिक सशक्त हो रहे हैं।
1: That's right, and Dr. Jayashankar also reaffirmed the government's commitment to keep making passport services delivery faster, more transparent and accessible, guided by the vision of सुरक्षित पासपोर्ट, सुगम सेवा, सशक्त नागरिक।
0: और आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम परिक्रमा, मुकेश कुमार और सायरा मुश्ताबा के साथ। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। इस क्रम में सबसे पहले कहां चलें?
1: मेरी फेवरेट जगह गोवा चलिए मुकेश।
0: जी, गोवा चलते हैं। तो गोवा में आज साओ जुआओ पर पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। सेंट जॉन द बैप्टिस्ट के जन्मदिवस पर मनाए जाने वाले इस पारंपरिक कैथोलिक पर्व में लोग धार्मिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं और अपनी अनोखी परंपराओं के जरिए खुशी मना रहे हैं। तो सुनते हैं रिपोर्ट।
2: साओ जुआओ गोवा के सबसे लोकप्रिय पारंपरिक त्योहारों में से एक है। हर साल 24 जून को मनाया जाने वाला यह पर्व संत जॉन द बैप्टिस्ट को समर्पित है। राज्य के कई गांवों और कस्बों में आज सुबह से ही उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है। इस मौके पर लोग फूलों और हरी बेलों से बने रंग बिरंगे मुकुट, जिन्हें कोपिल कहा जाता है, पहनकर जुलूसों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। पारंपरिक गीतों और संगीत के बीच युवा कुओं, तालाबों और अन्य जलाशयों में छलांग लगाकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। यह परंपरा संत जॉन से जुड़ी एक धार्मिक मान्यता का प्रतीक मानी जाती है। बारदेश के सियोलिम गांव में आज पारंपरिक नामों की झांकियां लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। वहीं सालीगांव और अन्य गांवों में सामूहिक भोज, संगीत और नृत्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक इन कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। साओ जुआओ पर्व मानसून के स्वागत और अच्छी बारिश की कामना से भी जुड़ा हुआ है। धार्मिक आस्था, लोक परंपरा और मानसून की उमंग का यह अनोखा संगम गोवा की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है और हर साल बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। परिक्रमा के लिए निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: और समुद्र की लहरों से अब चलते हैं पहाड़ों की ऊंचाइयों पर।
1: राइट, लेकिन मिजाज नहीं बदलेगा बिकॉज अभी पहाड़ों के भी फेस्टिवल की बात करने वाले हैं। इन लद्दाख द एनुअल मोनेस्टिक फेस्टिवल ऑफ हेमेस मॉनेस्ट्री इज बीइंग सेलिब्रेटेड टुडे। द मोनेस्टिक फेस्टिवल इज स्पिरिचुअल, इट्स अ स्पिरिचुअल इवेंट एंड मार्क्ड विद प्रेयर्स एंड सेक्रेड मास्क डांसेस बाय द बुद्धिस्ट मंक्स ऑफ द मोनेस्ट्री। Hemis Monastery has been observing the monastic festival every year in honor of Guru Padmasambhav, who is famous as the Indian mystic and tantric master from Nalanda University and introduced Vajrayana Buddhism in Tibet and Greater Himalayas. Our lay correspondent has filed this report.
3: Hemis Theshu is a spiritual festival celebrated in honor of birth anniversary of Guru Padmasambhava, the great Buddhist master of 8th century. Every monastery in Ladakh celebrated a spiritual event to promote harmony, dedicated to deities and perform rituals to ward off negative energies and sacred mask dances. This year, Hemis Theshu festival will be recorded as a special as well as historic monastic festival in Ladakh, as for the first time in 350 50 years of history of

0: जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदिम शिलेमा चानू टीम की कमान संभालेंगी और निधि तथा एंजिल हर्षारानी मिंज को गोलकीपर की जिम्मेदारी दी गई है।
1: And now time for business news. Well, benchmark domestic equity indices rose around 1% today, supported by lower crude oil prices and value buying. Sensex climbed 791 points to close at 76,991. Nifty added 198 points to settle at 24,022. For more updates about market activities, tune into Akashvani's bilingual program, Market Mantra, at 6:30 this evening.
0: और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
2: वी रिमेम्बर नेशनलिस्ट हिस्टोरियन विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े, हु वाज बोर्न ऑन द 24th of June 1863 इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। पॉपुलरली नोन एज इतिहासाचार्य राजवाड़े, विश्वनाथ इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फर्स्ट हिस्टोरियंस टू अंडरटेक एन इमेंस रिसर्च ऑफ ग्लोरियस मराठा हिस्ट्री बाई विजिटिंग हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑल ओवर इंडिया। विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई स्कॉलरली टीचर्स लाइक रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, विष्णु शास्त्री कृष्ण शास्त्री चिपळूणकर, लेक्सिकोग्राफर परशुराम तात्या गुडबोले एंड काव्य इतिहास संग्रहकार साने। हाउएवर, ही वाज अ बिग क्रिटिक ऑफ द मॉडल ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया व्हिच अकॉर्डिंग टू हिम डिड नॉट हेल्प ओरिजिनल थिंकिंग और रिसर्च।
3: राजवाड़े डिड नॉट सीक ब्रिटिश एम्प्लॉयमेंट व्हिच ही कंसिडर्ड वाज इनडायरेक्ट स्लेवरी। He started translating world classics in Marathi and started a monthly called Bhashantar. Through the magazine, he brought works of Western philosophers and scholars such as Plato, Aristotle and Edward Gibbon and also Indian scholars like Shankaracharya in Marathi.
2: Rajwade was a rare combination of a researcher, history grammarian, social scientist and etymologist. He was unhappy with Maratha history books written by British historians that tried to establish conqueror's view of subjugated people. Rajwade wanted to present an unbiased point of view. To this end, he toured the whole of Maharashtra region and studied art, architecture, iconography, social life, language, literature, customs and folk traditions of the region. He published 22 volumes of Marathancha Itihasachi Sadhane, Sources of the History of Marathas.
3: He got the oldest commentary on Gyaneshwari and brought out its earliest grammatical form. He edited Radha Madhav Vilas Champu by Jayaram Pindye, dating to Chhatrapati Shivaji's father's time, which has special bearing on the history of contemporary Karnataka. He explored etymology, the study of the origin of words, and discovered several old rituals and practices.
2: In 1910, Rajwade founded Bharat Itihas Sanshodhak Mandal at Pune and kept all his works and historical papers in the custody of the Mandal. A sage-like scholar known for austere habits and long hours of work and incessant travelling, Rajwade died on the 31st of December 1921. Salutes the great nationalist. We also remember Martyr Ranjit Singh, who was born on the 24th of June 1924 at Ludhiana, Punjab. Initially, Singh served in the British Indian Army but joined the Indian National Army in 1942 in Singapore and served as sepoy in the Gandhi Brigade. Ranjit Singh confronted the Allied forces in Arakan, Myanmar and died fighting them in 1944.
3: We also remember Kamruddin Khan, who participated in the First War of Indian Independence.
2: Khan was captured by company troops in the course of their attacks and put on trial for aiding and abetting the rebellion against the British. He was sentenced to imprisonment for 10 years with hard labor in iron. Kamruddin Khan died in captivity on the 24th of June 1859 in the Andaman Islands. We salute the brave son of the soil.
0: और अब हम याद कर रहे हैं गोंडवाना की शासक रानी दुर्गावती को, आज उनकी पुण्यतिथि है। वो भारतीय इतिहास की सर्वाधिक प्रसिद्ध रानियों में से गिनी जाती हैं। दुर्गावती ने 16 वर्ष तक जिस कुशलता से राज संभाला उसकी प्रशस्ति इतिहासकारों ने की है। आईने अकबरी में अबुल फजल ने लिखा है कि दुर्गावती के शासनकाल में गोंडवाना इतना सुव्यवस्थित था और समृद्ध था कि प्रजा लगान की अदायगी स्वर्ण मुद्राओं और हाथियों से किया करती थी। उनकी

0: और अब हम याद कर रहे हैं प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित श्रद्धाराम शर्मा को। उनको श्रद्धाराम फिलौरी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन उन्हें एक ज्योतिष के रूप में उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जो उनके द्वारा लिखी गई अमर आरती ओम जय जगदीश हरे के कारण मिली। संपूर्ण भारत में पंडित श्रद्धाराम शर्मा द्वारा लिखित ओम जय जगदीश हरे की आरती गाई जाती है। श्रद्धाराम शर्मा जी ने इस आरती की रचना 1870 में की थी। पंडित जी सनातन धर्म प्रचारक, ज्योतिष, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और संगीतज्ञ होने के साथ साथ हिंदी और पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार भी थे।
1: And well, today is the birthday of Leo or Lionel Messi and Mukesh. FIFA तो already चल रहा है, तो
0: उन्होंने अभी हाल ही में रिकॉर्ड भी बनाया है, विश्व कप में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए।
1: Yes, absolutely. So all the more reason to celebrate his birthday with a lot of fervor. Why not pay him a tribute with the FIFA's theme song?

0: और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुकेश कुमार और सायरा मुश्तबा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिकार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक की आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और यूएई के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृहमंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। श्री शाह इस अवसर पर मादक पदार्थ नियंत्रण के लिए वर्ष 2026 से 2029 के लिए दृष्टि पत्र जारी करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि यह कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। प्रवर्तन निदेशालय गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलो मादक पदार्थ आयात से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शमसुद्रून और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था।

हेलो हेलो हेलो हेलो माय स्वीट फ्रेंड्स, स्वीटी पाइज, कुची कू। अगर आप खुश हैं तो जिंदगी उत्तम है, और अगर आपकी वजह से लोग खुश हैं तो जिंदगी सर्वोत्तम है। तो फिर हम तो इसी कैटेगरी में आते हैं, सभी आरजेस है ना, आपकी जिंदगी को खुशहाल बनाते हैं। गाते गुनगुनाते गुजरे ये सफर, कहाँ जा रहे हैं? वापस घर जा रहे हैं, शॉपिंग को जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं, कुछ तो बताएं। गाते गुनगुनाते में आज आपके साथ हैं हम, रूमी मलिक।

गाते गुनगुनाते का सफर जारी है आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आपके साथ है हम रूमी मलिक। हाँ जी, कैसे हो जाता है प्यार बताओ? कोई फॉर्मूला है मैथ्स का जो आज तक एक्सप्लेन कर पाया? इतने बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हैं सिगमंड फ्रॉयड, तो उन्होंने एक बार एक जांच करी व्हाट विमेन वांट, है ना, कि स्त्रियां आखिर चाहती क्या है। 30 साल रिसर्च शोध करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं इस कॉन्क्लूसिव डिसीजन पे नहीं पहुंच पाया कि व्हाट विमेन वांट, ये बात सच है। तो उसी तरह से प्यार के लिए भी आप देखिए रिसर्चेस होती रहती है। अब कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मिलाते रहो, प्यार प्रयोगशाला नहीं है, है ना।

0: तो ये कहेंगे कि हृदय में कुछ कुछ होता है, वो कोई बता नहीं सकता। दो दिलों के बीच में जो भी होता है ना, एक केमिस्ट्री होती है। अब उसको आप साइंटिस्ट अगर करें कि फलाना हार्मोन एक्स और वाई और ये और वो, क्या क्या क्या क्या नहीं, लेकिन कुछ होता है ना। शायद पूर्व जन्म का कुछ ऐसा कुछ रह गया होता है, या ईश्वर प्रदत्त कुछ होता है। कोई ऐसी सत्ता तो है, जरूर है, जिसे मोहब्बत होती है। और अजनबी अपना अपना लगने लगता है ना।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

नई गाते गुनगुनाते सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर 100.1 मेगाहर्ट्ज। आपके साथ हैं हम रूमी मलिक। सुरूर में है, क्या करें, सुरूर भी है गुरूर भी है अपनी आकाशवाणी पे। हमें इतने अच्छे अच्छे गाने सुनने मिलते हैं भाई, प्यार ही प्यार से सराबोर है हमारा संसार आज, है ना। एटलीस्ट इस टाइम तक, 6 बजे तक जब तक मैं हूँ तब तक तो है। लेकिन प्यार करने के लिए कई बार आपने देखा है लोगों को कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, क्योंकि वो प्यार को सिर्फ ये चीज़ मान लेते हैं कि मैं एक शरीर हूँ। अब आपको क्या लगता है कि अगर आपके शरीर का रंग या वजन या कुछ भी बाल, जब तक वो परफेक्ट नहीं होंगे हिंदी फिल्म के हीरो हीरोइन जैसे, आपको प्यार नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आजकल तो बहुत ही कमाल कमाल के कॉन्सेप्ट्स निकल के आए हैं, है ना। एक उनमें से है सेल्फ लव, अपने आप से प्यार। अब अपने आप से प्यार का ये नहीं मतलब है कि इसमें अहंकार आ जाए। देखो, अभिमान और स्वाभिमान में बहुत फर्क होता है, लेकिन ईश्वर ने जो भी आपको दिया है उसमें संतुष्ट रहें, उसे बेहतर बनाने की कोशिश करें, है ना। कितना ज़्यादा चलन है बालों को सीधा करवाने का। मेरे बाल वेवी हैं, है ना, घुंघराले कह सकते हैं, कुंचित केसा जैसे लिखते हैं ना। मेरे एक फ्रेंड थी, वो कहती थी कृष्ण भगवान की तरह तेरे बाल हैं लच्छेदार। तो मुझे कभी भी इच्छा हुई नहीं कि मैं अपने बाल सीधे करा लूँ या स्ट्रेट करा लूँ। मैं बहुत खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। जब आप अपने आप से प्यार करेंगे ना और अपने आप को स्वीकार करेंगे, तभी सामने वाला आपको उसी रूप में स्वीकार करेगा। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एक्सरसाइज ना करो या अपना ख्याल ना रखो, सब करो। सेल्फ केयर में वो सब चीज़ आती है, बालों को तेल लगाना, शैम्पू करना, है ना, डेंटिंग पेंटिंग जिसे मैं हंस के कहती हूँ, वो सब ज़रूरी है। लेकिन अपने आप में संतोष करो और अपने आप को एक शरीर नहीं, एक आत्मा के रूप में देखो कि देखो मैं कितनी सुंदर आत्मा हूँ, मेरे मन में सुंदर विचार हैं, कोमल विचार हैं, तो ज़रूर मुझसे प्रेम करने वाला कोई आएगा। और आपका इंतज़ार खत्म होने को है।

0: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ, दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
1: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
2: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
1: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
3: 3 से 5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
4: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
5: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
4: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
5: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

गाते गुनगुनाते का सफर वहीं चलता रहे। अच्छे अच्छे गाने सुना रहे ना हम आपको, है ना। जब मोहब्बत होती है, प्यार होती है ना, तो धूप में भी साया सा लगता है। वो गाना नहीं है, याद है हसन जहांगीर का, हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, है ना। तो उसमें वो एक लाइन है ना, जिंदगी की धूप को साया कर गई। साया सब माया है, सब मोह माया है, पर क्या करें, यही संसार प्रपंच में हमको रहना है, है ना। तो हमें गाना गाना है, खाना खाना है, गाता है गुनगुनाना है। तो अब सुनते हैं यही गीत, है ना, कि किस तरह से मेरी मोहब्बत हर तरफ फैल जाती है, प्रकृति में भी मुझे एहसास दिलाती है कि आहा, हर तरफ छांव है, हर तरफ मेरे अपने हैं, हर तरफ मोहब्बत छाई हुई है।

गाते गुनगुनाते यूं ही सफर चलता रहे। वाकई आकाशवाणी एफएम गोल्ड का सफर तो चलता ही रहेगा, पर अब आखिरी पेशकश गाते गुनगुनाते की आपके लिए कौन सा गीत रखें। जब आप अपने आप से भी प्यार करने लगेंगे ना, तो फिर आप अपने लिए तैयार होना सजना शुरू करेंगे। गीत पुराना हो गया, सजना है मुझे सजना के लिए, लेकिन अब आपको खुद अपने लिए भी तैयार होना है, सजना है, सवरना है, अपने आप से मोहब्बत करनी है। अपने आप से मोहब्बत करेंगे तो जो सामने वाला होगा उसी रूप में आपको स्वीकार करेगा। सबसे पहले अपने आप को स्वीकार कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम रूमी मलिक लेते हैं आपसे इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया हमें सुनने का। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर जुड़े रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जैमिसिन ग्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्रिपुरा में 96 सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 211 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना से राज्य में 160 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण होगा। इन परियोजनाओं से राज्य की 96 बस्तियों को पहली बार हर मौसम में सुगम सड़क संपर्क प्राप्त होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया है कि ये कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई कल शुरू की गई। ये जांच राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के कथित उल्लंघन के मामले में की जा रही है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला में आज निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। घायलों का एसएसकेएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए दुर्घटना स्थल पर हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं तथा स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वाल्सा विलियम्स। In West Bengal, rescue operations have started after an under-construction godown collapsed, trapping workers beneath heavy iron debris near Taratola in Kolkata today. Three people were declared dead at the SSKM hospital and the injured are being treated there. Chief Minister Shubhendu Adhikari reached the spot. State Ministers Agnimitra Paul and Dr. Indraneel Kaur also reached the accident site to assess the situation. Teams of the National Disaster Response Force, police, fire and emergency services and the Indian Army are engaged in search and rescue operations. Several workers are feared to be trapped beneath the debris. The State Secretariat, Nabonno, has issued helpline numbers to assist those affected by the mishap. The helpline numbers are 1070-869-798-1070, 033-2214-3526 and 033-2253-5185. India has strongly objected to Pakistan raising the Kashmir issue at a United Nations forum, accusing Islamabad of politicizing the platform.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। 24 जून की सुहानी शाम है, आप यकीनन ऑफिस से अपने घर की ओर जा रहे होंगे, तो आइए जुड़ जाइए हमारे साथ और लुत्फ उठाते हैं सदाबहार गीतों का। पहला गीत लिया है हमने फिल्म हमजोली से, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में आपके लिए।

आशा भोसले और महेंद्र कपूर के गाए फिल्म आदमी और इंसान की इसी गीत के साथ ही सदाबहार गीतों का ये सफर यहीं तक, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। फिलहाल इस चैनल पर अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार और उसके बाद मार्केट मंत्र।

0: अथ वार्ताः विस्तरेण भारतेन संयुक्तराष्ट्रसंघस्य एकस्मिन् मञ्चे पाकिस्तानदेशेन कृत काश्मीर विषयकचर्चायां दृढतया आक्षेपः प्रकटितः। इस्लामाबादः अस्य मञ्चस्य राजनीतिकरणम् अकरोत् इति आक्षेपोऽपि कृतः। अपि च सः अध्यक्षत्वेन स्वस्थानस्य दुरुपयोगाय अपि भारतेन कट्वालोचिता। न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र संघस्य भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिना पी हरीशेन पाकिस्तानस्य स्थायी प्रतिनिधि द्वारा असीम इफ्तिखार अहमद इत्यस्य वक्तव्यस्य प्रतिक्रिया रूपेण एषा टिप्पणी कृता।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: पाकिस्तानात् हस्तक्षेपस्य प्रतिक्रिया रूपेण श्रीहरीशः सह अध्यक्षस्य आचरणस्य निन्दाम् अकरोत्। जम्मू कश्मीर विषये भारतस्य दीर्घकालस्य स्थितिं पुनरुद्घाटयच्च भारतीयः राजदूतः संयुक्तराष्ट्रसंघस्य अशीति संरचनायाः अन्तर्गतस्य संयुक्तराष्ट्रसंघस्य आदेशानां वर्तमान समीक्षायाः विषये अपि अवदत्, यस्योद्देश्यं सम्पूर्ण संस्थायां कार्यक्षमतां वर्धयितुमस्ति। ईरान देशस्य परिष्कृत सुरक्षा स्थितिं वीक्ष्य तेहरान स्थित भारतीय दूतावास पक्षतः भारतीय नागरिकाणां कृते एकः संशोधितः सुरक्षा परामर्शः निर्गतः। देशस्य सकारात्मक परिवर्तनानि सामान्य स्थितिं च अवलोक्य दूतावासेन नागरिकाः ईरान प्रवास विषये विचारं कर्तुं सूचिताः, किन्तु साकमेव अग्रिम सूचना पर्यन्तं अनावश्यक यात्रां वर्जयितुम् अपि उपादिष्टम्। परामर्शानुसारं ये भारतीयाः सम्प्रति ईराने निवसन्ति अथवा केनापि अनिवार्य कारणेन तत्र गच्छन्तः सन्ति तेभ्यः उच्चस्तरीय अवधानतायाः वर्तितुं सतर्कं भवितुं तथा च परिस्थिति अनुकूल जागरूकतां धारयितुं निर्देशः प्रदत्तः। दूतावासेन सर्वे भारतीय नागरिकाः शीघ्रातिशीघ्रं दूतावासे स्वविवरणं पञ्जीकर्तुम् अपि निर्दिष्टाः। आपत्काले साहाय्यार्थं दूतावासेन एताः दूरभाष संख्याः निर्गताः। संख्या अस्ति 9891210115 9891210119। नागरिकाः cons.tehran@mea.gov.in इति ईमेल संकेते संपर्कं कर्तुं शक्नुवन्ति। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य वर्तमान वैश्विक समाह्वानानां मध्ये भारत दक्षिण कोरिया देशयोः संबंधस्य सुदृढीकरणस्य महत्वं प्रतिपादितवान्। सः अवदत् यत् समान मूल्यवन्तः तथा परस्पर विश्वासयुताः देशाः सम्प्रति इतोपि निकटेन सहकार्यं कुर्युः। शियोलद नगरे दक्षिण कोरियायाः विदेशमन्त्रिणा चो हुन इत्यनेन सह प्रवृत्तायां चर्चायाम् आरम्भिक भाषणे तेन प्रतिपादितं यत् वर्तमान अन्ताराष्ट्रिय स्थितिः विश्वसनीय सहयोगिनां मध्ये परस्पर सहयोगम् अनिवार्यं करोति।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: सामाजिक अन्तर्जालीय माध्यमे एकेन सन्देशेन विदेश मन्त्रिणा सूचितं यत् उभौ द्वयोः देशयोः मध्ये राजनीतिक व्यापार निवेश रक्षा प्रौद्योगिकी स्वच्छ ऊर्जा संस्कृति परस्पर जनसम्पर्कमित्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोगस्य समीक्षां विहितवन्तौ। अनेन सहैव नवाचारः वित्तीय प्रौद्योगिकी तथा च बहुपक्षीय मञ्चेषु उपलब्ध अवसरेषु अपि विस्तरेण चर्चा समजायत। तौ स्वस्व क्षेत्रस्य तथा च वैश्विक विकासस्य परिदृश्ये अपि विचाराणाम् आदान प्रदानं कृतवन्तौ। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति।

0: केन्द्रीय आवास एवं नगरीय कार्य मंत्री मनोहर लाल अद्य राष्ट्रीय राजधान्यां सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर इत्यस्य कृते केन्द्रीय सचिवालय मेट्रो स्थान के निर्माण कार्यस्य औपचारिकम् उद्घाटनं कृतवान्। वार्ताहरैः सह संवादे मंत्री इमं क्षणम् ऐतिहासिकम् इति वर्णितवान्। तेन प्रख्यापितं यत् इयं परियोजना सर्वकारीय कर्मचारिणां अन्येषां च सर्वेषां वृत्तिजीविनां कृते दैनिक गमनागमनम् अत्यन्तं सुगमं सुव्यवस्थितं च करिष्यति, येन सम्पूर्ण देहली क्षेत्रे यात्रा इतोपि सरला क्षिप्रा कार्यकुशला च भविष्यति।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है, जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा, और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग, उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए आजमी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर 9 स्टेशन्स है।
0: भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य कोंकण गोवा प्रदेशयोः अतिवृष्ट्यै रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। आगामि दिनद्वयोः तटीय कर्णाटक राज्ये मध्यप्रदेशे च एतादृशी स्थितिः भवितुमर्हति। अस्य मासस्य 31 दिनांकपर्यन्तं मेघालये, आन्तरिक कर्णाटके, ओडिशायां, तेलंगानायां, पश्चिमबंगप्रदेशे, सिक्किमराज्ये च प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यति इति ऋतुविभागेन पूर्वानुमानं प्रकटितम्। ऋतुविभागेन दिल्ली, हरियाणा, चण्डीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख इत्येतेषु प्रदेशेषु शनिवासर पर्यन्तं मेघगर्जनेन विद्युद्योतनेन सह झंझावातस्य च पूर्वानुमानं कृतमस्ति। अंडमान निकोबार द्वीपेषु, आंध्र प्रदेशे, बिहारे, गुजराते, झारखंडे, केरलम राज्ये, माहे प्रदेशे, लक्षद्वीपे, मध्य प्रदेशे, महाराष्ट्रे, ओडिशायां, पश्चिमी उत्तर प्रदेशे च शनिवासर पर्यन्तं एतादृशी स्थिति अपेक्षते। हॉकी इंडिया संस्था अद्य आगामी यूनाइटेड किंगडम प्रवासार्थं 24 सदस्यानां कनिष्ठ महिला हॉकी दलस्य उद्घोषणाम् अकरोत्। अयं प्रवासः जुलाई मासस्य 5 14 यावत् प्रचलिष्यति। नूतन प्रशिक्षकस्य टिम वाइट इत्यस्य निर्देशने भारतीय दलं स्कॉटलैंड, इंग्लैंड देशयोः विभिन्न स्थानेषु 7 द्वन्द्वान् क्रीडिष्यति, यत् आगामि कनिष्ठ एशिया कप इत्यादि अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगितानां सिद्धतायै एक्सपोजर टूर रूपेण अस्ति। अस्य युवा दलस्य नेतृत्वं दलनायिका खैदेम सिलैमा चानू करिष्यति। अस्य वर्षस्य फीफा विश्वकप क्रीडायां कोलंबिया देशः अद्य मैक्सिको देशस्य ग्वाडलहारा नगरे ग्रुप के क्रीडायां डी आर कांगो देशं 1-0 इत्यनेन अंकेन पराजित्य राउंड ऑफ 32 इत्यस्मिन् प्रविष्टः। इतः पूर्वं संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य ह्यूस्टन नगरे ग्रुप के इत्यत्र पुर्तगाल देशः उज्बेकिस्तान देशं 5-0 पराजयत। इति वार्ताः।

0: Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena.
1: Namaskar. आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र के साथ हम हाजिर हैं। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार के हलचल पर नजर डालेंगे और चर्चा भी करेंगे। आज चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर एस पी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: जी शुक्रिया, थैंक यू।
1: और चर्चा शुरू करने से पहले हेडलाइंस लेके मौजूद हैं अर्जुन चौधरी।
0: Benchmark domestic stock market indices rise around 1%. Sensex gains nearly 800 points. Nifty settles about 24,000. Most Asian stock markets end on a positive note. And global crude oil prices decline around 3%.

0: शेयर बाजारों में लगभग 1% की बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स लगभग 800 अंक बढ़ा, निफ्टी 24,000 के पार चला गया। एशिया के अधिकांश शेयर बाजारों में तेजी का रुख रहा और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में लगभग 3% की गिरावट दिखाई दी।
1: And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
0: Aur aaj ki pehli khabar. घरेलू शेयर बाजारों में आज लगभग 1% की बढ़त दर्ज की गई। कच्चे तेल के मूल्यों में गिरावट और अच्छे शेयरों में खरीदारी के चलते ऐसा हुआ। सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। इससे पहले बाजार बिना किसी बदलाव के खुले और दिन भर सकारात्मक माहौल बना रहा। निवेशकों ने आईटी और वित्तीय सेवाओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों में खरीदारी की, जिसने सूचकांक को आगे बढ़ाने में मदद की।
1: Benchmark domestic equity indices rose around 1% today, supported by lower crude oil prices and value buying. A Sensex climbed 791 points to close at 76,991. Nifty also added 198 points to settle at 24,022. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 index gained 0.1% and the Small-Cap 100 added 0.4%. Earlier, the markets opened on a flat note and maintained a positive momentum throughout the session as investors accumulated shares in key sectors, particularly IT and financial services, helping the benchmarks close with gains.
0: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 23 कंपनियों के शेयरों में बढ़ोतरी दिखाई दी। अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में इंडिगो का शेयर 4.7%, ट्रेंट का शेयर 3.6% और टेक महिंद्रा का शेयर 3.2% से अधिक बढ़ा। दूसरी ओर एनटीपीसी के शेयर में 2.1%, टाटा स्टील के शेयर में 1.8% और मारुति के शेयर में 1.6% की गिरावट दर्ज की गई।
1: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 18 out of the 25 sectors ended in the positive zone. Among the key gainers, private banks climbed 2.2%, realty as well as services advanced more than 2.1%, and the top 10 banks added over 2%. In contrast, capital goods fell 1.9%, power shed almost 1.7%, and industrials lost over 0.9%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive, as shares of 2,215 companies advanced, 2,034 companies declined, and 181 companies remained unchanged.
0: और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर 94.66 रुपए पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 101.69 पर कारोबार कर रहा था। डॉक्टर शर्मा, आप क्या कहेंगे कि जैसे जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं थी कम होती जा रही है, पश्चिम एशिया में शांति की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो हमारा शेयर बाजार में वापस रौनक आ रही है?
2: जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि शेयर बाजार में अब बहुत अच्छी रौनक है, क्योंकि एक तो जो MOU हुआ स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेके, वो एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। चाहे अभी मैं कहूंगा कि जो एग्रीमेंट है वो, उसको हम इतना स्ट्रांग नहीं कहेंगे, अभी भी उसमें काफ़ी चैलेंजेस हैं, लेकिन जो ये MOU है फॉर 60 डेज, इसने एक बहुत ही पॉजिटिविटी जो है फाइनेंशियल मार्केट्स को दी है। उसमें हमारी मार्केट है, जैसे मैंने पहले भी कई बार बात की है कि हमारे लिए खाली जो चैलेंज है वो ग्लोबल अनसर्टेनिटी ही है, एक जो जियोपॉलिटिक्स चला हुआ है। अदरवाइज हमारे फंडामेंटल्स, हमारी इकोनॉमी बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं, और मैंने ये भी बताया था

0: तक बेहतर पहुंच, डिजिटल व्यापार, निर्बाध सप्लाई चेन, टैरिफ रहित बाधाओं में कमी और रणनीतिक क्षेत्रों में विस्तारित सहयोग पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। तो डॉक्टर शर्मा, जैसे आप कह ही रहे थे कि भारत और अमेरिका के बीच जिस तरह के डील पे बातचीत चल रही है और जल्दी उम्मीद है, उस दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल हमें दिखाई दे रही है।
1: जी बिल्कुल, बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं और मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में अगर ये डील अच्छे से हो जाती है, जल्दी हो जाती है, होनी तो है ही, लेकिन होगी भी पॉजिटिव, बट अगर इसका टाइम ट्रैजेक्टरी थोड़ा जल्दी सेटल हो जाता है तो हमारी इकोनॉमी, हमारा जो पर्टिकुलरली जो हमारे रूपी के ऊपर प्रेशर है वो भी स्टेबल होगा, उसका भी इस डील के बाद हमारे रूपी के ऊपर एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आने की संभावना है कि रूपी वापस एक स्टेबल ट्रैजेक्टरी में हमें आता दिखाई दे, क्योंकि रूपी के ऊपर इम्पैक्ट तब से ही आना शुरू हो गया था जब जो ट्रंप टैरिफ्स का जो अप्रैल में अनाउंसमेंट हुआ, जो बहुत ही नीजर्क एक रिएक्शन हुआ था जिससे कि मार्केट्स भी बहुत ही अनसर्टेन हुई थी, बहुत ही वॉलेटाइल हुई, जिसके बाद रूपी के ऊपर इम्पैक्ट आया। तो मैं समझता हूं कि जैसे मार्केट्स वापस रिबाउंड कर रही हैं तो रूपी भी वापस उसी तरीके से रिबाउंड आने वाले टाइम में करने की संभावना है।
2: Your comments on the US dollar index, it's crossed 100, it's at 101.69. The dollar is strengthening not only against the rupee but against all the major currencies in the world. How do you see that impacting our economy and the markets as well? And your comment on Nifty Bank, because that saw a bounce back of 1.5%. We read about value buying, but what is happening in the financial services and banking? Private banks went up by 2.2%.
1: Firstly, Arjun, this is very unique situation currently, as dollar is also strengthening and rupee is also strengthening and other currencies are also strengthening. So this is, I think, the positivity of all economies, like the US, they are also recovering from this crisis with this signing of MOU on the Strait of Hormuz. So dollar is now in a strong trajectory, more than 100. And rupee again rebounded significantly. And your banking stocks, I would say our fundamentals, particularly our inflation and our growth, these are totally balanced. Now you see the inflation of many advanced economies, they are higher than India. Earlier, emerging markets like India were high in inflation as compared with the advanced economies. They are less than 2% many of the times. But now they are more than 3%, like more than us also. Our inflation is 3.9%. They are hovering at around 4% also, some economies. So this is totally different situation as compared with last many years. So this is providing a great room for our banking and financial fundamentals, that our real rate of interest is still high in the many countries. We are higher than US, we are higher than EU, we are higher than many other advanced economies. So despite inflation challenges, our real rate of interest remains high. Despite we have not increased the repo rate, in that case also we are at a higher position.
0: और चलते हैं एशिया और यूरोप के बाजारों का हाल भी जान लेते हैं। एशिया के अधिकांश बाजारों में आज तेजी का रुख रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 3.3%, हांगकांग शेयर बाजार का हैंगसेंग इंडेक्स 0.3% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.2% बढ़ा। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में बढ़त 0.1% की रही। दूसरी ओर ताइवान के ताइएक्स में 2.2% और जापान के निकेई में 0.9% की गिरावट दर्ज की गई। यूरोप के प्रमुख बाजारों ने भी आज मिलाजुला प्रदर्शन किया। अंतिम समाचार मिलने तक जर्मनी के डैक्स में 1% की गिरावट, जबकि फ्रांस के कैक में 0.3% की बढ़त दिखाई दी। लंदन के फुटसी में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। डॉक्टर शर्मा, आप क्या कहेंगे, अक्रॉस हमें यूरोप से लेके और एशिया के लगभग सारे ही बाजारों में एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखाई दे रहा है?
1: जी बिल्कुल, हमने जैसे पहले भी बात की कि क्योंकि ये जो अभी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, जो अभी काफ़ी शिप्स जो है वो शुरू भी हो गए हैं

0: somewhere between 65 to 70 in the coming months. If the, if the Strait of Hormuz agreement continues.
1: Do you expect our petrol and diesel prices to come down?
0: Then definitely. Because now that will be, the pass-on effect will be very much strong in the coming time.
1: Let's have a look at the bullion market, where again values have come down. In the Indian bullion market, 24 karat gold was trading 1.7% lower at 1,44,330 rupees per 10 grams, while silver was trading 1.2% down at 2,23,470 rupees per kilogram a short while ago.
2: और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक अगस्त अनुबंध वाला सोना 1.8% घटकर 1,43,919 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध वाली चांदी 1.6% नुकसान के साथ 2,22,307 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही थी.
1: So spot market prices have come down. Futures saying it'll come down further. What is the valuation you expect for gold and silver in July and going to August?
0: Arjun, this is majorly because of the dollar strength. And I don't see that dollar will remain strong or above 100 for a long time. Dollar will correct again. And the prices are expected to rebound once again in the डॉलर गोल्ड एंड सिल्वर.
2: और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर. डॉक्टर शर्मा, इस कार्यक्रम में भाग लेने और महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
1: एंड बिफोर वी क्लोज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस, बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडस्ट्रीज राइज अराउंड 1%, सेंसेक्स गेन्स नियरली 800 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स अबाउट 24,000. Most Asian stock markets end on a positive note and global crude oil prices decline around 3%. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
2: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

0: ये आकाशवाणी है। अब आप मुकेश कुमार से समाचार सुनिए। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला में आज निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। घायलों का SSKM अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवा तथा स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा है कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वत नैनी ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत सेमिसन ग्रीन और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की

0: प्रशंसा की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक की। बैठक की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। श्री शाह इस अवसर पर मादक पदार्थ नियंत्रण के लिए वर्ष 2026 से 29 के लिए दृष्टि पत्र जारी करेंगे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्रिपुरा में 96 सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 211 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना से राज्य में 160 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण होगा। इन परियोजनाओं से राज्य की 96 बस्तियों को पहली बार हर मौसम में सुगम सड़क संपर्क प्राप्त होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई कल शुरू की गई। ये जांच राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फीमा के कथित उल्लंघन के मामले में की जा रही है। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। वहीं इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया हर्जेगोवना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले कल रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Three people have died after a devastating roof collapse of an under-construction godown at Taratala area of Kolkata today. Contact has been established with the trapped people inside the debris, and water and oxygen have been provided by the rescue team. Efforts are underway to rescue them. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari visited the spot and inspected the site. He informed the media a report would be prepared by the Kolkata Municipal Corporation on the incident. He said a detailed information would be provided involving the Taratala accident tomorrow in the assembly. In Arunachal Pradesh, heavy rainfall and flash floods have caused widespread damage today at Nipko Colony in Bosa Yazili and Cape and Yor district. Authorities are assessing the extent of the damage and further details are awaited. The district administration said a woman was initially reportedly missing, while the latest reports indicate that three persons are unaccounted for. Authorities have not yet confirmed any casualty. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has concluded a series of meetings with US Trade Representative Ambassador Jamieson Greer and his delegation in New Delhi this morning. In a social media post, Mr. Goyal said they reviewed the progress of the ongoing India-US trade discussions and explored avenues to further deepen economic partnership between both the countries. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met Director of National Security of South Korea, Wee Sung-lak, this evening. In a social media post, the minister said that they had a useful exchange of strategic assessments on global developments and the Indo-Pacific. Earlier today, Dr. Jaishankar highlighted the importance of deepening India-South Korea ties amid a challenging global environment, saying that countries with shared values and mutual trust need to work together more closely. In his opening remarks during the meeting with South Korean Foreign Minister Cho Yun in Seoul, he stressed that the current international situation makes cooperation among trusted partners more important than ever.

0: सुर्खियों में
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक संकट पर केंद्रित 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत जितेंद्र कुमार त्रिपाठी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना।
2: आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक और आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और वैश्विक चुनौतियों पर। और इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं श्री जितेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, जो कि पूर्व राजदूत हैं। ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में तमाम विषयों पर चर्चा हुई और ब्रिक्स के जो भी सदस्य देश हैं उनके बीच में कैसे सहयोग बढ़ाया जाए और खास तौर से जो सुरक्षा के मसले हैं, जिस तरह से वैश्विक स्थितियां बदल रही हैं आज के जमाने में, ऐसे हर राष्ट्र के सामने सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया है। तो ब्रिक्स के जितने भी देश हैं उनके बीच में किस तरह से सहयोग बढ़ाया जाए जिससे कि आतंकवाद पर काबू पाया जा सके, साइबर सुरक्षा की चुनौतियों का सामना किया जा सके और अन्य क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर जो भी समस्याएं हैं उनका निदान ढूंढा जा सके। तो सबसे पहले मैं त्रिपाठी जी आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुई और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ जो विचार विमर्श किया, उसके मुख्य बिंदु आपके अनुसार क्या है?
3: देखिए, ये पहली बार था ब्रिक्स के इतिहास में जबकि ब्रिक्स के सुरक्षा अधिकारियों की बैठक में सुरक्षा का आयाम बढ़ा दिया गया, विस्तार दिया गया, इसका स्कोप बढ़ा दिया गया। पहले जब सिक्योरिटी की बात होती थी तो सिर्फ यही होता था कि सिक्योरिटी का मतलब कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, तो एक देश की सेना दूसरे पे हमला न करे, उनसे सुरक्षा, या ज्यादा से ज्यादा टेररिज्म से या टेररिस्ट एक्टिविटीज से जो कि बाहर से स्पॉन्सर होती है, पोषित होती है बाहर से, उनके खिलाफ। लेकिन इस मीटिंग में इसका स्कोप बढ़ा करके काफी कुछ कर दिया है। तो

0: इसमें ये सिक्योरिटी चैलेंज जो है जिस पे ये बहस की गई, जिस पे वार्तालाप किया गया, विचार विमर्श हुआ, वो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंज, ट्रेडिशनल पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों के अलावा वो एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, सप्लाई चेन सिक्योरिटी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो अभी टेररिस्ट नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं उससे सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी और क्लाइमेट इंड्यूस इंस्टेबिलिटी, मतलब जो मौसम में चेंज आ रहा है, पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहा है उससे जो असुरक्षा की भावना या अस्थिरता की भावना आ रही है इससे। एनर्जी सिक्योरिटी सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सारे देशों के लिए, पूरे विश्व के लिए, खासतौर पे जब ये देखा कि ईरान और अमेरिका के युद्ध में ऊर्जा का आवागमन कितनी बुरी तरह से प्रभावित हुआ, ऊर्जा का आयात निर्यात, और उससे कई देशों में बहुत बड़ी समस्याएं हुई। तो एक तो ये, दूसरा फूड सिक्योरिटी। आज जहां कुछ तथाकथित धनी देश अधिक उत्पादन को सिर्फ दाम पे कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए दूध नदियों नालियों में बहा दिया जाता है या फसलें जला दी जाती है, वहीं दूसरी ओर अफ्रीका के कई देशों में और जगहों पे लोग अभी भी खाने बिना कई जगह भुखमरी की स्थिति। तो ये जो इम्बैलेंस है, जो असंतुलन है, इसको दूर करने का
1: जी
0: यही एक
1: जी
0: उपाय है कि हम फूड सिक्योरिटी के बारे में कुछ करें, सप्लाई चेन सिक्योरिटी इन दोनों ही मामले में। फिर जो टेररिस्ट नेटवर्क अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूएवी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, इनके खिलाफ लड़ने की भी आवश्यकता है। साइबर सिक्योरिटी, जो साइबर स्पेस का गलत उपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, साइबर स्पेस में आप जाके उनकी सीधी खबरें आप प्रसारित करा रहे हैं, जिससे और ऐसे भी कंटेंट आप करा रहे हैं ताकि लोग टेररिस्ट एक्टिविटीज के प्रति ज्यादा झुकाव या रुझाव हो। ये सब चीजें इसमें अभी सम्मिलित की गई है एक बार, और इस तरह से इसका सिक्योरिटी चैलेंजेस का दायरा बढ़।
1: जी, यहाँ पे त्रिपाठी जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने जिक्र भी किया सप्लाई चेन का, क्योंकि जो भी युद्ध की स्थिति बनती है और जैसे आपने कहा भी ईरान और अमेरिका का जो युद्ध हुआ वो हमारे सामने है कि किस तरह से जो देश किसी भी रूप में इस युद्ध में शामिल नहीं थे प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, लेकिन सब पे प्रभाव पड़ा, हमारी जितनी भी सप्लाई थी ऊर्जा की वो सारी बाधित हो गई। तो जब हम ब्रिक्स के देशों के बीच में सहयोग की बात करते हैं तो ये जो सप्लाई चेन की समस्या है उसका ब्रिक्स के सहयोग से किस तरह से उसका समाधान ढूंढा जा सकता है?
0: देखिए, मेरे विचार से ब्रिक्स के सहयोगी देशों या ब्रिक्स के सदस्य देशों को ये चाहिए कि वो ऐसा तरीका इनके ढूंढे कि अगर कहीं पर इनस्टेबिलिटी हो, अस्थिरता हो, या फ्लैश पॉइंट्स हो जहां पर युद्ध होने की संभावना हो या युद्ध हो रहा हो, वहां से गुजरने वाले जहाजों या वहां से गुजरने वाली सप्लाई को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए। देखिए, ये प्यास लगने पर कुआं खोदने वाली बात नहीं, यान युद्ध समाप्त हो गया है जहां तक हमें उम्मीद, लेकिन फिर भी हमें इसके लिए तैयारी करनी चाहिए कि अगर भविष्य में कहीं कुछ ऐसा होता है तो हम अल्टरनेट सप्लाई चेन की व्यवस्था करें, ताकि ऐसा होते ही हम दूसरे रास्तों से सामान का, गुड्स का, एनर्जी का, ऊर्जा का आवागमन करा सकें।
1: इसके अलावा त्रिपाठी जी, जैसे सुरक्षा की हम बात करते हैं और सारे जो ब्रिक्स के सहयोगी देश हैं उनके बीच में आपसी तालमेल की बात करते हैं सुरक्षा को लेकर, लेकिन मैं फिर से ईरान को संदर्भ के रूप में प्रस्तुत करके मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि जैसे भारत के या ब्रिक्स के अन्य देशों के जो शिप्स हैं या उनपे जो हमारे नाविक तैनात है, इस तरह के मामलों में ब्रिक्स के देश किस तरह से आपस में ऐसा तंत्र विकसित कर सकते हैं कि वहां पर हमारे शिप्स को या उनमें सवार नाविकों को सुरक्षा प्रदान की जा सके?
0: देखिए, इसमें एक वो बिंदु जिस पर सुरक्षा अधिकारियों की मीटिंग में विचार विमर्श किया है वो इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने ये कहा है कि ब्रिक्स की लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी, जो कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने वाली जो एजेंसी, उनको आपस में कोऑर्डिनेट करना चाहिए, समन्वय करना चाहिए, ताकि वो टेररिज्म को काउंटर कर सके, टेररिज्म को, साइबर रिस्क को, इसको एक सम्मिलित रूप से, एक संयुक्त रूप से मिल करके इसका सामना किया जा सके। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, और इसी के संदर्भ ये है कि ये अब हमें देखा जाना चाहिए कि जब भी कभी ऐसी समस्या है, जब भी किसी देश पर साइबर अटैक हो, टेररिस्ट अटैक हो, या यूएवी का अटैक हो, या सप्लाई चेन बाधित हो, उस वक्त के लिए हमें ये कोशिश करते रहना, एक कोई संगठन बनाए या कोई उनसे एजेंसीज का एक कोऑर्डिनेटिंग पॉइंट बनाए, कॉन्टेक्ट पॉइंट बनाए, जहाँ की ऐसी स्थिति में तुरंत सारे देशों को खबर दी जा सके और तुरंत उनकी एजेंसी जो है वो चालू हो जाए, वो एक

0: इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो किसी भी क्षेत्र में हो रहे आतंकवाद से खत्म करने के लिए, उनका सामना करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पुनर्स्थापित करते हैं कि हम प्रतिबद्ध हैं कि किसी भी स्थिति में, किसी भी स्वरूप में अगर आतंकवाद हो तो उसका हम सामना करेंगे। ये सब बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने ये भी कहा है ब्रिक्स के जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी 21-22 मई में, और जो एक मीटिंग हुई थी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर 8 और 9 जून को दिल्ली में इसी साल, उस पर भी विचार किया है। तो अब ये आगे अपरिहार्य हो जाता है कि इन चीजों पे जो विचार हुआ है इसका तत्काल ही कुछ रिजल्ट आना चाहिए, कुछ परिणाम आना चाहिए। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी इंगित किया है कि हमें अब प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे ज्यादा जोर देना चाहिए, हो सकने योग्य हैं ऐसे समाधानों पर ज्यादा जोर देना चाहिए ताकि हम इसमें काम जल्दी से कर सकें।
1: जहां तक त्रिपाठी जी साइबर सुरक्षा की अगर हम बात करें, क्योंकि साइबर के खतरे काफी ज्यादा हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमें किस तरह का एक डिजिटल नेटवर्क तैयार करने की जरूरत है जिसमें आसानी से कोई सेंध न लगा पाए, और ये ऐसा फूल प्रूफ सिस्टम हो जहां पर हम किसी भी तरह के साइबर हमले को रोक सकें और सूचनाओं के आदान प्रदान से बाकी जितने भी सदस्य देश हैं ब्रिक्स के उनको इस साइबर खतरों से हम बचा सकें, इसके लिए क्या और अतिरिक्त करने की जरूरत है आपके अनुसार?
0: जी देखिए, इसके लिए ये भी कहा गया है कि हमें AI ह्यूमन सेंट्रिक बनाने और AI के गिवन सिक्योरिटी रिस्क जो है उसको खत्म करने के लिए तुरंत ही हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा। हम यूनिफाइड अप्रोच करेंगे, मतलब एक संयुक्त प्रयास सम्मिलित रूप से हम करें ताकि जैसे ही किसी देश के ऊपर कोई अटैक हो, साइबर अटैक हो, वो अन्य सभी सदस्य देशों को तुरंत ही सावधान कर सके कि देखिए ऐसी समस्या आई है, और अपने नागरिकों से कह दीजिए कि ये प्लेटफॉर्म ना खोले या ये चीज ना खोले इंटरनेट पे, नहीं तो इससे सिक्योरिटी को, सुरक्षा को, ये समझौता हो सकता है, सुरक्षा खतरे। जैसे नेवी में होता अर्ली वार्निंग सिस्टम,
1: जी
0: नेवी में या सुनामी में, यहाँ पर हमारे यहाँ कुछ ऐसा अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए। हालांकि वार्निंग तो यहाँ हम अर्ली तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन जैसे ही कहीं किसी भी देश में ऐसे खतरे को महसूस किया जाता है, तुरंत समस्त देशों में इसको प्रचारित कर देना चाहिए ताकि खतरा कम से कम हो सके।
1: त्रिपाठी जी, प्रधानमंत्री ने जो ब्रिक्स के सलाहकार आए हुए हैं उनसे बातचीत में इस बात का जिक्र भी किया कि कैसे ग्लोबल साउथ के बीच में एक सामंजस्य बनाने की स्थिति है जिससे कि पूरी दुनिया में समावेशी माहौल तैयार किया जा सके और जिसमें पूरी दुनिया के जो नागरिक हैं उनको हर तरह की सुविधा और सुरक्षा मुहैया कराई जा सके और सभी लोग मिलकर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ें। तो यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तो मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ के सामने कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जिनका हमें मिलकर सामना करना है, और इस दिशा में खास तौर पर ब्रिक्स के देश क्या कर सकते हैं?
0: देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो मेरे विचार से ग्लोबल साउथ के सामने जो है वो ये है कि ग्लोबल नॉर्थ की दादागिरी। दूसरी चुनौती ये है कि ग्लोबल साउथ की बात विश्व के प्लेटफॉर्म पर जनरली आमतौर पर नहीं सुनी जाती। इसलिए इसी के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि भारत जो है अब एक तरह से ग्लोबल साउथ का अघोषित प्रवक्ता बन चुका है, और ये उसके लिए एक बड़ी अच्छी स्थिति है कि वो एक पुल के तौर पे ग्लोबल नॉर्थ को ग्लोबल साउथ की बातें, उनके कंसर्न, उनकी चिंताएं वहां तक प्रेषित करने में समर्थ है, क्योंकि भारत पिछले 9 साल से G7 की समिट में भी बुलाया जाता रहा है। तो अपनी इस चीज का उपयोग करके भारत ये काम कर सकता है। तीसरी चीज ये है कि ग्लोबल साउथ की जो समस्या है ये वातावरण से संबंधित है, वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है उसके लिए जो भी तरीके या जो भी तकनीक अपनाई जाएगी उस तकनीक को फ्री में लोगों को मुहैया कराया जाए।
1: जी
0: इसके साथ ही साथ ये कि नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीक कृषि के क्षेत्र में हो, एनर्जी के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, नई तकनीक भी जल्दी से जल्दी मुहैया कराया जाना चाहिए। विश्व अभी अभूतपूर्व जल संकट से जूझ रहा है, ये हालांकि सस्टेनेबल गोल में है लेकिन इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जहाँ विश्व जो है वो बहुतायत से पीड़ित है वहाँ हमारे यहाँ अभाव से पीड़ा है।
1: अंत में मैं त्रिपाठी जी एक सवाल फिर से सुरक्षा से संबंधित आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि इस विषय में भी चर्चा हुई कि कैसे हम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं ब्रिक्स के देशों की, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि

0: वो कानून का अनुपालन कराएं, और जो सूचनाओं का आदान प्रदान है कानून को लागू करने से संबंधित या इंटेलिजेंस से संबंधित, इसमें आदान प्रदान को कैसे और हम प्रगाढ़ और सुदृढ़ कर सकते हैं?
1: देखिए, मेरे विचार से तो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज का अपना एक छोटा ग्रुप होना चाहिए, वर्किंग ग्रुप, जिसकी रेगुलर मीटिंग हो और ऐसी व्यवस्था हो कि कहीं भी अगर ऐसी कोई बात हो तो तुरंत ही उनको सूचित किया जाए, वो और लोगों को सूचित करें कि आप यहाँ ऐसा अटैक होने वाला है, या हमने ऐसी इमेजरी देखी है कि आपके यहाँ कुछ जहाज या किसी उससे होगा, या हमने ये देखा है कि सुनामी आने वाला है, हमने देखा है कि बाढ़ आने वाली है। ये चीजें भी जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती, या ये देखते करें कि कहीं टेररिस्ट अटैक की योजना तो नहीं बन रही है, या कहीं अगर किसी सदस्य देश की लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी में ये उसको पता लगा कि हाँ हमारे यहाँ से कुछ लोग दूसरे देश में आतंकी कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं, तो तुरंत और देशों को सावधान करना बहुत जरूरी है। इसी की वजह से ये जरूरी है कि एक लगातार निर्बाध और सेफ, पूरी तरह से सुरक्षित चैनल इन देशों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच में हो, हॉटलाइन की तरह जैसे कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में होती है, ताकि निर्बाध तुरंत ही वो जानकारी प्रेषित की जाए।
0: जी त्रिपाठी जी, चलते हैं अब कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, और जैसा कि ब्रिक्स की जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक है उसमें जो मुख्य बातें हुई आतंकवाद से संबंधित और साइबर सुरक्षा और अन्य वैश्विक चुनौतियों से संबंधित, आपने उसके बारे में न सिर्फ महत्वपूर्ण जानकारी दी बल्कि उन विषयों की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित कराया, जैसा कि आपने कृषि की बात की, जल संकट की बात की, और किस तरह से ब्रिक्स के बीच में सहयोग को बढ़ाकर इन समस्याओं का सामना किया जा सकता है जिससे कि हम एक बेहतर विश्व बना सकें। आपका इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक संकट पर केंद्रित 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत जितेंद्र कुमार त्रिपाठी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना।
3: सुर्खियों में

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर सांझ ढले आपके लिए स्वागत करती हूं मैं कुसुम। 24 जून की शाम दिल्ली के साथ साथ दिल के मौसम को भी खुशनुमा बना रही है। किन ख्यालों में खोए हैं आप, जरा बाहर नजरें दौड़ाइए, जिंदगी एक नए रंग में आपके सामने है। ये मौसम की दस्तक, ये शाम सुहानी, हवाओं के होठों पे है दिन की कहानी, जमी पे आसमां के मिलन का गुमा है जिसे ढूंढते हो, हाँ यही यही वो समा है।

देखिए, तुम्हारा दिल हो या हमारा दिल, किसी का भी दिल हो, दिल को धड़कते रहना चाहिए, है ना। किसी ने क्या खूब लिखा है कि दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, पत्थर की तरह बेहिसो बेजान सा क्यों है। वैसे ही गीत जो अभी आपने सुना फिल्म गुलामी का, गुलजार साहब ने इस गाने की शुरू की लाइन अमीर खुसरो की एक मशहूर रचना से प्रेरित होकर लिखी है। अमीर खुसरो ने फारसी और ब्रिज भाषा को मिलाकर एक कविता लिखी थी जिसकी कुछ पंक्तियां इस तरह से हैं। जेहाले मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां, किताब हिजरा नदारम ऐजा ना ले हो काहे लगाए छतियां। इसका अर्थ है, आंखें चुरा कर बातें बनाकर मेरी बेबसी की उपेक्षा ना करो, बिछड़ने की तपन से मेरी जान निकल रही है, तुम मुझे अपनी बाहों में क्यों नहीं भर लेते। फिर इसके बाद गुलजार साहब ने फिल्म गुलामी का ये गीत लिखा जो अभी आपने सुना। इसकी पहली लाइन का अर्थ है, जिहाले मिस्की यानी मुझ गरीब बेबस इंसान की हालत पर तरस खाओ, मकुन बरंजिश यानी मुझसे नाराजगी या गुस्सा मत करो, बहाले हिजरा बेचारा दिल है यानी जुदाई की हालत में मेरा दिल बहुत लाचार और बेहाल है, और सुनाई देती है किसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। बेशक हमारा दिल है, और ये हमारा दिल क्या कह रहा है, सुनते हैं फिल्म शागिर्द के इस गीत में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के गाए फिल्म आया सावन झूम के इसी गीत के साथ ही सांझ ढले यहीं तक, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। फिलहाल इस चैनल पर आइए जुड़ते हैं प्रादेशिक समाचारों से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य शुरू किया। दिल्ली सरकार ने राजधानी में लगभग 657 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अपराध पर कड़ा नियंत्रण बनाए रखने का निर्देश दिया। लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने मानसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। दिल्ली यातायात पुलिस के सहयोग से सभी जिला न्यायालयों में 5 जुलाई से सप्ताहांत अदालत शुरू की जाएगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने आज सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य की शुरुआत की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने इस निर्माण कार्य का शुभारंभ किया।
2: दिल्ली मेट्रो ने बताया कि यह स्टेशन चरण 5A के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है, जो वर्तमान मेजेंटा लाइन का जनकपुरी वेस्ट से आरके आश्रम मार्ग का विस्तार है। 9.9 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में 9 भूमिगत स्टेशन शामिल हैं। इनमें शिवाजी स्टेडियम, युगे युगीन भारत, केंद्रीय सचिवालय, कर्तव्य भवन, इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल हाईकोर्ट, बड़ौदा हाउस, भारत मंडपम और इंद्रप्रस्थ शामिल हैं। दिल्ली मेट्रो ने बताया कि केंद्रीय सचिवालय स्टेशन को ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां नई मेजेंटा लाइन का स्टेशन मौजूदा येलो और वॉयलेट लाइन से निर्बाध रूप से जुड़ जाएगा। इससे सरकारी कर्मचारियों, यात्रियों और लुटियंस दिल्ली क्षेत्र में आने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इस क्षण को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी। उन्होंने बताया कि यह परियोजना आरके आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ तक चलेगी।
3: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है, जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है, सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम वाले सब लोग, उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अष्टमी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती हैं, उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है, ये आरके आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर 9 स्टेशन है।
2: यह परियोजना राजधानी दिल्ली के मुख्य हिस्से से आवागमन को सुदृढ़ करने और यात्री सुविधा को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या।
1: दिल्ली सरकार ने राजधानी में लगभग 657 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की बैठक में आज ये निर्णय लिया।

0: गया।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से राजधानी की सड़कों को अधिक सुरक्षित, टिकाऊ और बेहतर बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस निर्णय से पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली के प्रमुख मार्गों की गुणवत्ता में सुधार होगा और सड़क अवसंरचना को आधुनिक मानकों के अनुरूप सुदृढ़ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि लोक निर्माण विभाग के पूर्वी रखरखाव क्षेत्र में लगभग 58 किलोमीटर लंबी सड़कों के सुदृढ़ीकरण पर 147 करोड़ रुपए, उत्तरी रखरखाव क्षेत्र में 104 किलोमीटर लंबी सड़क पर 247 करोड़ रुपए और दक्षिणी रखरखाव क्षेत्र में लगभग 107 किलोमीटर लंबी सड़कों पर 263 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत व्यय की जाएगी। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए नेहा गोस्वामी।
0: बैठक में उत्तरी दिल्ली के धीरपुर में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय के अत्याधुनिक नए कैंपस के निर्माण को मंजूरी दी गई है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि लगभग 1668 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाला ये कैंपस राजधानी में गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप उच्च शिक्षा के अवसरों का विस्तार करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नया कैंपस विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करेगा और राष्ट्रीय राजधानी में उच्च शिक्षा के अवसरों के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधु ने आज नई दिल्ली के पुलिस मुख्यालय में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
2: सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि उन्होंने पुलिस बल को अपराध पर कड़ा नियंत्रण बनाए रखने का निर्देश दिया है। इसमें महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया है। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निरंतर कौशल वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने, सर्वोत्तम पुलिस पद्धतियों को अपनाने और एआई तथा ड्रोन जैसी उभरती प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने को कहा है। उन्होंने अधिकारियों से सामुदायिक पुलिसिंग और खुफिया जानकारी जुटाने में रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और मार्केट एसोसिएशन को सक्रिय रूप से शामिल करने का भी आग्रह किया। संधू ने मानवीय, दृश्यमान और सक्रिय नागरिक केंद्रित पुलिसिंग की आवश्यकता पर भी बल दिया ताकि जनता का विश्वास और भरोसा मजबूत हो। बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करके यातायात चुनौतियों का समाधान करने का भी निर्देश दिया और सड़क उपयोगकर्ताओं के बीच सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री संधू ने कर्मियों के कल्याण, पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और पुलिस आवासीय परिसरों को अवशिष्ट मुक्त कॉलोनियों में बदलने के महत्व पर भी चर्चा की। सकलेन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया, पावर, प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस पुस्तक में सरकार और आम नागरिकों के बीच दूरी पर विचार किया गया है। इसमें जन केंद्रित शासन के माध्यम से यह दूरी कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
3: भारत इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। अवर कॉन्स्टिट्यूशन एनविजन्स ए सोसाइटी बेस्ड ऑन जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी।
0: दक्षिणी दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बताया है कि दिल्ली के किसानों की वैकल्पिक आवासीय प्लाटों के आवंटन की मांग को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि यह फैसला उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। श्री बिधूड़ी ने बताया कि जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई थी तथा जिनके वैकल्पिक आवासीय भूखंडों के आवेदन भूमि और भवन विभाग की सिफारिश के साथ दिल्ली विकास प्राधिकरण को भेजे जा चुके हैं, उन्हें 3 महीने के भीतर वैकल्पिक आवासीय भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने आज जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान नागरिकों की समस्याओं और सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। श्री सूद ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान ही सुशासन की पहचान है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार नागरिकों को जवाबदेह, संवेदनशील और प्रभावी प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली सरकार में मंत्री और बवाना के विधायक रविन्द्र इंद्राज सिंह ने आज जनसंवाद कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के नागरिकों से मुलाकात की। श्री सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में जनहित और विकास के मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। इसमें क्षेत्र की प्रगति और जनकल्याण को नई गति देने का संकल्प दोहराया गया। उन्होंने कहा कि नागरिकों की अपेक्षाओं को प्राथमिकता देना और विकास को नई दिशा देना ही दिल्ली सरकार का प्रयास है।

0: दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज लाजपत नगर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान श्री वाही ने रोगियों से बातचीत कर अस्पताल की सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में ओपीडी, डे केयर, फिजियोथेरेपी, एक्सरे कक्ष और दवाओं की उपलब्धता की जांच की। श्री वाही ने कहा कि अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने असमर्थ रोगियों के लिए आवश्यक सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। नई दिल्ली में रफी मार्ग पर उद्योग भवन के पास झुग्गी में आज तड़के आग लग गई। दमकल विभाग को सवेरे 3 बजे सूचना मिली और इसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। मॉनसून के आगमन को देखते हुए राजधानी में तैयारियों की लगातार निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आज कीर्ति नगर और मोती नगर में मॉनसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
1: लोक निर्माण विभाग ने बताया कि राजधानी में नालों की डी सॉल्टिंग का लगभग 90% कार्य पूरा कर लिया गया है। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने बताया कि इस वर्ष डी सॉल्टिंग अभियान में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई है। विभाग ने कहा कि इस वर्ष लगभग 30 लाख मीट्रिक टन गाद हटाने का कार्य पूरा किया गया है। मीडिया से बातचीत में श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि आज दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारी, मुख्य अभियंता और फील्ड टीमें मानसून से पहले सड़कों और नालों का निरीक्षण कर रही हैं। श्री सिंह ने बताया कि अगले 10 से 15 दिनों में दिल्ली की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों का निरीक्षण किया जाएगा।
2: 70 विधानसभा अगले 10-15 दिन में हम देख लें कि सारे काम हो रहे या नहीं हो रहे। जो काम ठीक नहीं हो रहे उनके कॉन्ट्रेक्टर की पेमेंट रुकवा रहे हैं। जो इंजीनियर ठीक काम नहीं करेंगे उनके ऊपर में एक्शन लिया जाएगा। अगर दिल्ली की जनता को इस बारिश में कोई जल भराव ना दिखाई दे इसके लिए हमारा प्रयास।
1: श्री सिंह ने कहा कि रखरखाव अनुबंध होने के बावजूद कार्यों की वास्तविक स्थिति का आकलन केवल जमीनी स्तर पर जाकर ही किया जा सकता है। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: दिल्ली सरकार ने राजधानी में डेंगू और अन्य मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने सभी संबंधित विभागों को आवश्यक उपायों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए।
3: बैठक में अधिकारियों ने राजधानी में इन बीमारियों की वर्तमान स्थिति, निगरानी व्यवस्था, अस्पतालों की तैयारियों, मच्छर नियंत्रण गतिविधियों तथा जन जागरूकता अभियानों की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार डेंगू और अन्य मच्छर जनित बीमारियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि डेंगू के खिलाफ लड़ाई में जन भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। साथ ही श्री सिंह ने नागरिकों से अपील की कि घरों और आसपास कहीं भी मच्छरों के पनपने की स्थिति न बनने दें। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू और अन्य मच्छर जनित बीमारियों की शीघ्र पहचान और प्रभावी प्रबंधन के लिए एक सुदृढ़ निगरानी तथा त्वरित प्रक्रिया तंत्र की व्यवस्था को विकसित किया है। श्री सिंह ने कहा कि दिल्ली में 35 सेंटिनल सर्विलांस अस्पताल सक्रिय रूप से इन मामलों की निरंतर निगरानी कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए मैं अमित कुमार त्यागी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री शाह मादक पदार्थ नियंत्रण के लिए वर्ष 2026 से 29 के लिए दृष्टि पत्र जारी करेंगे। इसे हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि ये पत्र मांग और आपूर्ति में कमी तथा पुनर्वास पर केंद्रित समन्वित उपायों के माध्यम से मादक पदार्थों के खतरे से निपटने में सहायता प्रदान करेगा। दिल्ली यातायात पुलिस के सहयोग से राजधानी के सभी जिला न्यायालय परिसरों में 5 जुलाई से सप्ताहांत अदालतें शुरू की जाएंगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: यातायात पुलिस ने बताया कि ये न्यायालय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक माह के दूसरे शनिवार और प्रत्येक रविवार को आयोजित किए जाएंगे। इसमें सभी व्यक्तिगत और व्यावसायिक वाहनों के समझौता योग्य यातायात नोटिस या चालान शामिल किए जाएंगे, जिसमें चालान या नोटिस की सीमा प्रति वाहन अधिकतम 20 निर्धारित की गई है। ये सुविधा दिल्ली के पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी और द्वारका न्यायालयों में उपलब्ध कराई जाएगी। यातायात पुलिस ने कहा कि चालान डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट कल से लाइव की जाएगी। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। मंत्रालय के अनुसार प्राधिकरण ने विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग के 595 संवेदनशील स्थानों की पहचान की है। इन स्थानों से अवैध पार्किंग हटाने के लिए राज्य सरकारों, जिला प्रशासन और संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में आज दोपहर के समय तेज धूप रही, वहीं शाम में वर्षा से दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया है कि कल हल्के बादल छाए रहने की संभावना है, वहीं कल का अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य शुरू किया। दिल्ली सरकार ने राजधानी में लगभग 657 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अपराध पर कड़ा नियंत्रण बनाए रखने का निर्देश दिया। लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने मॉनसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा की और दिल्ली यातायात पुलिस के सहयोग से सभी जिला न्यायालयों में 5 जुलाई से सप्ताहांत अदालत शुरू की जाएंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। मलबे और पानी के अंदर फंसे लोगों से बचाव दल का संपर्क हो गया है। उन्हें पानी और ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है तथा सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास जारी हैं। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानिनी ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। श्री शाह इस अवसर पर मादक पदार्थ नियंत्रण के लिए वर्ष 2026-29 के लिए दृष्टि पत्र जारी करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई कल शुरू की गई। ये जांच राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के कथित उल्लंघन के मामले में की जा रही है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जुलाई माह में सेवा उत्पादन सूचकांक जारी करने की तैयारी कर रहा है। ये सूचकांक औपचारिक सेवा क्षेत्र की वृद्धि में अल्पकालिक परिवर्तनों के मासिक आधार पर नए आंकड़े प्रदान करेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया हर्जेगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अपराजिता नायर। Three people have died after a devastating roof collapse of an under-construction godown at Taratala area of Kolkata today. Contact has been established with the trapped people inside the debris, and water and oxygen have been provided by the rescue team. Efforts are underway to rescue them. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari visited the spot and inspected the site. Suvendu Adhikari informed the media a report would be prepared by the Kolkata Municipal Corporation KMC for the incident. He said a detailed information would be provided involving the Taratala accident tomorrow in the assembly. The session of the assembly is underway in Kolkata. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has concluded a series of meetings with US Trade Representative Ambassador Jamie Sun Greer and his delegation in New Delhi this morning. In a social media post, Mr. Goyal said they reviewed the progress of the ongoing India-US trade discussions and explored avenues to further deepen economic partnership between both the countries. He also appreciated Ambassador Greer's leadership and the sustained efforts of both teams in advancing the discussions in a constructive and forward-looking manner. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met Director of National Security of the South Korea, Wee Sung-la, this evening. In a social media post, the minister said that they had a useful exchange of strategic assessments on global developments and the Indo-Pacific. Earlier today, Dr. S. Jaishankar highlighted the importance of deepening India-South Korea ties amid a challenging global environment, saying that countries with shared values and mutual trust need to work together more closely. In his opening remarks during the meeting with South Korean Foreign Minister Cho Hyun in Seoul, he stressed that the current international situation makes cooperation among trusted partners more important than ever. The BRICS Heads of Space Agencies Meeting 2026 concluded in Bengaluru today under India's chairmanship. Minister of State for Science and Technology in Space Jitendra Singh attended the valedictory session and highlighted India's growing role in global space initiatives. Speaking to the media, ISRO Chairman V. Narayanan said the two-day meeting brought together 26 delegates from 10 countries along with representatives from ISRO, In Space and the Department of Space. He said discussions focused on the use of remote sensing satellite constellations for socio-economic development, particularly in disaster management and climate change monitoring. Delegates also discussed sustainable space operations and debris-free mission management.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। सात सुरों के इस सफर पर मैं हूं आपके साथ कुसुम। किसी ने लिखा है कि यदि ईश्वर मनुष्य से संवाद करता तो शायद संगीत की भाषा होती, सुरों के शब्द होते, रागों में वाक्य कहता। यदि ईश्वर मनुष्य से बात करता तो यही समझ लीजिए कि आज के गीतों में ईश्वर हमसे बातें कर रहा है। पहला गीत फिल्म जब जब फूल खिले से मोहम्मद रफी की आवाज में आपके लिए। राग मिश्र पीलू।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है मधुरिमा और आज इस कार्यक्रम में मैं कुसुम लेकर आई हूँ आपके लिए राग मिश्र पीलू के गाने। राग मिश्र पीलू हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक बहुत ही मधुर और चंचल राग है। मूल पीलू राग में कुछ स्वरों की सीमाएं होती हैं, लेकिन जब कलाकार राग में अन्य रागों के स्वरों का मिश्रण कर देते हैं तो इसे मिश्र पीलू कहा जाता है। ये काफी थाट से उत्पन्न होता है। इसमें शुद्ध और कोमल दोनों प्रकार के स्वरों का इस्तेमाल होने की वजह से कभी कभी इसे 12 स्वरों का राग भी मान लिया जाता है, जिससे इसमें अद्भुत भाव उत्पन्न होते हैं। इस अद्भुत भाव को एक और गीत में हम महसूस करते हैं। फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने, आवाज मोहम्मद रफी की।

चाहे दिल के भंवर की पुकार हो या हाले दिल का इकरार या फिर टूटे दिल की पुकार, राग मिश्र पीलू सभी भावों में फिट बैठ जाता है। संगीतकार एसडी बर्मन ने फिल्म प्यासा के एक गीत में इस राग का बेहद खूबसूरती से इस्तेमाल किया, जिसे हेमंत कुमार ने इतनी गहराई से गाया कि सुनते वक्त दिल की धड़कनों पर यह गीत बजने लगता है। गुरदत्त पे फिल्माई, हम उसी गीत को सुनते हैं।

अक्सर जब दिल दर्द से भर जाता है ना, तो दिल यही कहता है कि जाने वो कैसे लोग थे जिनसे प्यार को प्यार मिला। हेमंत कुमार की जादुई आवाज फिल्म प्यासा में। संगीतकार सलील चौधरी अक्सर कहा करते थे कि यदि ईश्वर गाता तो उसकी आवाज हेमंत कुमार जैसी होती। यकीनन हेमंत कुमार की आवाज मोहब्बत की पुकार बन जाती है, टूटे दिल की आवाज बन जाती है। मोहब्बत, ये रिश्ता किसी पहचान का मोहताज नहीं होता, ये कोई नाम नहीं मांगता, न कोई वजह, बस एक जानी पहचानी सी मुस्कान, एक शिद्दत सी चाहत और दिल के किसी कोने में चुपके से उतर जाने वाला एहसास। न गम का पता, न जुदाई का डर, बस एक अनजाना सा बंधन, एक प्यारी सी आरजू है, तो अजनबी भी है और दिल के रूबरू भी है। न तुम हमें जानो, न हम तुम्हें जाने। सुनते हैं हेमंत कुमार की जादुई आवाज का एक और गीत।

फिल्म बैजू बावरा की संगीत के साथ ही मधुरमय यहीं तक कुसुम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। फिलहाल इस चैनल पर अब आपके लिए है स्पोर्ट्स स्कैम।

0: नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से, अन्य मुकाबलों में पुर्तगाल, क्रोएशिया और कोलंबिया ने रोमांचक जीत दर्ज की। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। FIH प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया। हॉकी इंडिया ने ब्रिटेन में होने वाले एक्सपोजर टूर के लिए 24 सदस्यीय भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की घोषणा की। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में कल भारत का सामना बांग्लादेश से होगा और ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी, 16 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक फुटबॉल से, जहां हर दिन फीफा विश्व कप में रोमांचक मुकाबले खेले जा रहे हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा, वहीं इसी ग्रुप में कतर, बोस्निया हर्जेगोविना आमने सामने होंगे। अन्य मुकाबलों में पुर्तगाल, क्रोएशिया और कोलंबिया ने रोमांचक जीत दर्ज की। सुनते हैं इन मुकाबलों पर एक खास रिपोर्ट।
1: फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप के मुकाबले में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही कोलंबिया ने अगले राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली है। मैच का एकमात्र और निर्णायक गोल दूसरे हाफ में डेनियल मुनोज ने किया। मुनोज ने एक डिफ्लेक्टेड शॉट पर गोल दागकर कांगो के मजबूत डिफेंस को भेदा। कांगो की मजबूत डिफेंस को देखकर एक समय लग रहा था कि ये मुकाबला ड्रॉ रहेगा, लेकिन मैच के 76वें मिनट में आखिरकार मुनोज को सफलता मिली और उन्होंने कोलंबिया को 1-0 की बढ़त दिलाई। कोलंबिया ने अपनी लीड को अंत तक बनाए रखा। इस जीत के साथ ही कोलंबिया ने ग्रुप में 2 मुकाबले जीतकर टॉप 2 में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। ग्रुप एल के मुकाबले में क्रोएशिया ने दमदार प्रदर्शन करते हुए पनामा को 1-0 से हरा दिया। क्रोएशिया के खिलाफ मिली हार के साथ ही पनामा के अगले राउंड में पहुंचने की उम्मीद समाप्त हो गई है। क्रोएशिया ने ये अहम जीत टीम के स्टार खिलाड़ी लुका मोड्रिक के 200वें मैच में हासिल की। पहले हाफ में पनामा ने क्रोएशिया के मुकाबले ज्यादा बेहतर खेल दिखाया। 23वें मिनट में पनामा को गोल करने का एक शानदार मौका मिला था, जब जोस लुइस रोड्रिगेज ने जोरदार हेडर लगाया। हालांकि क्रोएशिया के गोलकीपर डोमिनिक लेवाकोविच ने शानदार बचाव करते हुए गोल बचा लिया। मुकाबले के 54वें मिनट में क्रोएशिया 1-0 की बढ़त हासिल करने में सफल रहा। जोसेफ स्टेनिसिक के दाईं ओर से आए शानदार लो क्रॉस को सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के तौर पर आए एंटे बुदमिर ने गोल में तब्दील कर दिया। इस जीत के साथ ही क्रोएशिया ने राउंड ऑफ 32 में पहुंचने की अपनी उम्मीद बरकरार रखी है।
2: क्रोएशिया आर अप एंड रनिंग एंड आर इनटू कंटेंशन इन ग्रुप एल। पनामा are eliminated with a game to spare.
1: ग्रुप एल का एक और मुकाबला इंग्लैंड और घाना के बीच गोल रहित ड्रॉ पर समाप्त हुआ। इंग्लैंड ने मैच में पहला बड़ा मौका 13वें मिनट में बनाया, जब डेक्लान राइस की लंबी दूरी की फ्री किक गोल पोस्ट के ऊपर से निकल गई। पहले हाफ में जूड बेलिंगहैम का एक शॉट घाना के 2 डिफेंडर ने ब्लॉक किया। वहीं राइस ने नोनी मडुके के क्रॉस पर हेडर लगाया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। मैच के अंतिम मिनटों में इंग्लैंड ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन अंत में दोनों टीम को 1-1 अंक से ही संतोष करना पड़ा। ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। ह्यूस्टन स्टेडियम में मिली पुर्तगाल की जीत के नायक स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहे। उन्होंने मुकाबले में 2 गोल किए। पुर्तगाल ने इस जीत के साथ ही राउंड ऑफ 32 में पहुंचने की अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है। टीम के 2 मुकाबलों के बाद अब 4 अंक हो गए हैं और टीम ग्रुप में पहले स्थान पर पहुंच गई है। रोनाल्डो के अलावा पुर्तगाल की ओर से नूनो मेंडेस और राफेल लियाओ ने भी 1-1 गोल दागा। पुर्तगाल ने शुरुआत से ही मुकाबले का शानदार आगाज किया। मैच के 6वें मिनट में ही रोनाल्डो ने अपनी क्लास दिखाई और टीम के लिए पहला गोल दागा और टीम को 1-0 से बढ़त दिला दी। इस गोल के साथ ही रोनाल्डो ने ऐतिहासिक उपलब्धि भी हासिल की। वो 6 विश्व कप में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं।
2: Five in red in the middle, Ronaldo! The first player ever to score in six different World Cups.
1: पुर्तगाल की बढ़त को मैच के 17वें मिनट में ही नूनो मेंडेस ने दोगुना कर दिया। नूनो ने फ्री किक का भरपूर फायदा उठाया और मैच का दूसरा और अपना पहला गोल दागा। मैच के 29वें मिनट में उज्बेकिस्तान के लिए अजीजनोद गनीब ने एक शानदार गोल किया, लेकिन फाउल होने के कारण इसे अमान्य करार दे दिया गया। इसके बाद मैच के 39वें मिनट में रोनाल्डो ने अपना दूसरा और मैच का तीसरा गोल दागा। रोनाल्डो के इस गोल के दम पर पुर्तगाल ने पहले हाफ का अंत 3-0 की बढ़त के साथ किया। दूसरे हाफ में उज्बेकिस्तान के गोलकीपर नेमातोव हलती से अपना ही गोल कर बैठे, जिसके चलते पुर्तगाल की बढ़त 4-0 हो गई। मैच के 87वें मिनट में राफा लियाओ ने पांचवां गोल दागा और पुर्तगाल की धमाकेदार जीत पर मोहर लगा दी।
2: It's Portugal on the surge with Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo. He's done it again from setback to statement. Portugal 5, Uzbekistan 0.
1: Mukesh Kumar, Sportscan.
0: और अब रुख करते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। अमेरिका के फुलटन में यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लुसिया रॉड्रिगेज को मात दी। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
3: त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने टूर्नामेंट में स्पेन की पाउला लोपेज और लुसिया रोड्रिगेज को 3 गेमों के कड़े मुकाबले में हराकर दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। चोट से उबरकर वापसी कर रही त्रिशा ने अपनी जोड़ीदार गायत्री के साथ मिलकर स्पेन की जोड़ी को 21-12, 14-21, 21-13 से 51 मिनट तक चले पहले दौर के मुकाबले में पराजित किया। भारतीय जोड़ी प्री क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला जापान की सुमीरे नाकाडे और मियू ताकाहाशी से होगा। त्रिशा और गायत्री ने मैच की शुरुआत मजबूत की और पहले गेम में 8-3 की बढ़त बना ली। स्पेन की जोड़ी ने वापसी की कोशिश करते हुए लगातार 4 अंक हासिल करते हुए अंतर को कम करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जोड़ी ने फिर से दबदबा बनाते हुए 17-11 की बढ़त बनाई और गेम आसानी से जीत लिया। दूसरे गेम में पाउला और लुसिया ने बेहतर खेल दिखाया और 11-7 की बढ़त बना ली। भारतीय जोड़ी ने कड़ी चुनौती दी, लेकिन स्पेन की जोड़ी का मुकाबला बराबरी पर रखने में सफल रही। निर्णायक तीसरे गेम में भारतीय जोड़ी

0: ने फिर से 11-6 की मजबूत बढ़त हासिल कर ली। इस जोड़ी ने इसके बाद अपनी लय बनाए रखी और बिना ज्यादा परेशानी के मैच अपने नाम कर लिया। पुरुष सिंगल्स क्वालिफायर में रौनक चौहान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुख्य ड्रॉ में जगह बना ली है। उन्होंने पहले फ्रांस के एनोगार्ट रॉय को 21-19, 21-16 से हराया, फिर चीनी ताइपे के कुओ कुआन लिन को 13-21, 21-14, 21-10 से मात देकर आगे बढ़े। चौहान के सामने अब शुरुआती दौर में हमवतन एस शंकर मुथुस्वामी सुब्रमण्यम की चुनौती होगी। पांचवी वरीयता प्राप्त किदांबी श्रीकांत पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में अपने ही देश के सनीत दयानंद से भिड़ेंगे। भारत की ओर से महिला सिंगल्स में भी मजबूत भागीदारी देखने को मिलेगी। इसमें रक्षिता श्री संतोष रामराज, श्रियांशी वली शेट्टी, अनमोल खरब, देविका सिहाग, तानिया हेमंत, आकर्षी कश्यप व तन्वी शर्मा हिस्सा लेंगी। शक्ति सिंह, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात हॉकी पर। हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन में होने वाले एक्सपोजर टूर के लिए 24 सदस्यीय भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। आइए जानते हैं किन खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया।
2: युवा भारतीय टीम की अगुवाई कप्तान खैदेम शिलेमा चानू करेंगी। निधि और एंगिल हर्षारानी मिंज टीम की गोलकीपर होंगी। डिफेंसिव यूनिट में पूजा शाहू, सुप्रिया मधु, एफ लालवी अक्सियामी, लालने ईपुई और पार्वती टोपनो शामिल हैं। मिडफील्ड में कप्तान चानू, तनुजा टोपो, सुप्रिया कुजूर, पूजा मलिक, विनिमा धन, गीता यादव, रोशनी आइंद और तनुश्री दिनेश कुडू को शामिल किया गया है। फॉरवर्ड लाइन में सुखवीर कौर, शशि खासा, लालरिन पुई, निशा मिंज, पूर्णिमा यादव, काजल सानिका, चंद्रकांत माने और कृष्णा शर्मा को जगह दी गई है। 9 दिन का ये एक्सपोजर टूर यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में स्कॉटलैंड सीनियर महिला टीम के खिलाफ 2 मैचों से शुरू होगा। इसके बाद लीले शॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लैंड और बेल्जियम की साथी जूनियर टीमों के खिलाफ मैच होंगे। यह दौरा जूनियर एशिया कप और अन्य आगामी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों की तैयारियों का अहम हिस्सा है। इस दौरान खिलाड़ियों को विदेशी परिस्थितियों में खेलने का अनुभव मिलेगा, जिससे उनके खेल और आत्मविश्वास में सुधार होगा। आनंद पाठक, स्पोर्ट्स कैन।
1: उधर FIH प्रो लीग के लंदन लेग के अपने पहले मैच में भारत ने 1 गोल से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए पाकिस्तान को 4-3 से शिकस्त दी। सुनते हैं इस मैच का हाल।
3: भारत के लिए अभिषेक ने 21वें, नीला कांता शर्मा ने 24वें, सुखजीत सिंह ने 34वें और राजेंद्र सिंह ने 52वें मिनट में गोल किए। वहीं पाकिस्तान के तीनों गोल पेनल्टी कॉर्नर से हुए। ली वैली हॉकी और टेनिस सेंटर में कल खेले गए रोमांचक मुकाबले के 8वें मिनट में नदीम अहमद ने गोल करके पाकिस्तान को शुरुआती बढ़त दिलाई, लेकिन हरमनप्रीत सिंह की भारतीय टीम ने दूसरी क्वार्टर में जबरदस्त वापसी की। उन्होंने 2 गोल किए और फिर तीसरे और चौथे क्वार्टर में एक एक गोल करके मजबूत बढ़त बना ली। क्रेग फुल्टन की टीम ने मैच के अंतिम 10 मिनट में कुछ गलतियां की, जिससे पाकिस्तान को 2 गोल करने का मौका मिला। इसी के साथ जीत का अंतर तो कम हुआ, लेकिन मुकाबले ने एक रोमांचक मोड़ ले लिया। खेल के हर पहलू में भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा। मैन इन ब्लू ने 30 बार सर्कल में प्रवेश किया, जबकि उनके प्रतिद्वंदी केवल 9 बार ही ऐसा कर पाए। उन्हें 11 पेनल्टी कॉर्नर मिले, जबकि पाकिस्तान को 8 मिले। हालांकि वे केवल 2 पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदल पाए, जबकि पाकिस्तान ने 3 गोल किए। इस जीत के साथ भारत ने FIH प्रो लीग के आखिरी 2 राउंड के लिए यूरोप के मौजूदा दौरे पर अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखा। रॉटरडैम में हुए पिछले लेग में उन्होंने अहम मैचों में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी और मेजबान नीदरलैंड्स को हराया था। प्रो लीग के 13 मैचों में भारत की यह तीसरी सीधी जीत है। अब इस टीम के 13 अंक हो गए हैं। हरमनप्रीत सिंह की टीम ने 1 मैच शूटआउट में जीता है, 2 मैच ड्रॉ खेले हैं और 7 मैच हारे हैं, जबकि पाकिस्तान ने अब तक अपने सभी 13 मैच गवाए हैं। इस जीत के साथ भारत वर्ष 2016 के बाद से सीनियर और जूनियर स्तर पर पाकिस्तान से नहीं हारा। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात धैर्य और एकाग्रता वाले खेल निशानेबाजी पर। जर्मनी के सोहल में भारत ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम जूनियर इवेंट में रजत पदक जीता। पदक तालिका में भारत पहले स्थान पर है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
3: ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में व्यक्तिगत टीम और मिक्स टीम स्पर्धाओं में लगातार अच्छे प्रदर्शन से भारतीय टीम पहले स्थान पर बरकरार है। वंशिका चौधरी और शिवा नरवाल की भारतीय जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। शिवा नरवाल ने कल 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में रजत पदक और

0: 4 रजत और 7 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: और अब बात क्रिकेट पर। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में कल भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में भारत ने अब तक 3 में से 2 मुकाबले जीते हैं। पहले मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। वहीं दूसरे मुकाबले में दमदार प्रदर्शन करते हुए नीदरलैंड्स को भारत ने 95 रन से मात दी। ICC ने एक दिवसीय क्रिकेट रैंकिंग जारी कर दी है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल बल्लेबाजी रैंकिंग में 2रे स्थान पर पहुंच गए हैं। उधर रांची में छोटा नागपुर रॉयल्स ने झारखंड प्रीमियर लीग के पहले संस्करण का खिताब अपने नाम कर लिया है। और अब बात एथलेटिक्स पर। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी 100 मीटर बाधा दौड़ खिलाड़ी ज्योति याराजी ने आज राष्ट्रीय अंतरराज एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन एशियाई खेलों का क्वालिफिकेशन मानक हासिल कर शानदार वापसी कर ली है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
2: It is clearly our responsibility.
3: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
2: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
4: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द से जल्द

0: अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी होने वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
2: The Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
1: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
3: We had 26 delegates from
4: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
1: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देशभर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत

0: श्री राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
1: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की ढेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, NDRF, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजाली स्थित पोसा में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
2: I also refer to the unwarranted... मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
3: It has always been, is and will remain so.
0: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरी और कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में INS कवरत्ती पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अम्बरीश सक्सेना।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर 94.66 पर बंद हुआ।
0: फीफा फुटबॉल विश्व

कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
2: नमस्कार श्रोताओं, हर साल देश में कुछ ऐसी प्रतिभाओं और ऐसे प्रेरणादायी बच्चों को आप राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करते हुए देख पाते हैं, जिन्होंने देश में अपनी वीरता से, अपने समाज सेवा से और तमाम क्षेत्रों में अपने प्रेरणादायी कामों से देश को प्रेरित किया है। तो इस वर्ष भी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो आज हम कार्यक्रम में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के महत्व, इसकी नामांकन की प्रक्रिया पर हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे और बातचीत करेंगे, और साथ ही हम पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं और जो नामांकित होकर जिन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था उन बच्चों से भी उनकी कहानियां सुनेंगे। तो आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा कार्यक्रम में। हम सबसे पहले तो स्वागत करेंगे महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
3: सबसे पहले मुझे आपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी प्रेरणादायक पहल के बारे में बात करने के लिए यहाँ मेरा आना अत्यंत में मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
2: जी, इस बार का जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है उसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा हमारे जो देश भर के सुनने वाले परिवार हैं, बच्चे हैं, उनको जानकारी दें और बताएं कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का मकसद क्या है, किस तरह से इस बार का ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो पूरी प्रक्रिया है ये इस बार भी विशेष है।
3: जी, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जिसको हम लोग शॉर्ट में PMRBP भी बोल सकते हैं, 5 से 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इस आयु के, उनके लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में दी जाती हैं। ये श्रेणियां हैं बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इन 6 श्रेणियों में जो बच्चे उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त करते हैं उनको हम लोग इस पुरस्कार के माध्यम से सम्मानित करते हैं। और यह पुरस्कार हमारे युवा नागरिकों के साहस, प्रतिभा और योगदान को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया है।
2: जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस बार की जो प्रक्रिया है नामांकन की वो किस तरह से, हमारे आप सुनने वालों को बताना चाहेंगे उसके बारे में, और क्या क्या योग्यताएं या क्या क्राइटेरिया है पूरा।
3: जो हमने आपको पूर्व में बताया कि 6 श्रेणियां आइडेंटिफाई की गई हैं, तो इसमें जो एक्सीलेंट अचीवमेंट्स होते हैं इन 6 फील्ड्स में से कोई भी फील्ड में अगर किसी बच्चे का एक अत्यंत ही मतलब उत्कृष्ट उन्होंने अगर कोई कार्य किया हो, काम किया हो, तो वो उसको दर्शाते हुए हमारी जो आवेदन की प्रक्रिया है उसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
2: जी,

0: तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे ये 6 श्रेणियां रखी गई हैं, इन श्रेणियों को हमने देखा है कि जो अब इन श्रेणियों के होने से एक विविध तरह के प्रतिभाएं हमारे सामने पेश होती हैं हर साल। तो इन श्रेणियों को जिस तरह से अब 6 किया गया है और अलग अलग श्रेणियां हैं, तो उनके बारे में भी हमारे सुनने वालों को हम चाहेंगे कि आप विस्तार से बताएं कि कौन कौन सी श्रेणी है और किस तरह से इन श्रेणियों से अलग अलग प्रतिभाओं के जो बच्चे हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत हो पाते हैं।
1: देखिए, जैसे पहली जो श्रेणी है बहादुरी, बहादुरी का मतलब अंग्रेजी में ब्रेवरी शब्द यूज करते हैं,
0: जी
1: तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपनी जान की बाजी लगा के दूसरों को बचाते हैं। ऐसे हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं और पिछले वर्ष भी उत्तर प्रदेश से और अन्य राज्यों से भी कई ऐसे उदाहरण आए थे जिसमें दो बच्चे तो पोस्टह्यूमस मतलब जिनका देहांत हो गया था और उनको मरणोपरांत ए मतलब अवार्ड दिया गया था, तो उन बच्चों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अन्य बच्चों को बचाया था। एक यूपी का बच्चा था जिसने जो है उसके पिताजी को एक मगरमच्छ ने पकड़ रखा था, वो एक पानी के स्रोत में अपने पिताजी को उन्होंने जो है बचाया था। ये तो मैंने बहादुरी की बात की। सामाजिक सेवा की बात करें तो पिछले वर्ष एक केस आया था जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक हमारा बच्चा वो हमारे जवानों को अपनी सेवाएं दे रहा था, तो सामाजिक सेवा का यह बहुत ही अत्यंत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे ही एनवायरनमेंट के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में भी लोगों ने कई सारे ऐसे उत्कृष्ट कार्य किए हैं और आज आपने जिन बच्चों को शामिल किया है वो भी इसके बारे में और आपको उदाहरण स्वरूप बताएंगे। खेल की अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स की, तो वैभव सूर्यवंशी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा
0: जी जी
1: और वो नित्य नए नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने वैभव सूर्यवंशी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया था। पांचवी जो कैटेगरी है कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति मतलब आर्ट एंड कल्चर, इसमें भी पूर्व के वर्षों में हम लोग कई बच्चों को सम्मानित कर चुके हैं और इसमें किसी भी प्रकार की प्रतिभा हो सकती है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। इसी प्रकार जो लास्ट कैटेगरी होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हमारे बच्चे बहुत आगे जाके काम कर रहे हैं, इवन AI से रिलेटेड, और इस
0: जी
1: प्रकार की भी एंट्रीज आ रही हैं। तो कुल मिला के इन 6 एंट्रीज में 6 जो मतलब श्रेणियां रखी गई हैं, इसमें काफी बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ के बच्चे आ रहे हैं और उनकी हमारे पास नॉमिनेशंस आ रही हैं।
0: जी आपसे सर हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये भी एक बड़ा फोकस रहता है कि जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो देश के कोने कोने से आए, दूर दराज गांवों से आए और ऐसे वर्गों से आए जो वंचित हैं, हाशिए पर हैं, दिव्यांग हैं। तो इस बार भी क्या इन्हीं बातों पर फोकस होगा नॉमिनेशन के वक्त कि देश के अलग अलग कोनों से, दूर दराज के इलाकों से भी जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाए?
1: अवश्य। देखिए, हम लोगों का एक प्रयास ये भी रहता है कि हम भारत के हर कोने से, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, सारे रीजन से हम लोगों का तो ये भी प्रयास रहता है कि यथासंभव मतलब हर जोन और हर राज्य से भी हम बच्चों को शामिल कर सकें। हम लोग हर साल 20 से 25 बच्चों को सम्मानित करते हैं, तो प्रयास यही रहता है कि एक तो भारत के हर एक कोने से बच्चे आए, दूसरा ये भी है कि जो बच्चे आर्थिक परिस्थितियों से, जिनके पेरेंट्स उतने वेल टू डू नहीं हैं, मतलब जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जो कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो प्रयास ये रहता है कि हर प्रकार के, हर वर्ग के और विशेषकर वैसे बच्चे जो कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, उनके योगदान को हम लोग जो है उनको सराहा जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी संख्या में सम्मानित किया जाए।
0: बिल्कुल। और हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे परिवार वालों और बच्चों के मन में ये प्रश्न होगा कि जब बच्चे नॉमिनेशन के लिए खुद का आवेदन करेंगे, तो इसमें हम देख रहे थे कि दो प्रक्रिया है, कि एक थर्ड पार्टी नॉमिनेशन और सेल्फ नॉमिनेशन। तो इसके बारे में भी आप कुछ हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगे कि इन दोनों प्रक्रियाओं को रखने का मकसद क्या है, क्योंकि इसमें यह भी है कि बच्चा खुद से भी आवेदन कर सकता है या किसी संस्था या परिवार या कहीं और से भी उसकी प्रतिभा का आवेदन किया जा सकता है।
1: जी, नॉमिनेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि
0: जी
1: नॉमिनेशन ऑलरेडी 1 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है और 31 जुलाई तक नॉमिनेशंस होंगे, और इसके लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in
0: जी
1: इसके माध्यम से आवेदन किया जा सकता है और यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। जो आपने मूल प्रश्न पूछा था कि कैसे नामांकन किया जा सकता है, कैसे नॉमिनेशंस किए जा सकते हैं, तो बच्चा स्वयं भी

0: अपना नामांकन कर सकता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसे होती है कि बच्चे को उतनी जानकारी नहीं होती, तो कोई संस्था भी उनके बिहाफ पे, उनके पेरेंट्स या कोई भी रिश्तेदार या कोई भी संस्था उनके बिहाफ पे भी नॉमिनेशंस कर सकती हैं।
1: जी, जो ये प्रतिभावान बच्चे हैं, इनकी निश्चित रूप से अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिभाओं को हम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जरिए समझ पाते हैं। तो मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि आवेदन के बाद की प्रक्रिया क्या रहती है, जब उनका चयन हो जाता है इस पुरस्कार के लिए, उसके बाद की प्रक्रिया के बारे में भी आप अगर हमारे सुनने वालों को बता सकें।
0: देखिए, जब बच्चे का चयन हो जाता है तो एक बात ये रहती है कि थोड़ी सी गोपनीयता का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम
1: बिल्कुल
0: किसी बच्चे को जिस दिन पुरस्कार देने का दिवस होता है उससे पहले ही उनके नाम सार्वजनिक ना हो जाएं, तो थोड़ा सा हमको ये ध्यान रखना होता है। तो जिन बच्चों का चयन होता है 2 से 3 दिन या 4 दिन पूर्व हम संबंधित जिले के कलेक्टर साहब को बताते हैं, और वहां के जो कंसर्न कलेक्टर साहब होते हैं वो फिर उस बच्चे से, उस बच्चे के परिवार से संपर्क करते हैं, और उन बच्चों को वो जहां भी हो, देश के जिस भी कोने में हो, उनको हम बकायदा हवाई जहाज के माध्यम से, या आसपास के बच्चे हों
1: जी
0: तो मतलब बाय रोड भी वो आ सकते हैं, तो उनके आने, उनके लाने, ले जाने, ठहराने वो सारी व्यवस्थाएं करते हैं, और उनके साथ उनके पेरेंट्स या परिवार का कोई एक सदस्य भी आ सकता है, तो उनको बकायदा हम जहां भी पुरस्कार दिया जाता है, मोस्टली दिल्ली में ही होता है, तो हम उनके लिए पूरी व्यवस्था करते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो उनका चयन होने के पश्चात उनको इन्फॉर्म करने, उनको कम्युनिकेट करने के साथ साथ उनको उस स्थान से दिल्ली लाने और दिल्ली से वापस छोड़ने और यहाँ पे ठहरने, और कार्यक्रम जहां भी हो, चाहे राष्ट्रपति भवन में हो या विज्ञान भवन में हो या अन्य किसी स्थल पे हो, हम पूरी व्यवस्था करते हैं ताकि उनको किसी प्रकार से कोई कठिनाई ना हो और वो उस पुरस्कार को ग्रहण कर सके।
1: बिल्कुल सर, क्योंकि इस राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में हम सभी जानते हैं कि बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक, स्कूलों, संस्थाओं की भी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वो अपने आसपास असाधारण बच्चों को तलाश सकते हैं। तो अंत में हम आपसे उन स्कूलों, अध्यापकों और जो शिक्षक हैं या परिवार हैं, अभिभावक हैं या पूरा समाज है, उसके लिए आप कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि वो अपने आसपास किस तरह से बच्चों को तलाश सकते हैं और उसके लिए नामांकन कर सकते हैं 31 जुलाई से पहले पहले, जैसे कि ऐसे बच्चे जो असाधारण हैं, जिन 6 श्रेणियों की हमने बात की, उन 6 श्रेणियों में अगर किसी भी तरह की उनमें ऐसी असाधारण प्रतिभा दिखाई देती है जो इस पुरस्कार के लिए बहुत जरूरी है या इस पुरस्कार के लिए खरी उतरती है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे और कुछ आप बताना चाहेंगे अंत में?
0: देखिए, इस पुरस्कार के बारे में इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार हो, इसके लिए हम लोग न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं, इसके अलावा रेलवेज पे भी हमारी एक पट्टी चलती है ताकि उसका प्रचार प्रसार हो सके। इस बार भारतवर्ष के समस्त कलेक्टर्स को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को मैंने स्वयं डीओ लेटर लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि जो भी बच्चे उनके जिले में हों, आसपास में हों, उनके बारे में नॉमिनेशंस भेजें। इसी के साथ साथ हमने ऑनरेबल गवर्नर्स, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, इसके अलावा माननीय जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इसके अलावा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी जो महिला एवं बाल विकास की संस्थाएं हैं जैसे आंगनबाड़ी हैं और अन्य संस्थाएं हैं, सारे स्कूल्स में, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से सारे स्कूल्स में, और अन्य सारे विभाग, जो भी महत्वपूर्ण विभाग हैं जहां से हमें एंट्रीज प्राप्त हो सकती हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय संगठन हो, नवोदय विद्यालय संगठन हो, समिति हो, तो हमने इस बार प्रयास ये किया है कि हमारी इस योजना या इस पुरस्कार के बारे में पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचार प्रसार हो ताकि ज्यादा से ज्यादा एंट्रीज आ सकें। तो मैं समस्त भारतवर्ष के समस्त नागरिकों से और बच्चों के अभिभावकों से, उनके जो टीचर्स हैं स्कूल के, उन सबसे यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आपको कोई भी बच्चा ऐसा अगर आपके ध्यान में आता है, आपके संपर्क में आता है जिसमें
1: जी
0: प्रतिभा है, और मैं कहना चाहूंगा यहाँ कि भारतवर्ष में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि उस प्रतिभा को तराशने की जरूरत है, तो हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि आपको कोई भी ऐसा बच्चा जो उत्कृष्ट कार्य करता हुआ दिखे, मिले या आपके संपर्क में आए, उनके जो नॉमिनेशंस हैं आप जरूर उनके नॉमिनेशंस करें ताकि बड़ी से बड़ी संख्या में हमारे पास नॉमिनेशंस आएं ताकि हम इन बच्चों को पुरस्कृत कर सकें।
1: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर, आपके जो भी बातें हैं निश्चित रूप से हमारे देश भर के

0: उठाया है, देश के लिए बहुत बड़ा अमूल्य योगदान दिया है, समाज को अपने कारनामों से प्रेरित किया है। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ी है शिवानी हसुरु, जो एक 17 वर्षीय है, एक पैरा एथलीट है, और दिव्यांग होना उनके लिए कोई बाधा नहीं है। जैवलिन, शॉटफुट थ्रो, इन सभी में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने मेडल्स जीते हैं। तो शिवानी, बताएं अपनी कहानी हमारे सुनने वालों को, आप कहाँ से आती हैं और किस तरह से आपने अपनी छोटी सी आयु में पैरा एथलीट होने का इतना बड़ा गौरव हासिल किया है।
1: मेरा नाम शिवानी है, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ और मैं पैरा
0: जी
1: एथलीट हूँ, वो शॉट पुट जैवलिन करती हूँ। तो मेरे को पहले बचपन से ही मेरा हाथ नहीं है,
0: जी
1: तो पहले बचपन में बहुत फील होती थी लाइक मेरे को हाथ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी ऐसा। अभी मैं नवोदय स्कूल में पढ़ती थी, 6 से लेकर 12 तक। बचपन में बहुत लोग बहुत कुछ बोला है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना है, तेरे को हाथ नहीं है वैसा। तो मम्मी पापा ने एक ही बात बोला है कि हम तो बड़े करेंगे, तुम कुछ भी मत बोलो, हम है इसके साथ, ऐसा बोल के मेरे को साथ दिया है। ऐसे मेरे को बचपन से हॉस्टल में भेजा है कि मेरे को लाइक आदत पढ़ने के लिए, विदाउट हैंड करने के लिए जो भी। फिर मैं नवोदय स्कूल में गई हूँ 6th से लेकर 12th तक। फिर
0: जी जी
1: एक हैदराबाद में आदित्य मेहता फाउंडेशन है, जिसमें ओनली पैरा एथलीट्स को सपोर्ट करते हैं। उसमें मेरा डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में मेरा बेस्ट लिया था, तो मेरा शॉट पुट जावलिन में अच्छा था, तो मेरे को ट्रेनिंग देते हैं, साथ में कंपटीशन भी भेजते हैं। वैसे मैं शॉट पुट जावलिन में स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल तक गई हूँ। इंडिया के लिए 4 गोल्ड मेडल लाई हूँ, और ऐसे मेरे पास अभी अभी तक 19 मेडल्स है, जिसमें से 16 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज है। और मैं उसके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना
0: बिल्कुल
1: चाहती हूँ आगे से।
0: बिल्कुल, हमारी बहुत शुभकामनाएं शिवानी आपके साथ। जिस तरह से आपने अपनी छोटी सी उम्र में पैरा एथलीट होने का एक बड़ा अवसर हासिल किया और साथ में आपने बहुत सारे मेडल्स जीते, तो ये मेडल्स की झड़ी आपके लिए लगातार बनी रहे। और आपसे बस ये भी मैं जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, क्या क्या कैसा मन में उत्साह था, इसके बारे में भी हमारे सुनने वालों को बताएं।
1: कभी भी मैं टीवी में देखती थी नरेंद्र मोदी जी को और मैम को, द्रौपदी मुर्मू मैम को, मैं सोचती थी इतना बड़े लोगों से मैं कब मिलूंगी, ऐसा सोचती थी। फिर सोचा भी है कि मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी, ऐसा सोची थी। पर मैं लाइक बहुत खुश हूँ ये अवार्ड मिला है। उधर जाके सर से, पीएम नरेंद्र मोदी जी से बात करना, उनसे इंटरेक्ट करना, ये सब कुछ मेरे को सपना जैसा लगा, पर वो सच था, बहुत अच्छा लगा।
0: जी बहुत धन्यवाद शिवानी, बहुत शुभकामनाएं आगे के आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। अब हम जुड़ रहे हैं एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व से, और हम सभी जानते हैं कि ये सभी बच्चे हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आयशी प्रिशा बोरा, इन्होंने छोटी सी 14 साल की उम्र में एक यंग इनोवेटर होने का गौरव हासिल किया। साइंस और इनोवेशन की कैटेगरी में इन्हें ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान मिला, और इन्होंने खासतौर पर सस्टेनेबल फार्मिंग और वेस्ट रिसाइकलिंग के नए नए तरीके खोजे हैं। तो चलिए इनसे ही जानते हैं कि कैसे ये एक यंग इनोवेटर होते हुए सस्टेनेबल फार्मिंग और जो रिसाइकलिंग है और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको लेकर काम कर रही हैं। बहुत स्वागत है आयशी आपका।
2: नमस्कार सर, थैंक यू सर।
0: जी तो बताएं अपने बारे में, आपको सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी प्रोफाइल से ही लग रहा है कि एनवायरनमेंट से बहुत प्यार है और हम सभी को होना भी चाहिए, तो बताएं कि किस तरह से आपके मन में इस तरह की बातें आती हैं। जैसा कि हम आपने सुनने वालों को बता भी रहे थे कि जो सस्टेनेबल खेती है या जो वेस्ट रिसाइकलिंग है, ऐसे इस इन सब चीजों पर काम करने को लेकर कैसे प्रेरणा आती है।
2: मेरा मेन मोटिव यही होता है कि मैं जितना हो सके उतना अपनी मदर अर्थ को प्रोटेक्ट कर
0: बिल्कुल
2: सकूं। सस्टेनेबिलिटी मेरे हिसाब से एक जरूरत बन चुकी है आज के समय में, सो दैट्स व्हाई आई वर्क ऑन दीज स्टफ एंड या आई वांट टू वर्क फर्दर ऑन इट, मेकिंग मोर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स एंड व्हाट एवर आई कैन डू। सो
0: जी, तो बहुत इंटरेस्टिंग आपके इनोवेशन है आयशी। ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे कोई ऐसा आपका कोई सपना है कि अपना स्टार्टअप हो, आगे आपकी कोई कंपनी हो, आपके प्रोडक्ट्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के जो वेस्ट मटेरियल के प्रोडक्ट्स हैं वो बिकें, तो कुछ ऐसा सोचा है आपने।
2: राइट नाउ आई विल बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, आई डोंट नो अबाउट स्टार्टअप्स एंड ऑल, बट एज ऑफ टुडे
0: हाँ
2: व्हाट आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन

0: टू कम अप विद द मोस्ट सस्टेनेबल सोल्यूशन टू
1: सॉल्यूशंस.
0: ऑल दी सोसाइटल प्रॉब्लम्स. एंड इफ फ्यूचर आई गेट द चांस टू इम्प्लीमेंट देम इन रियल लाइफ, डेफिनेटली आई एम वेरी ईगर टू डू दैट. बट राइट नाउ आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन बिल्डिंग द सोल्यूशंस, एंड एज ऑफ नाउ आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन माई स्टडीज ऑल्सो, एज आई एम अ 10th ग्रेडर दिस ईयर.
1: साथ में आपसे भी वही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था, क्या आपके मन में एक्साइटमेंट था, उसके बारे में भी आप बताएं.
0: इट वॉज समथिंग दैट आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ. एंड इवन टूडे, आज भी मैं शब्द नहीं ढूंढ पा रही हूँ मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ. बहुत अच्छा लगा. लाइक इट्स समथिंग द लिटिल आईशी इन साइड मी वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर, एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट टू बी ऑनेस्ट.
1: थैंक यू सो मच आयशी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपने एक्सपीरियंस, अपने इनोवेशंस के बारे में हमारे सुनने वालों को बहुत डिटेल में बताया. थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू सर.
1: अब हमारे साथ एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व है, एक और हमारे साथ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता पिछले साल के जुड़ रहे हैं, वंश तयाल. वंश तयाल ने अपने जीवन में किसी भी तरह के मिसिंग को, किसी भी तरह के लॉस को लॉस नहीं समझा और आज वो एक बहुत बड़े यूथ लीडर हैं और एक केयर गिवर हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्हें सराहना मिली है, तो वंश को हम जोड़ना चाहेंगे. वंश, अपने बारे में बताएं थोड़ा सा. हम सभी जानते हैं कि आपका परिवार नहीं है, माता पिता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपने अपने जीवन में किसी भी तरह की रुकावट को महसूस नहीं किया और आज आपने इस लॉस को उबारते हुए एक बहुत बड़े यूथ लीडर के तौर पर उभर कर सामने आने का खुद को मौका दिया. बताएं अपने बारे में कुछ.
2: तो ये मौका मिले बहुत एक कठिन समय रहा, जब तक मेरे माता पिता नहीं थे, लेकिन बहुत रिश्तेदारों का सपोर्ट नहीं था, बहुत कठिन समय रहा मेरे लिए. बहुत ही आगे मूव ऑन कैसे करना है, कैसे खड़ा होना अपने पैरों पे, बहुत मुश्किल था लाइफ में, है ना. कि अब तो हिम्मत हार गई थी कि क्या ही करेंगे, कहाँ जाएंगे, अकेला हूँ, क्या करूंगा, ऐसे रह जाऊंगा. बहुत मुश्किल, रिश्तेदारों ने भी सपोर्ट नहीं किया बिल्कुल भी, कुछ नहीं बना. फिर थोड़ा होप हुई एक, फिर होम में आया मैं, चिल्ड्रन होम में आया चंडीगढ़ में. फिर देखा वहां पर एनवायरमेंट, देखा लगा ना, कुछ 4-5 महीने लगे, हुआ थोड़ा सा बैकअप, आया धीरे धीरे सपोर्ट आया. वहां के स्टाफ ने काफी सपोर्ट किया मुझे इस बात के लिए. उसके बाद फिर एक छोटा सा बच्चा आया, मतलब बहुत छोटा बच्चा था, स्पेशल बच्चा, लाइक सेरेब्रल पाल्सी थी उसको, मतलब वो चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था. तो उससे काफी इंस्पायर हुआ, काफी मोटिवेट हुआ उस बच्चे से मैं, कि हाँ चलो बहुत छोटा है, और उसको बच्चे को उनके माँ बाप ने छोड़ दिया उसको भी, हाँ उसकी हालत ऐसी है. तो मतलब फिर भी मैं रिलायबल हूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, कि कुछ भी कर सकता हूँ. तो आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम, कि हाँ यू कैन डू वेल, यू कैन सर्वाइव. तो मैं तो क्या ही हूँ, मैं तो फिर भी अपने तो काफी बड़ा हूँ, 12-13 साल का था उस टाइम. तो काफी अच्छा मौका था, फिर मैंने फिर काफी इंस्पायर होके मैंने सोचा कि इसको वॉलंटियर सर्विस दूंगा. और काफी जिस होम में मैं रहता था तो काफी स्पेशल बच्चे भी रहते थे वहाँ पे, तो उन सबकी हेल्प करना और हेल्प आउट करके, मतलब उन सबकी मदद करके, और उस बच्चे को मैंने काफी नाइक हील्स टूडे, की वो चल भी सकता है, खा भी सकता है, बोल भी पा रहा है आराम से. तो काफी था ये समय. फिर धीरे धीरे नॉमिनेशन का पता लगा, कि हाँ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का भी नॉमिनेशन मिल जाता है सोशल वर्क में. तो मेरे सुपरिटेंडेंट सर थे, मिस्टर लालित अरोड़ा, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया. काउंसलर मिस्टर प्रदीप ठाकुर थे, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया कि हाँ करो करो. तो फिर उन्होंने, दोनों ने इकट्ठे मिलकर फॉर्म वगैरह भरा मेरा.
1: बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने इतनी छोटी सी उम्र में अपने जीवन के अनुभव से जो समाज सेवा का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, ये बहुत सच में सराहनीय बात
2: जी
1: है. हम आपसे और जानना
2: जी
1: चाहेंगे
2: जी
1: कि फ्यूचर में जिस तरह से हम भी जानते हैं कि देश भर में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके परिवार नहीं है, उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, क्या आपने सोचा है फ्यूचर में कि आप कैसे अपने इस समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाना चाहेंगे?
2: जैसे कि मेरा एक स्कोप है इन फ्यूचर में, कि मैं एक अच्छा पढ़ाई करके साइकोलॉजिस्ट बनूं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. और जितनी करीबी से मैंने मुसीबतों को देखा है, वो मैं चाहता हूँ कि वो लोग ना देख पाए, कि वो युवा पीढ़ी ना देख पाए, जो बच्चे हैं वो ना देख पाए. उनका साथ ही साथ में सोशल सर्विस कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, और सबकी हेल्प आउट करना चाहता हूँ, कि जितनी मेरे से हो सके, मतलब सेल्फ होके वो मैं हेल्प करना चाहूंगा उनकी.
1: बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं वंश आपके लिए हमारी कि आप इस तरह से अपने समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाते रहें. बहुत बहुत धन्यवाद. अब हम जुड़ते हैं सुमन सरकार से. सुमन सरकार एक तबला वादक हैं, छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत सारे मंचों पर अपने तबला वादन का परफॉर्मेंस दिया है और साथ में इनका एक और काम है कि ये जो ऐसे बच्चे जो म्यूजिक के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ट्रेनिंग, उनको फ्री ट्रेनिंग की भी इन्होंने कोशिश की है. तो ऐसे भी समाज सेवा का ये काम कर रही हैं। बहुत स्वागत है सुमन आपका।
3: सर आपको बहुत धन्यवाद।
1: तो सुमन बताएं कि कैसे आपके मन में म्यूजिक को लेकर ये इंटरेस्ट आया था, क्योंकि आपको कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आप अपनी प्रतिभा के बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं।
3: तो सर देखिए, मेरा जर्नी जो शुरू हुआ था 3 साल की उम्र में ही शुरू हो गया था। जब मैं एकदम छोटा था तो तभी मैं ये तबला को मतलब आसपास के जगह कुछ चीजों को बजाने की कोशिश करता था। मेरे फादर का जो बहुत सपना था वो थोड़े शास्त्रीय संगीत का चर्चा करेंगे। मेरे परदादा जो थे वो श्रीखोल बजाते थे, तो मेरे फादर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए ये सपना पूरा नहीं हो पाया, तो उसी हिसाब से उन्होंने मेरे अंदर ये सपना देखना शुरू किया। तो
1: जी
3: जब मैं 3 साल का उम्र का था तभी मेरे पापा ने ये नोटिस किया कि बच्चे के अंदर ताल का कुछ ज्ञान है, तो मेरे फादर ने शिक्षा चालू कर दिया था मेरे गांव में। मेरे प्रथम गुरु का नाम है श्री पबीर कुमार सरकार, उनसे मैं सीखना चालू किया। तो वहां से जानने शुरू हुआ, तो फिर चलते चलते जब मेरा उम्र 7 साल का हुआ तो मेरा फर्स्ट स्टेज प्रोग्राम था, कंपटीशन था, तो मैं बहुत डरता था तब स्टेज पे सबके सामने बजाने के टाइम। तो मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया, गुरु का आशीर्वाद तो रहता ही है।
1: बिल्कुल
3: तो इसी हिसाब से लाइफ में फर्स्ट जब कंपटीशन दिया तो उसमें मैं फर्स्ट हुआ। मेरा उम्र
1: बिल्कुल
3: तब 7 साल का था, मैं तब फर्स्ट हुआ। तो जो जजमेंट में था उन्होंने बोला कि मेरे फादर को उन्होंने एडवाइस दिया कि बच्चे को और ऊपर ले जाओ और अच्छे गुरु के पास ले जाओ। तभी से मैं कोलकाता के गुरु से सीखने लगा, श्री उज्जवल भारती से। तभी से मेरा जर्नी, ये जो शास्त्रीय संगीत का जर्नी है, तभी शुरू हुआ। धीरे धीरे ये बढ़ता रहा, मैंने रियाज करता, हमारा तो पूरा ही रियाज पे चलता है ये शास्त्रीय संगीत। मैं पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये शास्त्रीय
1: जी
3: संगीत का
1: जी
3: जो प्यार मेरे अंदर बढ़ता रहा।
1: जी और ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे, जो आपकी कोशिश है कि आप फ्री ट्रेनिंग दें जो संगीत सीखने वाले बच्चे हैं उनको, उसके बारे में भी बताएं किस तरह का ये आप काम कर रहे हैं।
3: आज के जो जनरेशन है वो सिर्फ एडुकेशन पे भागता है, तो मेरा एक ही कहना है कि एडुकेशन के साथ साथ ये जो शास्त्रीय संगीत व हमारा कला संस्कृति जो है इसमें भी बहुत बड़े बड़े सम्मान पा सकते हैं, यही मेरा वार्ता रहेगा समाज के अंदर। जो पद्मश्री पद्मभूषण बड़े बड़े जो सम्मान है वो शास्त्रीय संगीत में भी मिल सकते हैं।
1: बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत बधाई भी कि पिछले साल आपने जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये सम्मान हासिल किया। थैंक यू सो मच सुमन।
3: थैंक यू सर।
1: अब हम जुड़ रहे हैं अर्णव अनुप्रिया महर्षि से। इनका जो एक AI पावर्ड रिहैबिलिटेशन सॉल्यूशन है दिव्यांग लोगों के लिए, वो बहुत चर्चा में है, उसने इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन हासिल की है। तो आइए उनके इस सॉल्यूशन के बारे में उनसे जानते हैं, और साथ में जो पिछले साल राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो सम्मान मिला है उसके बारे में भी उससे हम बातचीत करते हैं। अर्णव बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे श्रोताओं को सबसे पहले अपनी इनोवेशन के बारे में बताएं कि किस तरह से आपने AI के जरिए एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की।
4: मेरा जो एक AI सॉल्यूशन है उसका नाम फेयर चांस है, जिसका फुल फॉर्म है फाइन मोटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड रिहैबिलिटेशन चांस। ये उन दिव्यांग लोगों के लिए बना है जिनके उंगलियों की जो ताकत रहती है वो बहुत कमजोर रहती है, उसके रिहैबिलिटेशन के लिए बना है, जैसे पैरालिसिस पेशेंट्स, सेरिब्रल पॉल्सी पेशेंट्स। ये जो AI इनोवेशन है ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कोई भी साधारण लैपटॉप या स्मार्टफोन पे चल जाता है, और इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको एक लाइव असेसमेंट मिलता है, एक लाइव आउटपुट मिलता है कि आप कितना अच्छा आपके उंगलियों के मूवमेंट्स कर रहे हो।
1: आपसे आखिर में मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान है उसको हासिल करके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या मन में था, उसके बारे में भी अपना एक्सपीरियंस बताएं।
4: यही पुरस्कार के माध्यम से मेरे जो ये काम है इसको एक क्रेडिबिलिटी मिली है कि सचमुच का ये असली, मतलब सचमुच का काम कर रहा हूँ जो एक्चुअली दूसरे दिव्यांग लोग और दूसरे पेशेंट्स के काम में आ सकता है।
1: जी आपके लिए बधाइयां भी इस पुरस्कार के लिए, धन्यवाद आप जुड़े हमारे साथ इस कार्यक्रम में। श्रोताओं जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम में हमने महिला और बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजित कुमार जी से चर्चा की राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में, हमारे श्रोताओं को बहुत सी जानकारियां नामांकन से लेकर इस पुरस्कार के मकसद के बारे में जरूर हासिल हुई होंगी, और साथ में कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में हमने पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित कुछ प्रेरणादायी बच्चों से बात की, तो उनके अलग अलग कहानियों को सुनकर भी बहुत सारे सुनने वाले जो बच्चे हैं, परिवार हैं, वो प्रेरित हुए होंगे कि जो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक इस साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, अगर किसी श्रेणी में उन्होंने कोई ऐसा कारनामा किया है, कोई छुपी हुई प्रतिभा है तो जरूर वो सामने आएंगे और नामांकन करेंगे आप सभी का कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए।

0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
2: चर्चा का विषय है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रिर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रिर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इस बीच ओमान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारे के खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के समुद्री संकट को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा कि यह पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के समन्वय से विकसित की जा रही है। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
3: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की ढेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज एसएसकेएम अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उसे भी

0: critically injured patients have been evacuated to Zero by ambulance for treatment. As per input from Kepanya, Deputy Commissioner Shweta Nagarkoti Mehta, the affected area remains inaccessible from both the Azali and Hodgepot sides due to landslides. Chief Minister Pema Khandu has extended his condolences to all those affected and the families anxiously awaiting news of their loved ones. In the FIFA World Cup, Canada will take on Switzerland in Group B match at Vancouver in Canada tonight. The match is scheduled to begin at 12:30 a.m. IST. In another fixture, Bosnia-Herzegovina will face Qatar at Seattle Stadium in Washington. And with that, we end this news bulletin.
1: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं वैष्णवी मुख्य समाचार वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता प्रगति की समीक्षा की विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की यूरोप में भीषण गर्मी का कहर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा अब समाचार विस्तार से वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज सुबह अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को मिलकर काम करना चाहिए सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है
2: It is clearly our responsibility.
3: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए
2: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजुकी ने की चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना नवाचार को बढ़ावा देना विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारे के खोलने की घोषणा की है ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के समुद्री संकट को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है ओमान सरकार ने कहा कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के समन्वय से विकसित की गई है इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़े महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं नाविकों को इस पहल से चरणबद्ध निकासी और पारगमन योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान किए जाने की उम्मीद है ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक ईरान की गैर जरूरी यात्राओं से बचे एक रिपोर्ट
4: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने

0: आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी होने वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज अबूधाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने खाड़ी देश की सुरक्षा के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक में हाल ही में हुई अमेरिका ईरान कूटनीतिक प्रगति, होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात और खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता को दोहराया। 3 दिन के खाड़ी दौरे के दौरान रूबियो कुवैत और बहरीन भी जाएंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि 2 दिन की बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इनस्पेस और अंतरिक्ष विभाग के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
2: We had 26 delegates from
3: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
1: यूक्रेन की सेना ने रूस के एक प्राकृतिक गैस परिशोधन संयंत्र और 2 उपग्रह संचार केंद्रों पर हमले किए हैं। यूक्रेन के जनरल स्टाफ के अनुसार इस हमले में ओरेनबर्ग गैस परिशोधन संयंत्र को निशाना बनाया गया। रूस के रक्षा मंत्रालय के अनुसार रूस की सेना ने रात भर में 323 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। भारत और रूस ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने आज कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है और वर्तमान में ये लगभग $60 अरब तक पहुंच गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकीकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
4: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
1: कांगो में इबोला के अब तक 1094 मामले सामने आए हैं। इससे अब तक 277 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी दैनिक महामारी रिपोर्ट में साप्ताहिक आधार पर पुष्ट किए गए मामलों में वृद्धि दर्ज की है। युगांडा में भी एक इबोला मामले की पुष्टि हुई है, जिससे वहां मामलों की संख्या 20 हो गई है। यूरोप इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस स्थिति को स्वास्थ्य आपातकाल जैसी गंभीर चुनौती बताया है। कई देशों में रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया जा रहा है। फ्रांस में कल इस मौसम का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। देश के दक्षिणी पश्चिमी शहर पिसोस में तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। गर्मी से राहत पाने के लिए जलाशयों और समुद्र तटों का रुख करने वाले लोगों में डूबने की घटनाएं बढ़ी हैं। अब तक 48 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में भी हालत गंभीर बने हुए हैं। वहीं ब्रिटेन में मौसम विभाग ने मध्य और दक्षिणी इंग्लैंड के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। वहीं इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जेगोविना आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अपराजिता नायर विद द वर्ल्ड न्यूज। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal reviews progress of trade talks with US Trade Representative Ambassador Jamieson Greer. External Affairs Minister S. Jaishankar meets his South Korean counterpart Cho Hyun in Seoul, calls for stronger India-South Korea ties amid global challenges. Oman announces opening of a temporary maritime corridor through Strait of Hormuz. Europe witnesses record heat wave. World Health Organization called it health emergency. And in FIFA World Cup, Canada to take on Switzerland in Group B match at Vancouver tonight. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has concluded a series of meetings with U.S. Trade Representative Ambassador Jamieson Greer and his delegation in New Delhi today. In a social media post, Mr. Goyal said they reviewed the progress of the ongoing India-U.S. trade discussions and explored avenues to further deepen economic partnership between both the countries. He also appreciated Ambassador Greer's leadership and the sustained efforts of both teams in advancing the discussions in a constructive and forward-looking manner. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today highlighted the importance of deepening India-South Korea ties amid a challenging global environment, saying that countries with shared values and mutual trust need to work together more closely. In his opening remarks during the meeting with South Korean Foreign Minister Cho Hyun in Seoul, he stressed that the current international situation makes cooperation among trusted partners more important than ever.
6: As foreign ministers, it is our responsibility to take this relationship forward, to oversee what different parts of the government and different parts of our economy, of our country, do with each other in their interaction. In coordinating that, fashioning a more forward-looking, a more contemporary relationship in a more difficult world. And that world requires countries that are like-minded, with shared values, to have mutual trust to work with each other.
5: India strongly objected to Pakistan raising the Kashmir issue at a United Nations forum, accusing Islamabad of politicizing the platform, also slammed it for misusing its position as co-chair instead of being unbiased as behooves the position. The remarks were made by India's permanent representative to the UN in New York, P. Harish, in response to comments by Pakistan's permanent representative, Asim Iftikhar Ahmed.
7: I also refer to the unwarranted remarks made by the representative of Pakistan. It is incredible that a co-chair expected to be balanced and unbiased in conduct has chosen to politicize this forum. I would only like to stress for brevity of time that the Union Territory of Jammu and Kashmir is a matter strictly internal to India. It has always been, is and will remain so.
5: The Indian Embassy in Tehran has issued a revised advisory for Indian nationals in view of the improving security situation in the country. In light of recent positive developments and the improvement in the overall situation, the embassy advised Indian nationals to contemplate about travelling to Iran. According to the advisory, Indian nationals are advised to continue to avoid all non-essential travel to Iran until further notice. The BRICS Heads of Space Agencies Meeting 2026 concluded in Bengaluru today under India's chairmanship. Speaking to the media, ISRO Chairman V. Narayanan said the two-day meeting brought together 26 delegates from 10 countries along with representatives from ISRO, InSpace and the Department of Space. He said discussions focused on the use of remote sensing satellite constellations for socio-economic development, particularly in disaster management and climate change monitoring. India and Russia are working to further enhance their bilateral trade with the

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 10:31 और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हर सिंगार का। और हर सिंगार के इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। और हर सिंगार की इस बेहद खूबसूरत महफिल में हम उन सदाबहार नगमों को लेकर आते हैं जो आपके दिल के बेहद करीब हैं, बहुत ही नजदीक से इसे आप जानते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं और कई बार उस पर आप थिरकने भी लगते हैं। और ये वो सदाबहार नगमे हैं जो अपने ज़माने में तो मशहूर थे ही, आज भी उतने ही मशहूर हैं। उन्हीं नगमों में से आज हम एक बेहद खूबसूरत फिल्म सुहाग से लेकर के आए हैं, एक बहुत ही प्यारा नगमा। और ये फिल्म आई थी 1979 में। अपने जमाने की तो मशहूर ये फिल्म थी ही, अगर आज भी इसे आप देखना चाहेंगे तो आप उसमें खो जाएंगे। आज के सफर में हम चलते हैं हिंदी सिनेमा के उस बेहद खूबसूरत सफर पर जब मोहम्मद रफी की आवाज और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का संगीत मिलकर एक ऐसा जादू रचते थे जो सीधे दिल में उतर जाया करते थे। इनकी जोड़ी ने फिल्मी दुनिया को ऐसे ऐसे गीत दिए जिन्होंने न सिर्फ शोहरत पाई बल्कि सुनने वालों के दिलों में हमेशा के लिए अपनी जगह भी बना ली। तो आइए इसे फिल्म सुहाग का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं। लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफी साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर

सुहाग फिल्म का ये नगमा लता जी और मोहम्मद रफ़ी साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हर श्रृंगार के इस दिलकश महफिल में और हर श्रृंगार के इस दिलकश महफिल में हम आपके लिए लेकर आते हैं उन चुनिंदा नगमों को जहां पर आप अपने दिल की बात करते हैं आप मेरे साथ, और साथ ही साथ हम उन नगमों को आपके लिए लेकर आते हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है, जहां हम सुनते हैं उन फिल्मों की दास्तान जिन्होंने अपने दौर में सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि दिलों पर भी राज किया। और अब बात एक ऐसी ही फिल्म की जिसका नाम है पारस। 1971 में आई यह हिंदी ड्रामा फिल्म अपने दौर की उन बेहतरीन फिल्मों में शुमार की जाती है जिसमें जज्बात भी थे, अदाकारी भी और संगीत का ऐसा जादू भी जो बरसों बाद तक अपनी महक छोड़ गए। सीबी दीक्षित के निर्देशन में बनी पारस में कलाकारों की एक बेहद दमदार फहरिस्त नजर आती है। संजीव कुमार जिनकी अदाकारी में हमेशा एक गहराई और सच्चाई दिखाई देती है, वहीं राखी जिनकी मौजूदगी पर्दे पर नरमी और असर दोनों साथ लेकर आती है, और साथ ही महमूद, फरीदा जलाल, शत्रुघ्न सिन्हा और मदन पुरी जैसे फनकारों ने इस फिल्म को अपनी अदाओं से और भी यादगार बना दिया। तो आइए उसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा आपको सुनवाते हैं, पारस फिल्म का, जिसको संगीत से सजाया था मशहूर संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी ने। उनकी धुनों में एक ऐसी कशिश थी जो सीधे दिल तक पहुंचती थी, और इस नगमे को अल्फाज दिए इंदीवर, कमर जलालाबादी और वर्मा मलिक ने। तो आइए उसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं मुकेश साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल हर सिंगार में। हर सिंगार जहां हम याद करते हैं हिंदी सिनेमा के उन फिल्मों को जिन्होंने अपने दौर में सिर्फ कामयाबी ही नहीं बल्कि एक अलग पहचान भी दिलाई। आज बात एक ऐसी ही फिल्म की जिसने रोमांच, संगीत और स्टारडम तीनों को एक साथ पर्दे पर पेश किया। जी हां, हम जिक्र कर रहे हैं साल 1967 में रिलीज हुई थ्रिलर फिल्म फर्ज की। रविकांत नागाइच के निर्देशन में बनी फर्ज अपने वक्त की एक बेहद दिलचस्प और स्टाइलिश फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में नजर आए जितेंद्र और बबीता और दोनों की जोड़ी ने पर्दे पर एक ऐसा असर छोड़ा कि फिल्मी दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई। फर्ज सिर्फ एक थ्रिलर नहीं थी बल्कि उस दौर के हिंदी सिनेमा में जासूसी अंदाज को एक नया रंग देने वाली फिल्म भी थी। इसकी कहानी में रहस्य है, खतरा है और वो सनसनी भी जो दर्शकों को शुरू से आखिर तक बांध के रखती है। कहा जाता है कि इस फिल्म में बॉन्ड स्टाइल स्पाई ड्रामा की झलक भी दिखाई देती है, खासतौर पर एक एजेंट की मौत की तहकीकात और क्लाइमेक्स में मुख्य विलन से टकराव जैसे पहलू जो इसे और भी दिलचस्प बना देते हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि फर्ज तेलुगु फिल्म की रिमेक थी और इसकी कामयाबी का आलम यह रहा कि आगे चलकर उसकी कहानी की रूह को आगे बढ़ाते हुए दो और फिल्में आई, 1973 में कीमत और फिर 1982 में रक्षा, जिसमें एक बार फिर जितेंद्र नजर आए। और अगर इस फिल्म के संगीत की बात हो तो फिर उसके संगीत का जिक्र भला कैसे अधूरा रह सकता है। अधूरी इसलिए नहीं रह सकती कि इस फिल्म का संगीत दिया था मशहूर जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की और गीतों को अपने अल्फाज से सजाया था आनंद बख्शी साहब ने। इन दोनों में वो जोश भी था, वो नरमी भी और वो फिल्मी कशिश भी, जिसने फर्ज को सिर्फ एक जासूसी फिल्म नहीं बल्कि एक यादगार म्यूजिकल अनुभव भी बना दिया। उस दौर में जब संगीत फिल्म की पहचान हुआ करता था, फर्ज ने अपने गीतों के सहारे दर्शकों के दिलों में एक अलग मुकाम बनाया। तो आइए उसी फिल्म का ये बेहद खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं रफी साहब और सुमन कल्याणपुर की बहुत ही प्यारी आवाजों में।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा हर सिंगार की, और हर सिंगार की इस बेहद खूबसूरत महफिल में हम उन नगमों को लेकर आए हैं आपके लिए जो सदाबहार हैं और हमेशा के लिए आपके दिल में बस गए हैं। उन्हीं नगमों में से अगला नगमा एक बेहद खूबसूरत फिल्म आए दिन बहार के से। यह फिल्म आई थी 1966 में। एक ऐसी फिल्म जिसके नाम में ही बहारों की खुशबू है, आए दिन बहार के। जी हाँ, आए दिन बहार के एक ऐसा नाम जो सुनते ही दिल

में रौनक सी भर दे, जैसे जिंदगी की गलियों में अचानक खुशियों की दस्तक हो गई हो। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं। लता जी और महेंद्र कपूर साहब की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत नगमा आए दिन बहार के से, जिसको लिखा है आनंद बख्शी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल साहब ने।

0: महेंद्र कपूर साहब और लता जी की इन्हीं आवाजों के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत। हर सिंगार से अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार फिर मैं आपके साथ रहूंगा लेकर गीत मेरे मन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफार्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठक की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
2: It is clearly our responsibility.
3: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
2: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
1: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और विमान चालक दल के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज सरकारी एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आज एआई आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन का पंजीकरण, प्रशिक्षण वीडियो देखना, फोटो स्कैनिंग और आरएफआईडी सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें।

आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 11:11:03 और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत का। और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में सुनहरे दौर के उन नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब हैं, जिन्हें आप बहुत ही पसंद करते हैं। सुनहरा दौर यानी गोल्डन एरा, ये वो दौर था जहाँ पर हिंदी सिनेमा ने एक अलग अपनी पहचान बनाई, एक नए नए प्रयोग के साथ और नए नए विषयों पर, सामाजिक विषयों पर फिल्में बनाई गई जो आज तक याद रह गई, और वही फिल्में भारतीय हिंदी सिनेमा की पहचान बनी। तो आइए आज के सफर का आगाज करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म से। आज की फिल्म यानी आज की इस पहली पेशकश में हम जिस फिल्म का जिक्र करेंगे वो है फागुन। साल 1958 में आई इस खूबसूरत फिल्म को विभूति मित्रा ने निर्देशित और निर्मित किया, जबकि कहानी प्रणव राय ने लिखी। पर्दे पर मधुबाला और भारत भूषण की जोड़ी अपनी दिलकश अदाकारी से इस अफसाने को यादगार बना देती है। फिल्म में बीजन एक जमींदार का बेटा नर्तकी बनानी से मोहब्बत करता है, मगर सामाजिक फासले उनके मिलन में दीवार बन जाती है। अधूरी रह गई ये चाहत पुनर्जन्म के जरिए मुकम्मल होने की राह तलाशती है और ये फिल्म इस तरह से आगे बढ़ती है। कमर जलालाबादी ने इस फिल्म के गीतों को लिखा है और ओपी नैयर साहब ने बहुत ही खूबसूरती से इसका संगीत दिया है। तो आइए फिल्म फागुन का ये बेहद खूबसूरत नगमा हम आपको सुनाते हैं आशा जी और मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ों में।

फागुन फिल्म का ये नगमा आशा जी और मोहम्मद रफ़ी साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत नगमे के साथ। और ये नगमा है फिल्म हावड़ा ब्रिज से। यह फिल्म आई थी 1958 में। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में अशोक कुमार मधुबाला और उनके साथ थे के एन सिंह, मदनपुरी, ओम प्रकाश, धूमल सुंदर, ब्रह्मा भरद्वाज, चमनपुरी, निर्मल कुमार, महमूद, मीनू मुमताज वगैरह। इस फिल्म के गीतों को लिखा है कमर जलालाबादी साहब और हसरत जयपुरी ने और इसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा जो कमर जलालाबादी साहब का लिखा हुआ, आवाजें हैं मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले जी की। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत नगमा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में यह नगमा था फिल्म हावड़ा ब्रिज से। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की। और गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में सुनहरे दौर के उन नगमों के साथ हम हाजिर हैं, यानी गोल्डन एरा के उन गोल्डन गीतों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब हैं। तो आइए इस सफ़र को यूं ही बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मशहूर फिल्म के नगमे की तरफ। और वो फिल्म है 1960 में आई के आसिफ साहब के निर्माण और निर्देशन में मुगले आजम। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार, मधुबाला और सादी कलाकारों में दुर्गा खोटे, निगार सुल्ताना, अजीत कुमार, मुराद जिलोबाई, विजयलक्ष्मी, एस नज़ीर, सुरेंद्र, जॉनी वॉकर, जलाल आगा, बेबी तबस्सुम और

गोपी, कृष्ण वगैरह। इस फिल्म के गीतों को लिखा है शकील बदायूनी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है नौशाद साहब ने। और बात जब नौशाद साहब की हो तो फिर उनके संगीत के क्या कहने। उनका संगीतबद्ध किया हुआ नगमा सीधे दिल में उतर जाता है। तो आइए इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा हम आपको सुनवाते हैं लता जी और शमशाद बेगम की बहुत ही प्यारी आवाजों में। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर गीत मेरे मनमीत के इस बेहद खूबसूरत महफिल में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर मैं फेरोज़ आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 11:32 और 45 सेकेंड, और गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में सुनहरे दौर के उन नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है, और आप इसे बार बार सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं, और ऐसे ही नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो गोल्डन एरा की पहचान बनते हैं, सुनहरे दौर की पहचान बनते हैं। ये वो नगमे हैं जो हम सब उन्हें बार बार सुनते हैं, गुनगुनाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सुनहरे दौर के इस नगमे को और आगे बढ़ाते हैं एक बेहद खूबसूरत फिल्म आवारा के एक नगमे से। यह फिल्म आई थी 1951 में। राज कपूर साहब के निर्माण और निर्देशन में बनी इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में पृथ्वी राज कपूर, खुद राज कपूर, नरगिस, लीला चटनीस, के एन सिंह, शशि कपूर वगैरह ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया था। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा जिसको लिखा है शैलेंद्र साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन साहब ने। हालांकि इस फिल्म में दो गीतकारों ने गीत लिखे, एक शैलेंद्र साहब और दूसरे हसरत जयपुरी साहब, पर यह नगमा जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं उसे लिखा है शैलेंद्र साहब ने। तो आइए सुनवाते हैं वही नगमा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर लता जी और मुकेश साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की। और गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में इस सफर को यूं ही बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही मशहूर फिल्म के नगमे की तरफ। और वो फिल्म है 1958 में आई मधुमति। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में वैजयंती माला, दिलीप कुमार, जॉनी वॉकर और साथ ही कलाकारों में प्राण, जयंत, रामायण तिवारी, तरुण बोस और बूडो आडवाणी वगैरह ने

बेहद खूबसूरत अभिनय किया था। इस फिल्म के संगीत की अगर बात करें तो मधुमती का संगीत 1958 का सबसे ज्यादा बिकने वाला हिंदी फिल्म संगीत बना। इस फिल्म के लिए सलील चौधरी को पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला जो सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का मिला। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी मुकेश के सबसे लोकप्रिय गीतों में से एक है और आज भी बहुत पसंद किए जाते हैं। उसी फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं लता जी और मन्ना डे साहब की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर गीत मेरे मनमीत की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में।

लता जी और मन्ना डे साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में यह नगमा था फिल्म मधुमती से, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गुड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में। तो आइए गीत मेरे मनमीत के इस सफ़र को यूं ही बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एक और गोल्डन एरा के बहुत ही खूबसूरत नगमे की तरफ। और हम आपको अब लेकर चलते हैं 1949 के दौर में। 1949 में एक बेहद खूबसूरत फिल्म आई थी जो बहुत ही मशहूर रही और उसके नगमे भी बहुत ही कामयाब रहे, और वो फिल्म थी कमाल अमरोही साहब के निर्माण और कमाल अमरोही साहब के निर्देशन में यह फिल्म थी महल, जिसका निर्माण किया था अशोक कुमार साहब ने। और इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में अशोक कुमार, मधुबाला और साथी कलाकारों में एम कुमार, विजय लक्ष्मी, कानू राय, नाजिर हुसैन, शीला नायक, लीला पांडे, नीलम, कनीज, जगन्नाथ, मोहसिन वगैरह, ये तमाम लोग थे। और इन लोगों ने अपने अभिनय से इस फिल्म को एक यादगार फिल्म बना दिया। इस फिल्म में तकरीबन 8 नगमे थे और उन्हीं उन तमाम गीतों को लिखा था जे नक्शराब ने, और इन गीतों को बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा खेमचंद प्रकाश साहब ने। तो आइए इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा हम आपको सुनवाते हैं राजकुमारी और जोहराबाई अम्बाले वाले की आवाजों में, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ नगमे ऐसे हैं जिन्हें आप बार बार सुन चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्हें शायद नहीं सुन पाए हैं। उन्हीं नगमों में से ये बहुत ही प्यारा नगमा आपके लिए है।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में सुनहरे दौर के उन नगमों के साथ हम हाजिर हैं। और अगला नगमा एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मशहूर फिल्म से, और ये फिल्म थी 1957 में आई नया दौर, जिसके निर्देशक थे और निर्माता भी B.R. चोपड़ा साहब। और इस फिल्म में दिलीप कुमार साहब, वैजयंती माला ने मुख्य भूमिका निभाई थी, साथ में अजीत जीवन, जॉनी वॉकर, चांद उस्मानी, नाजिर हुसैन, मनमोहन कृष्ण, लीला चटनी, डेजी ईरानी, मूलचंद, कुमकुम वगैरह ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया था। इसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं। आवाजें हैं शमशाद बेगम और आशा भोसले जी की। इस फिल्म के गीतों को लिखा है साहिर लुधियानवी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है OP नैयर साहब ने। तो आइए सुनते हैं वही नगमा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: इसी नगमे के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाज़त आज के गीत मेरे मनमीत की महफिल को यहीं पर समाप्त करने की। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद अंजू रहेगी आपके साथ लेकर अगला प्रोग्राम। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों को शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माई भारत स्वयंसेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफार्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
2: It is clearly our responsibility.
3: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
2: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
1: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। भारत और तजाकिस्तान के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित की गई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉ विनोद बहाड़े और ताजिकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अधिकारी शेराली जोनो ने की। बैठक में दोनों देशों ने वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर आतंकवादी संगठनों से उत्पन्न खतरों तथा उग्रवाद, कट्टरपंथ, आतंकवाद के वित्त पोषण, तकनीक के दुरुपयोग और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दों पर चर्चा की। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की संघीय न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा कि चुनावों को विनियमित करने का अधिकार राज्यों और कांग्रेस के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारे के खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के समुद्री संकट को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। वहीं इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जेगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Aparajita Nair. Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation at Seva Teerth in New Delhi. During the meeting, Mr. Modi reviewed four major infrastructure projects in the road, power, industrial corridor and metro rail sectors across four states, involving an investment of around 30,000 crore rupees. The Prime Minister stressed that delays in infrastructure projects lead to cost escalation and deprive citizens and industries of timely benefits. He directed the concerned ministries and state governments to resolve bottlenecks in a mission mode and ensure close monitoring of project implementation. The Prime Minister also emphasized the effective use of the PM Gati Shakti National Master Plan for efficient planning and timely execution of infrastructure projects. The Prime Minister's office informed that the meeting also reviewed the TB Mukt Bharat Abhiyan. Mr. Modi also reviewed grievances related to cybercrime and digital arrest cases. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has concluded a series of meetings with U.S. Trade Representative Ambassador Jamie Sun Greer and his delegation in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Goyal said, "They reviewed the progress of the ongoing India-U.S. trade discussions and explored avenues to further deepen economic partnership between both the countries." He also appreciated Ambassador Greer's leadership and the sustained efforts of both teams in advancing the discussions in a constructive and forward-looking manner. The 12th Indo-European Union Human Rights Dialogue was held in New Delhi yesterday. During the dialogue, both sides noted their commitment to the promotion and protection of all human rights and emphasized the universality, indivisibility and interrelatedness of all human rights. The MEA said that both sides discussed their shared interest in increased cooperation on humanitarian assistance and disaster relief. India and Tajikistan held the fifth meeting of the Joint Working Group on Counterterrorism in Dushanbe yesterday. Ministry of External Affairs said that during the meeting, both sides discussed threats posed by terrorist groups globally and in their respective regions. The two sides also discussed measures to strengthen bilateral cooperation in the field of counterterrorism through enhanced information sharing, capacity building, and the exchange of best practices. Prime Minister Narendra Modi congratulated Armenia's Prime Minister Nikol Pashinyan and his party on their victory in the recently held parliamentary elections in Armenia. Mr. Modi received a call from his Armenian counterpart earlier today. Prime Minister Modi thanked him for facilitating the evacuation of Indian nationals stranded in Iran following the recent developments in West Asia. As the house-to-house enumeration of special intensive revision of electoral rules in Delhi to start from the 30th of this month, the Chief Electoral Officer of Delhi chaired a meeting with the representatives of political parties regarding SIR in New Delhi yesterday. In a statement, CEO's office said that the CEO informed them about the important activities to be undertaken during enumeration phase. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis met Andy Jassy, CEO of Amazon, and invited the global technology company to invest in data centers, healthcare infrastructure, and artificial intelligence-based skill development in the state. During the meeting, Mr. Fadnavis noted that the state aims to expand its economy from an estimated US$660 billion to US$1 trillion by 2030 and is increasingly using AI to improve citizen services and strengthen sectors such as agriculture, infrastructure, healthcare and education. To promote a digital and transparent system in the country, an artificial intelligence-based automated driving test track was inaugurated at the Bhuj RTO in Gujarat. With this change, both RTO tracks in the Kutch district have now become entirely unmanned and AI-driven. This system will also eliminate human intervention and bring transparency to the entire process. Indian women's doubles pair of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand advanced to the second round of the US Open Super 300 badminton tournament. The Indian duo defeated Spain's Paula Lopez and Lucia Rodriguez in the opening round. The duo will next take on Japan's Sumir Nagade and Miyu Takahashi today. And that is the end of this news bulletin.

तारों में नहाई ये रात और उस पे सरगोशी करती ये हवा। बार बार ये एहसास दिल करा रही है कि आगाज हो चुका है उस महफिल का जिसमें शिरकत होती है आपकी और महफिल सजती है आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है आकाशवाणी गोल्ड, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं अंजू आपके साथ, स्वागत है आप सभी का। कार्यक्रम लेकर आई हूं निशिगंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और शुरुआत बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, फिल्म स्वामी और जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

कोई और करे क्या तुम्हारी चाहत का यूं हिसाब, कोई और करे क्या तुम्हारी चाहत का यूं हिसाब, हमारे जितना प्यार पाओगे तो खुद को भी भूल जाओगे।

मोहब्बत के काबिल समझा उसने मुझे, ये उसका करम है। मोहब्बत के काबिल समझा उसने मुझे, ये उसका करम है। वरना तो इस जमाने में वफा ढूंढना सिर्फ एक

लोग कहते हैं मेरा महबूब चांद जैसा है, लोग कहते हैं कि मेरा महबूब चांद जैसा है, नहीं नहीं लोग तो धोखे में हैं, चांद मेरे महबूब जैसा है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं।

जो दोस्त हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंजू है आपके साथ और कार्यक्रम है निशिगंधा।

0: न जाने कितने सपने तेरे लिए इन आंखों में सजाए हैं, न जाने कितने सपने तेरे लिए इन आंखों में सजाए हैं। हमने तो अपनी जिंदगी के हर लम्हे बस तुझसे ही तो महकाए हैं।
1: मैंने

और तुमसे क्या कहूँ कि तुमसे शुरू और तुम पे ही खत्म मेरी हर बात हो, कि तुमसे शुरू और तुम पे ही खत्म मेरी हर बात हो। तुम चाहे जहाँ भी रहो, मेरा साया तुम्हारे साथ हो।

खुदा से और क्या मांगू मैं अपनी दुआओं में, खुदा से और क्या मांगू मैं अपनी दुआओं में कि बस उम्र भर का साथ मिल जाए तेरा इन राहों में।

कहने को तो बहुत कुछ है इस दिल में, मगर तेरी एक मुस्कुराहट के आगे मेरे सारे लफ्ज कम पड़ जाते हैं।

दोस्तों, ये कार्यक्रम का आखिरी गीत है। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, फिर आपसे दोबारा मिलूंगी 1:10 पर कार्यक्रम गीत सुहाने लेकर, जिसमें चलेंगे हुजरे दौर की बहुत ही बेहतरीन गीत सुनने के लिए। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माई भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफार्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की।

0: श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत गिर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: कोलकाता में भवन ढहने की घटना के संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भवन के परियोजना पर्यवेक्षक सहित 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। सेना, एनडीआरएफ, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच आज टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की संघीय न्यायाधीश टेनिसन कैस्पर ने कहा कि चुनावों को विनियमित करने का अधिकार राज्यों और कांग्रेस के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। कोलंबिया के राष्ट्रपति चुनाव में वामपंथी उम्मीदवार इवान सेपेडा ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। प्रारंभिक परिणामों के अनुसार उन्होंने दक्षिणपंथी कारोबारी एबिलार्डो डेला एस्प्रियला ने बेहद कम अंतर से पराजित किया है। हार स्वीकार करते हुए श्री सेपेडा ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चुनाव में हस्तक्षेप का आरोप लगाया। वहीं अंतिम आधिकारिक मतगणना की प्रक्रिया अभी जारी है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation at Seva Tirth in New Delhi. During the meeting, Mr. Modi reviewed 4 major infrastructure projects in the road, power, industrial, corridor and metro rail sectors across 4 states, involving an investment of around 30,000 crore rupees. The PM directed the concerned ministries and state governments to resolve bottlenecks in a mission mode and ensure close monitoring of project implementation. Mr. Modi also reviewed grievances related to cybercrime and digital arrest cases, expressing concern over the growing misuse of digital platforms to defraud citizens. He called for intensified public awareness campaigns and directed stakeholders to strengthen systems for prevention, reporting, investigation and grievance redressal in cyber fraud cases. The PM's office informed that the meeting

दोस्तों, गुजरे जमाने के गीत और संगीत में जो मधुरता थी वो आज के श्रोताओं को भी बरबस अपनी ओर खींचती है और उसी को बरकरार रखते हुए

हम लेकर आए हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है गीत सुहाने। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज आपने ट्यून किया है और मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ अंजू। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और समय हुआ है 1:11:30। शुरुआत कर रही हूँ फिल्म मधुमति से। ये फिल्म 1958 में आई थी और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

ऐसे पुराने गीतों को सुनकर यकीन बहुत अच्छा लगता है, और जब आजकल की युवा पीढ़ी भी इन गीतों को सुनती है, इनके रीमेक्स को सुनते हैं, तो यकीन मानिए दिल खुश हो जाता है। लेकिन ओरिजिनल गीत ओरिजिनल ही होता है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जो राज कपूर द्वारा निर्मित और निर्देशित थी, और ये फिल्म 1951 में आई थी। इसका नाम था आवारा। राज कपूर साहब की खासियत ये थी कि वह अपनी फिल्मों में मुख्य भूमिका खुद ही निभाते थे, और सबसे मजेदार बात यह रही कि उनके ही अपने परिवार के 3 सदस्यों ने इस फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं निभाई। पिता पृथ्वीराज कपूर ने जज रघुनाथ की भूमिका निभाई, और सबसे छोटे भाई शशि कपूर ने राज कपूर के बचपन का रोल किया। और तो और, पृथ्वीराज कपूर जी के पिताजी और राज कपूर के दादाजी दीवान विश्वनाथ कपूर ने भी एक छोटा सा रोल किया। आगे बात करूंगी इस फिल्म ने कहां कहां सफलता पाई। पहले एक बहुत ही प्यारा गीत इसी फिल्म से।

अपने देश के अलावा ये फिल्म विदेशों में बहुत पॉपुलर हुई और कई जगह उसका गीत आज भी गाया जाता है, जिसे गाया मुकेश और लिखा शैलेंद्र ने, संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। जी हाँ, आवारा हूँ। ये फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल में भी ग्रैंड प्राइज के लिए नॉमिनेट हुई। इस फिल्म के सभी गीत बहुत मशहूर हुए। हसरत जयपुरी साहब ने भी कुछ गीत इसके लिखे। तो चलिए सुनते हैं इसका दूसरा गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

दोस्तों बात करते हैं फिल्म अलबेला की। ये फिल्म 1951 में आई थी। ये क्लासिक बॉलीवुड म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म है और इसका निर्देशन भगवान दादा ने किया और इसमें उन्होंने गीता बाली के साथ अभिनय भी किया है। ये फिल्म अपने यादगार गानों, एक संघर्षरत कलाकार के सपनों को साकार करने की बहुत ही दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि इस फिल्म ने उस दौर में सबसे ज्यादा कमाई की थी। और जानते हैं एक जो गीत है इसका, शोला जो भड़के, ये एक ऐसी घटना बन गई थी इसकी कि जब ये गाना पर्दे पर आता था तो सिनेमा घर में दर्शक इसे बजते समय स्क्रीन पर सिक्के फेंकते थे। और एक बड़ी रोचक जानकारी ये है कि भगवान दादा को सेट पर पेशेवर डांसर नहीं मिल पाने के कारण उन्होंने अपने स्टंटमैन और फाइटर से ही फिल्म के लिए नृत्य की कोरियोग्राफी कराई। नृत्य की इस अनोखी और मौलिक शैली ने उनकी एक अलग ही पहचान बनाई। तो चलिए सुनते हैं इसी फिल्म का एक गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने और उनका साथ दिया है सी रामचंद्र ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

समय हुआ है 1:32 और 52 सेकंड। कार्यक्रम है गीत सुहाने, मैं हूँ आपके साथ अंजू। अभी जो मैं आपको गीत सुनाने जा रही हूँ, ये फिल्म है दो बीघा जमीन, जो 1953 में प्रदर्शित हुई थी, और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर के साथ मन्ना डे ने और साथियों ने, संगीत दिया है सलिल चौधरी ने।

दोस्तों बात करते हैं 1953 में आई फिल्म लड़की की। एमवी रमन द्वारा निर्देशित हिंदी सिनेमा के एक बेहद रोमांटिक लोकप्रिय फिल्म थी और एक कॉमेडी फिल्म थी। इस फिल्म ने अपने दौर में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि पाई और दर्शकों को खूब हंसाया था। इस फिल्म में वैसे तो मुख्य रूप से हीरो थे भारत भूषण, लेकिन किशोर कुमार ने सेकेंड लीड में इतनी ज़बरदस्त अपनी प्रतिभा दिखाई कि सबका दिल जीत लिया। और कहा जाता है कि किशोर कुमार के अभिनय का जो शुरुआत मानी जाती है, पहली हिट फिल्म यही मानी जाती है। और दोस्तों ये फिल्म असल में दक्षिण भारत की ब्लॉकबस्टर फिल्म पेन की रीमेक थी। और दिलचस्प बात यह है कि तमिल मूल की जो फिल्म थी, हिंदी रीमेक में लड़की के नाम से ये फिल्म बनाई गई, तो दोनों में ही जो मुख्य अभिनेत्रियां थीं वैजयंती माला और अंजलि देवी, उन्होंने ही तमिल वर्जन में इस फिल्म में काम किया था। लेकिन तमिल वर्जन में वैजयंती माला और अंजलि देवी के ऑपोजिट थे जेमिनी गणेशन, और जबकि हिंदी में भारत भूषण और किशोर कुमार को लिया गया था। वैजयंती माला ने अपने करियर के शुरुआती दौर में इस फिल्म में रानी मेहरा के नाम की एक आत्मनिर्भर और प्रगतिशील लड़की का किरदार निभाया। फिल्म में उनके शास्त्रीय और आधुनिक नृत्य ने दर्शकों को बेहद प्रभावित किया, जिससे आगे चलकर उन्हें बॉलीवुड की पहली डांसिंग सुपरस्टार बनाया। तो चलिए सुनते हैं उसी फिल्म का एक गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

अब बात करते हैं फिल्म दीदार की। ये फिल्म 1951 में ही प्रदर्शित हुई थी। नितिन बोस द्वारा निर्देशित हिंदी सिनेमा की एक ऐतिहासिक और बेहद भावुक फिल्म दीदार। ये फिल्म हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार साहब को ट्रेजेडी किंग के रूप में स्थापित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक मानी जाती है। दोस्तों ये भी

अभी आपने फिल्म दीदार से गीत सुना जिसे गाया था लता मंगेशकर के साथ शमशाद बेगम ने। महबूब खान साहब की एक फिल्म आई थी आन, 1952 में ये फिल्म प्रदर्शित हुई थी। ये भारत की पहली टेक्निकल फिल्म थी। दिलीप साहब, प्रेमनाथ, निम्मी, हालांकि नादिरा जी को नरगिस जी की जगह रिप्लेस किया गया था, ये बहुत बड़ी हिट फिल्म रही। हालांकि इसके रिकॉर्ड को श्री 420 ने 3 साल बाद तोड़ा।

हालांकि इस फिल्म का बजट बहुत ज्यादा था, ये पहली ऐसी फिल्म थी जो कि दुनिया भर में प्रदर्शित की गई। लंदन में भी इस फिल्म का एक प्रीमियर हुआ जिसमें महबूब खान साहब और उनकी पत्नी और अभिनेत्री निम्मी ने उसको अटेंड किया। तो चलिए सुनते हैं ऐसी फिल्म का एक गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: चांद के पीछे भाग रहा हूं मगर अब तक पकड़ नहीं पाया उसे। एक बात बताइए,
1: क्या
0: ऐसा महसूस क्यों होता जैसे आपको कहीं देखा हो?
1: सपनों में देखा होगा
0: जी हाँ, मैं सपने बहुत देखा करता हूं।

रोज तो हमारा मिलन भी होगा, लेकिन अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर फिर से आपसे मिलूंगी। कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयंसेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफार्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से ब्रिटेन की 3 दिन

0: दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा भारत और ब्रिटेन के बीच महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा दोहरे अंशदान पर समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। ये समझौते 15 जुलाई से लागू हो जाएंगे। यात्रा के दौरान पीयूष गोयल लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में व्यापार समझौते को लागू करने की तैयारियों पर चर्चा होगी। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में एआई के उपयोग पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि ये एक दिवसीय कार्यक्रम अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को ग्रामीण भारत की जमीनी स्तर की विकासात्मक आवश्यकताओं के साथ जोड़ने के लिए एक सहयोगात्मक मंच के रूप में कार्य करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच आज टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। कोलकाता में भवन ढहने की घटना के संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भवन के परियोजना पर्यवेक्षक सहित 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। सेना, एनडीआरएफ, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। भारत और ताजिकिस्तान के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे में आयोजित की गई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉ विनीत बहाड़े और ताजिकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अधिकारी शिराली जोनेन ने की। बैठक में दोनों देशों ने वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर आतंकवादी संगठनों से उत्पन्न खतरों तथा उग्रवाद, कट्टरपंथ, आतंकवाद के वित्त पोषण, तकनीकी दुरुपयोग और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। कोलंबिया के राष्ट्रपति चुनाव में वामपंथी उम्मीदवार इवान सेपेडा ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। प्रारंभिक परिणामों के अनुसार उन्हें दक्षिणपंथी कारोबारी एबेलार्डो डेला एस्प्रियला ने बेहद कम अंतर से पराजित किया है। हार स्वीकार करते हुए श्री सेपेडा ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चुनाव में हस्तक्षेप का आरोप लगाया। वहीं अंतिम आधिकारिक मतगणना की प्रक्रिया अभी जारी है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष। Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation at Seva Tirth in New Delhi yesterday. During the meeting, Mr. Modi reviewed 4 major infrastructure projects in the road, power, industrial corridor and metro rail sectors across 4 states involving an investment of around 30,000 crore rupees. The Prime Minister directed the concerned ministries and state governments to resolve bottlenecks in a mission mode and ensure close monitoring of project implementation. Mr. Modi also reviewed grievances related to cybercrime and digital arrest cases. Expressing concern over the growing misuse of digital platforms to defraud citizens, he called for intensified public awareness campaigns and directed stakeholders to strengthen systems for prevention, reporting, investigation and grievance redressal in cyber fraud cases. The PM's office informed that the meeting also reviewed the TB Mukt Bharat Abhiyan. The PM highlighted the importance of leveraging emerging technologies, including artificial intelligence, in the fight against tuberculosis. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has concluded a series of meetings with US Trade Representative Ambassador Jamie Singh Greer and his delegation in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Goyal said they reviewed the progress of the ongoing India-US trade discussions and explored avenues to further deepen economic partnership between both the countries. He also appreciated Ambassador Greer's leadership and the sustained efforts of both teams in advancing the discussions in a constructive and forward-looking manner. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar highlighted the importance of deepening India-South Korea ties amid a challenging global environment, saying that countries with shared values and mutual trust need to work together more closely. In his opening remarks during the meeting with South Korean Foreign Minister Cho Hyun in Seoul, he stressed the current international situation makes cooperation among trusted partners more important than ever. In West Bengal, rescue operations are in full swing after an under-construction godown collapsed, trapping workers beneath heavy iron debris near Taratala in Kolkata yesterday. Five people were declared dead at the SSKM hospital and the injured are being treated there. Chief Minister Suvendu Adhikari visited the accident site and lauded the efforts of rescue personnel. He informed the media that Kolkata Metropolitan Authority would submit a report to him and he would brief the assembly today. As the house-to-house enumeration of special intensive revision of electoral rolls in Delhi to start from the 30th of this month, the Chief Electoral Officer of Delhi chaired a meeting with the representatives of political parties regarding SIR in New Delhi yesterday. In a statement, CEO's office said that the CEO informed them about the important activities to be undertaken during enumeration phase. Political parties were also requested to cooperate with the election machinery involved in the SIR at different level and they assured full cooperation, assistance and active involvement during the SIR. In Arunachal Pradesh, heavy rainfall and flash floods have caused widespread damages at Nipko colony in Yazali Circle under K. Panyor district yesterday. As per the latest reports, four people are missing. Authorities have not yet confirmed any casualty as they are assessing the extent of the damage. Union Minister Kiran Rijiju has appealed to the people in flood-affected areas to remain cautious. In a social media post, Mr. Rijiju urged the people to stay updated through official channels and follow all safety advisories. Oman has announced the opening of a temporary maritime corridor through the strategically vital Strait of Hormuz. It marked a significant step toward restoring commercial shipping and easing a maritime crisis that has left thousands of seafarers stranded in the Gulf. The Omani government said the initiative was developed in coordination with the United Nations International Maritime Organization, or IMO, to facilitate the safe movement of vessels through the waterway following months of disruption linked to regional conflict. Indian women's doubles pair of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand advanced to the second round of the US Open Super 300 badminton tournament. The Indian duo defeated Spain's Paula Lopez and Lucia Rodriguez in the opening round. The duo will next take on Japan's Sumire Nakade and Miyu Takahashi today. And that is the end of this news bulletin.

2:10 हो चुके हैं और अब हो गए हैं 2:11:03। मैं हूँ आपके साथ एक बार फिर से अंजू लेकर आई हूँ कार्यक्रम रात सुरमय। रहिए मेरे साथ इस घंटे और हम सुनेंगे बहुत ही मधुर गीत। शुरुआत दिल तो पागल है से, जिसे गाया है उदित नारायण के साथ लता मंगेशकर ने।

मोहब्बत भी क्या चीज है कोई समझाए हमें, मोहब्बत भी क्या चीज है कोई समझाए हमें, जो मुस्कुराए वो तो जान ले जाए और जो रुलाए वो दिल में घर कर जाए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन

बदल जाए ये दुनिया पर हम ना बदलेंगे, तेरे थे तेरे हैं और तेरे ही रहेंगे। खत्म हुई अब जमानों से चाहतों की तलाश, खत्म हुई अब जमानों से चाहतों की तलाश, अब तुम्हें ही चाहेंगे और उम्र भर चाहते रहेंगे।

ऐसी नजरों से न देखो कि मैं होश खो बैठूं, जो बात दिल में छुपी है वो सरेआम कह बैठूं। तुम्हारी इन आंखों में वो नशा है कि बिन पिए ही महफिल में बहक बैठूं।

पहली बार किसी की नजरों का ऐसा असर हुआ है कि ना होश है ना जमाने की कोई खबर है। जुबां खामोश है पर दिल सब कुछ कह रहा है। ये प्यार का पहला नशा मेरी रूह में बह रहा है।

दोस्तों अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और आगे का सफर आपके साथ बढ़ाएंगी हमराही लेकर आएंगी वंदना चुग। मुझे अनुमति दीजिए अपना और अपने अपनों का खास ख्याल रखिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयंसेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफार्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से ब्रिटेन की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा भारत और ब्रिटेन के बीच महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा दोहरे अंशदान पर समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। ये समझौते 15 जुलाई से लागू हो जाएंगे। यात्रा के दौरान पीयूष गोयल लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्चस्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में व्यापार समझौते को लागू करने की तैयारियों पर चर्चा होगी। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में एआई के उपयोग पर एक

0: राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि ये एक दिवसीय कार्यक्रम अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को ग्रामीण भारत की जमीनी स्तर की विकासात्मक आवश्यकताओं के साथ जोड़ने के लिए एक सहयोगात्मक मंच के रूप में कार्य करेगा। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। कोलकाता में भवन ढहने की घटना के संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भवन के परियोजना पर्यवेक्षक सहित 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। सेना, एनडीआरएफ, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच आज टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। जिम्बाब्वे की सीनेट ने एक संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है जिसके अंतर्गत देश में राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष चुनाव समाप्त किए जा सकते हैं, अगले चुनाव को टाला जा सकता है और राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। सीनेट में इस विधेयक के पक्ष में 75 और विरोध में 4 मत पड़े। प्रस्ताव के अनुसार वर्ष 2028 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को 2030 तक स्थगित किया जाएगा और राष्ट्रपति एमरसन मनांगवा का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ जाएगा। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish. Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation at Seva Tirth in New Delhi yesterday. During the meeting, Mr. Modi reviewed 4 major infrastructure projects in the road, power, industrial corridor and metro rail sectors across 4 states, involving an investment of around 30,000 crore rupees. The PM directed the concerned ministries and state governments to resolve bottlenecks in a mission mode and ensure close monitoring of project implementation. Mr. Modi also reviewed grievances related to cyber crime and digital arrest cases, expressing concern over the growing misuse of digital platforms to defraud citizens. He called for intensified public awareness campaigns and directed stakeholders to strengthen systems for prevention, reporting, investigation and grievance redressal in cyber fraud cases. The PM's office informed that the meeting also reviewed the TB Mukt Bharat Abhiyan. The PM highlighted the importance of leveraging emerging technologies, including artificial intelligence, in the fight against tuberculosis. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar highlighted the importance of deepening India-South Korea ties amid a challenging global environment, saying that countries with shared values and mutual trust need to work together more closely. In his opening remarks during the meeting with South Korean Foreign Minister Cho Hyun in Seoul, he stressed that the current international situation makes cooperation among trusted partners more important than ever. In West Bengal, rescue operations are in full swing after an under-construction godown collapsed, trapping workers beneath heavy iron debris near Taratala in Kolkata yesterday. 5 people were declared dead at the SSKM hospital and the injured are being treated there. Chief Minister Suvendu Adhikari visited the accident site and lauded the efforts of rescue personnel. He informed the media that Kolkata Metropolitan Authority would submit a report to him and he would brief the assembly today. As the house-to-house enumeration of special intensive revision of electoral rolls in Delhi to start from the 30th of this month, the chief electoral officer of Delhi chaired a meeting

नमस्कार। FM 100.1 MHz पर आपने ट्यून किया है FM गोल्ड चैनल और अब आप सुनेंगे गीत हमराही कार्यक्रम के अंतर्गत अपनी दोस्त वंदना चुक के साथ।

दोस्तों, दौर भले ही चला गया है लेकिन हमारे जहन में ये गीत आज भी जुड़े हुए हैं। ताजमहल फिल्म से ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। साहिर लुधियानवी की रचना थी और रोशन का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे पेइंग गेस्ट फिल्म से आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में। मजरू सुल्तानपुरी की रचना है और एस डी बर्मन का संगीत।

दोस्तों, जमाने की परवाह क्या करें, उसने तो कुछ ना कुछ कहना ही है। इसलिए आपके दुख सुख में जो साथ दे, आप उसी के साथ खुश रहिए और अपनों का ख्याल भी रखिए।

दोस्तों, कुछ गीतों को तो लगता है कि साथ ही गुनगुनाते रहें और ये बजते रहें। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, जब ये गीत सुनने को मिलते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने ये गीत सुना पूर्णिमा फिल्म से। गीत को रचा था गुलजार ने और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। अगला गीत छाया फिल्म से लता मंगेशकर और तलत महमूद का गाया हुआ आपको सुनवा रही हूँ। राजेंद्र कृष्ण की रचना है और सलील चौधरी का संगीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म

0: वेव्स पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दोस्तों, आपने ट्यून किया है एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और इस समय मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त वंदना चुग, हमराही कार्यक्रम के अंतर्गत।

जब आप किसी को देख लें तो वो आपकी आंखों में बस ही जाता है। घराना फिल्म से ये गीत था, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले का गाया हुआ। शकील बदायूनी की रचना थी और रवि का संगीत। अगला गीत ये रास्ते हैं प्यार के, इस फिल्म से आप सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले का गाया हुआ। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं और रवि का संगीत।

अगला गीत आप सुनेंगे वो कौन थी इस फिल्म से, मनोज कुमार और हेलन पर फिल्माया गया है। इस फिल्म में हेलन बहुत ही सुंदर लग रही हैं, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर का गाया हुआ, राजा मेहंदी अली खान की रचना है और मदन मोहन का संगीत।

जब अपनों का साथ मिल जाता है तो इंसान यही सोचता है कि उसका दामन छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। वैसे कहीं भी नहीं जाना चाहिए। अगला गीत प्यार को बयां करते कह रहा है।

0: चोरी चोरी। इस फिल्म से भी आपने गीत सुना, लता मंगेशकर और मन्ना डे का गाया हुआ। शैलेंद्र की कलम से निकला गीत था और धुन तैयार की थी शंकर जयकिशन ने। अगला गीत आप सुनेंगे दिल्ली का ठग फिल्म से। ये गीत किशोर कुमार और आशा भोंसले का गाया हुआ है। मजरू सुल्तानपुरी ने गीत को लिखा है और रवि ने संगीत दिया है। सुन लेते हैं किशोर कुमार का हंसी से भरा हुआ अंदाज से ये गीत।
1: C-A-T, cat, cat माने बिल्ली, R-A-T, rat, rat माने चूहा, अरे दिल

L-E-O-A-T goat, goat माने बकरी, L-I-O-N lion, lion माने शेर, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ?

उम्मीद है आपको ये किशोर कुमार का हंसी भरा अंदाज जरूर पसंद आया होगा। और अब अगला गीत दोस्तों, जिसकी भी जिंदगी में बहुत अच्छा चल रहा हो तो उसकी जिंदगी में भला बहारें क्यों नहीं आएंगी। तो अब सुन लेते हैं ये गीत और आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूं।

दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि आप जान जाएंगे, तो आप जान गए होंगे कि फिल्म का नाम लिया था मैंने कि उसकी जिंदगी में बहार आ जाती है। तो आए दिन बहार के इस फिल्म से आपने गीत सुना लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में। अगला गीत सूरज फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं, मोहम्मद रफी और आशा भोंसले का गाया हुआ। बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी को अपनी बात समझा रहे होते हैं लेकिन नहीं समझ में आती, फिर आप क्या कहते हैं, क्या करते हैं, छोड़ देते हैं उसे अपने वक्त पर, कोई बात नहीं। जब इसे या कहते हैं ना कि जब सयाना हो जाएगा तो खुद ही समझ जाएगा, तो इस गीत में भी ऐसा ही कुछ है।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमराही कार्यक्रम अब संपन्न होता है, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं अगले कार्यक्रम के साथ भी तो जुड़ी हुई हूँ। और अब आपके लिए कुछ ही पलों बाद होंगे समाचार, आप सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माई भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से ब्रिटेन की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा भारत और ब्रिटेन के बीच महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा दोहरे अंशदान पर समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। ये समझौते 15 जुलाई से लागू हो जाएंगे। यात्रा के दौरान श्री गोयल लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में व्यापार समझौते को लागू करने की तैयारियों पर चर्चा होगी। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में एआई के उपयोग पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि ये 1 दिवसीय कार्यक्रम अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को ग्रामीण भारत के जमीनी स्तर के विकासात्मक आवश्यकताओं के साथ जोड़ने के लिए एक सहयोगात्मक मंच के रूप में कार्य करेगा। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। कोलकाता में भवन ढहने की घटना के संबंध में 3 लोगों

दोस्तों, अरुणिमा कार्यक्रम में गीतों के साथ एक बार फिर से मैं जुट चुकी हूँ आपकी दोस्त वंदना चुग FM 100.1 MHz पर। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

भाभी फिल्म से अभी आपने गीत सुना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ, राजेंद्र कृष्ण की रचना थी और चित्रगुप्त का संगीत। दोस्तों, पतंग की तरह ही हमारे विचार होते हैं, जो सकारात्मक हो तो ऊंचाइयों को छू लेते हैं। और हम तो यही चाहते हैं कि आप भी हमेशा ऊंचाइयों को छूते रहें।

मधुमती फिल्म से ये गीत आपने सुना मुकेश की आवाज में। शैलेंद्र ने गीत को लिखा था और धुन बनाई थी सलील चौधरी ने। अगला गीत झनक झनक पायल पाजी फिल्म से आपको सुनवा रहे हूँ, लता मंगेशकर और हेमंत कुमार का गाया हुआ। हसरत जयपुरी के बोल हैं और वसंत देसाई का संगीत।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: 200 FM गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा और गीतों के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ आपके साथ आपकी दोस्त वंदना चुग।

मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में आपने ये गीत सुना राम और श्याम फिल्म से। दोस्तों, बहुत समय हो जाए तो आप जब अपनों से मिलते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं, आप बताइए सोचकर। यही कहते हैं ना, कैसे हैं, क्या हाल चाल हैं आपके।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में आपने ये गीत सुना। मजरू सुल्तानपुरी की रचना थी और सचिन देव बर्मन का संगीत। दोस्तों, जब भी अपने दोस्त मिलते हैं तो अच्छा लगता है ना। और मौसम का अगर हाल बदल जाए तो कितना अच्छा हो, और फिर आपको उस मौसम में झूमना तो अच्छा लगेगा।

उजाला फिल्म से गीत आपने सुना मन्ना डे और लता मंगेशकर का गाया हुआ। हसरत जयपुरी ने गीत को रचा था और संगीत से संवारा था शंकर जयकिशन ने। अगला गीत आप सुनेंगे, लेकिन उससे पहले कहना पड़ेगा कि अगर आपके विचारों का तालमेल अपनों से बैठ जाए तो जिंदगी जीने का मजा और भी दुगना हो जाता है।

हमारे दोस्त फिल्म का नाम तो जान ही गए होंगे, लेकिन फिर भी बता देती हूँ, गूंज उठी शहनाई फिल्म से ये गीत था, लता मंगेशकर की आवाज़ में। भरत व्यास ने गीत को रचा था और धुन बनाई थी वसंत देसाई ने। अगला गीत आप सुनेंगे अमरदीप फिल्म से, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ। राजेंद्र कृष्ण की रचना है और चीतलकार रामचंद्र का संगीत।

येसुदास और आशा भोंसले का गाया हुआ आपने गीत सुना छोटी सी बात फिल्म से। योगेश का गाया गीत था और सलील चौधरी का संगीत अगला गीत आपको सुनवा रही हूँ दिल देके देखो फिल्म से, आशा भोंसले और मोहम्मद रफी का गाया हुआ। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और उषा खन्ना का संगीत।

दोस्तों, वक्त का पहिया कभी रुकता नहीं है, हमेशा चलता ही रहता है। और हम उस दायरे में रहकर अगर नियम बनाकर काम करते हैं तो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। अगला गीत कन्हैया फिल्म से मुकेश का गाया हुआ आपको सुनवा रही हूँ। शैलेंद्र ने गीत को रचा है और संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने।

मुकेश के गाए इस गीत के साथ ही आज का अरुणिमा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा FM गोल्ड चैनल पर।

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयंसेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हाल की परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से ब्रिटेन की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा भारत और ब्रिटेन के बीच महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा दोहरे अंशदान पर समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। ये समझौते 15 जुलाई से लागू हो जाएंगे। यात्रा के दौरान श्री गोयल लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में व्यापार समझौते को लागू करने की तैयारियों पर चर्चा होगी। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में AI के उपयोग पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि ये एक दिवसीय कार्यक्रम अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को ग्रामीण भारत की जमीनी स्तर की विकास आवश्यकताओं के साथ जोड़ने के लिए एक सहयोग मंच के रूप में कार्य करेगा। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता

दोस्तों, भोर सुहानी कार्यक्रम में सभी का स्वागत करते हुए, गीतों से वातावरण को महकाते हुए सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आवाज़ तो आपने पहचान ही ली होगी। जी हाँ, मैं हूँ वंदना चुग।

सुषमा श्रेष्ठ और साथियों की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना द बर्निंग ट्रेन से। साहिल लुधियानवी की रचना थी और आर डी बर्मन का संकेत। दोस्तों, जो भी हमें मिलता है उसमें उसी की ही असीम कृपा होती है। इंसान तो गलतियों का पुतला है, लेकिन उसकी बख्शीश हमें सही राह और सुकून देती है।

उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज़ में लगान फिल्म से अभी आपने गीत सुना। जावेद अख्तर का गीत था और A.R. रहमान का संगीत। दोस्तों, जो कुछ है इस संसार में वो केवल सच पर ही है, और सच इस बात का प्रमाण है कि संसार में जो चीज़ें हैं वो यहीं रह जाएंगी।

हर किसी के दिल में ईश्वर का वास होता है, इसलिए हम किसी का भी मन ना दुखाएं और इसी में ही ईश्वर की मुस्कुराहट छिपी है और यही एक द्वार है जो हमें ईश्वर के पास पहुंचाता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन ए